100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज दिन बुधवार, वैशाख मास की 23वीं तिथि, शक संवत 1948, तदनुसार 13 मई सन 2026, सुबह के 5:55 हुए हैं और 40 सेकंड। अब हमारी आज की सभा प्रारंभ हो रही है।

नव ऊर्जा, नव सृष्टि सृजन, नव हो उमंग, पवित्र हो मन। नित्य नव दिवस का शुभारंभ भक्ति भाव की पुष्पांजलि।

सुप्रभात, आप सभी सुनने वालों को मेरा सादर प्रणाम। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत से सजी पुष्पांजलि, जो आपके मन को शांति, श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण कर देगी। मैं रतन आपके साथ हूं आज की इस यात्रा में। तो आइए श्रद्धा के इन स्वरों के साथ अपने दिन की शुरुआत करें।

प्रातः के 6:13 का समय हो चुका है। आप सुन रहे हैं पुष्पांजलि आज अपने दोस्त रतन के साथ 100.7 FM रेनबो पर। भक्ति का एहसास अति सुंदर है, ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रभु स्वयं हमारे समीप आ गए हों। भक्तजन कहते हैं, भक्ति की धारा जितनी गहरी होती है जीवन उतना ही सरल और आनंदमय हो जाता है।

भक्ति का अर्थ केवल भगवान के प्रति समर्पण नहीं है, बल्कि अपने जीवन में सकारात्मकता और प्रेम का विस्तार करना भी है। आइए कुछ पल के लिए प्रभु का ध्यान करते हैं और अपने मन को शांत करते हैं।

भगवान गणपति बुद्धि, विवेक और शुभता के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी पूजा से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और नई शुरुआत का मार्ग खुलता है। गणपति जी हमें ये सिखाते हैं, धैर्य, विनम्रता और सच्चे कर्म से हर बाधा को पार किया जा सकता है। उनका विशाल स्वरूप यह संदेश देता है कि हमें बड़ी सोच रखनी चाहिए, सबकी बातें ध्यान से सुननी चाहिए और हर परिस्थिति में शांत मन से निर्णय लेना चाहिए। ओम श्री गणेश।

माँ भगवती की महिमा अनंत और अद्भुत है। वे अपने भक्तों की रक्षा करके उन्हें सुख, समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देती हैं। माँ का स्मरण मन को पवित्र और हृदय को मजबूत बनाता है। उनकी कृपा से जीवन की कठिन राहें भी सरल लगने लगती हैं और मन में प्रेम, भक्ति तथा विश्वास का दीप सदैव जलता रहता है।

प्रातः के 6:39 का समय हो चुका है। आप सुन रहे हैं पुष्पांजलि 100.7 FM रेनबो पर। भगवान जगन्नाथ की महिमा अनंत और अलौकिक है। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनका स्मरण करता है उसके जीवन में सुख शांति और मंगल का वास होता है। उनकी भक्ति मन को निर्मल और आत्मा को पवित्र बना देती है। भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों पर ऐसी कृपा बरसाते हैं कि कठिन से कठिन मार्ग भी सरल प्रतीत होने लगता है और जीवन प्रेम भक्ति तथा दिव्यता से भर उठता है।

भक्त जनों, भक्ति का हर पहलू जीवन को नई दिशा देता है। ये केवल प्रार्थना या भजन गाने तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे व्यवहार, सेवा और विचारों में भी झलकती है। भक्ति का सबसे बड़ा रूप सेवा है। कहा गया है, सेवा ही सच्ची पूजा है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो वह भक्ति का सबसे पवित्र स्वरूप बन जाती है।

ईश्वर का प्रेम ऐसा है जो बिना किसी शर्त के होता है। वे हमें हर परिस्थिति में स्वीकार करते हैं और हमारे लिए वही करते हैं जो हमारे हित में होता है।

प्रभु आपके जीवन में शांति, सुखम और समृद्धि का संचार करें। आज का ये दिन आपके लिए मंगलकारी और शुभ हो, इसी कामना के साथ अब आज की पुष्पांजलि से अपने दोस्त रतन को दीजिए जाने की अनुमति। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, जिस पर अगला कार्यक्रम न्यूज ब्रेक के बाद बिल्कुल तैयार है आपके लिए सदाबहार गीत। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए FM रेनबो।

0: पहला खुमार।
1: हाय दिस इज उदित नारायण, यू आर लिसनिंग 102.2 FM रेनबो, शहर की म्यूजिकल हार्टबीट। दिल से जुड़े रहे और सुनते रहे शहर की म्यूजिकल हार्टबीट को।

जी हाँ, प्रोग्राम की खूबसूरत शुरुआत हो चुकी है। गुड मॉर्निंग कानपुर, प्रोग्राम शुरू हो चुका है। और देखिए ना, शुरू में इतना अच्छा पॉजिटिव वाइब से भरा हुआ सॉन्ग्स आप तक पहुंच चुका है। चलिए अब अपना इंट्रोडक्शन भी हम दे देते हैं। उठिए, जागिए और अपने दिन को दीजिए एक फ्रेश, पॉजिटिव और एनर्जेटिक शुरुआत। फिलहाल तो गुड मॉर्निंग कानपुर के हर दिन के शो की जो शुरुआत होती है ना, वो कलरफुल वाइब्स, स्मार्ट अपडेट्स और शानदार म्यूजिक के साथ होती है। एग्री करते हैं ना? गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपकी अपनी आरजे मालिनी। माना कि इस फ्रेश मॉर्निंग में आपके हाथ में है चाय का कप। चाय की फर्स्ट सिप के साथ जनाब आप भी रेडी हो जाइए, क्योंकि न्यूज़ का ये मॉर्निंग राइड होने वाला है फास्ट, फ्रेश और फुल ऑन एनर्जी स्टाइल। सो गाइज, स्टे ट्यून विथ अस। जी हाँ, ईश्वर का नाम लेकर दिन की शुरुआत हो तो हमारा दिन भी बेहतर से बेहतरीन हो जाता है।

जनाब बाहर उठकर देखिए तो सूर्योदय आज का हो चुका है और सूर्योदय होने के साथ ही एक खूबसूरत से दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज का सूर्यास्त भी होगा। तो आपको ये भी बता दें कि आज का सूर्यास्त कब होगा। आज का सूर्यास्त होगा शाम को लगभग 6:48 पर। 13 मई की तारीख है, आज सन है 2026 और आज का दिन है बुधवार। चलिए अब बात करते हैं एफएम रेनबो कानपुर से हम कौन कौन से प्रोग्राम्स आपके एंटरटेनमेंट के लिए लेकर आएंगे। जी हाँ, आगे बढ़ने से पहले डालेंगे प्रोग्राम्स पर एक नजर। गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम के बाद ठीक 8 बजे देश दुनिया की जानकारी के लिए आप जुड़ेंगे समाचारों से। 8:30 पर सजेगी सुरों की पुरानी महफिल। 9 बजे रस बहार प्रोग्राम में आज का आकर्षण होगा रेट्रो लाइफ स्टाइल, यानी कि दौर पुराने, जी हाँ पुराने वक्त से आपको हम जोड़ेंगे। और 9:45 पर विविधा में आज का आकर्षण होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। 11 बजे का वक्त होगा

हमनवा प्रोग्राम का, और आज की हमनवा जोड़ी होगी मालिनी और रंजना की। 3 बजे से रंजना आपके साथ होंगी म्यूजिक आर प्रोग्राम में, और 4 बजे से आपकी पसंद में। जी हाँ, आप जुड़िएगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए कानपुर रेनबो के साथ स्वस्थ मनोरंजन के लिए।

रियली दोस्तों, कुछ बातें जो होती हैं ना, होती तो बहुत छोटी सी हैं बट असर गहरा डालती हैं। जी हाँ, कुछ अच्छी सी बात किसी को हंसने की वजह दे देती है और कभी कभी जो है आदमी जब हंस लेता है तो उसका पूरा दिन बहुत खूबसूरत होता है। तो चलिए ऐसी ही एक पॉजिटिव सी बात हम भी अब करने

वाले हैं। आज हम भी इस वक्त आपसे शेयर करेंगे थॉट ऑफ द डे। तो चलिए आज का मॉर्निंग मंत्रा क्या है। एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार हर सुबह हमारे पास ना दो रास्ते होते हैं, एक सपनों के साथ सोते रहना और दूसरा उठकर उन सपनों को सच करने में जुट जाना। फिलहाल आपको क्या करना है, थिंक अबाउट इट। फिलहाल तो मैंने एक सॉन्ग सोचा है, सोच रही हूँ आपको सुनवा दूँ। बात छोटी सी है लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि सॉन्ग आपको जरूर पसंद आएगा।

वाकई में ये गाना इतना प्यारा है ना, मेरी जिंदगी है तू। सुन के ऐसा लग रहा था कि बस इस गाने को सुनते जाएं, बिल्कुल ना रुके। वैसे कभी कभी ना हमें जो मन होता है ना वो दोबारा कर भी लेना चाहिए, और कुछ लोग वाकई में अपने मन का करते हैं और देश दुनिया में मिसाल बन जाते हैं। और कुछ ऐसी ही अपडेट्स जो है सोशल मीडिया हमें लगातार देता रहता है, तो चलिए डालते हैं सोशल मीडिया पर क्या है इस समय लेटेस्ट अपडेट।

सोशल मीडिया पर इन दिनों कुछ अपडेट्स लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। जी हाँ, उसमें से सबसे खास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आईपीएस बी सुमिता रात को भेष बदलकर बस स्टॉप पर पहुंची और खुद जायजा लिया। हैदराबाद के मलकाज गिरी में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं भाई, काबिले तारीफ है जो आईपीएस बी सुमिता हैं, उन्होंने जो किया वो आज महिलाओं के लिए मिसाल हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक नहर में फंसी गैंग्स रिवर डॉल्फिन, जो गंगा के में डॉल्फिन जो होती है ये उसका जिक्र है, और इसको वन विभाग की टीम ने 13 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। और इस रेस्क्यू में ना विशेष डॉल्फिन एम्बुलेंस का उपयोग किया गया, जो भारत में अपनी तरह की पहली एम्बुलेंस है। और एक और लेटेस्ट अपडेट जो सोशल मीडिया पर इस समय लोगों के द्वारा काफी पसंद की जा रही है, कोल्हापुर का लग्जरी अवतार प्रदा ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के स्थानीय कारीगरों के साथ मिलकर कोल्हापुरी प्रेरित लेदर सैंडल लॉन्च किए हैं। और आपको बता दें कि ये कदम जो है ना मेक इन इंडिया पहल के रूप में सामने आया है, जिसमें स्थानीय कारीगरों को शामिल किया गया है। और इस गर्मी में ये सैंडल पारंपरिक कोल्हापुरी चप्पलों का एक नया ग्लोबल और लग्जरी लुक दे रहे हैं। फिलहाल तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये सभी बातें आकर्षण का केंद्र है। जिस तरह से इस समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये वाला सॉन्ग अपना जलवा बिखेर रहा है, लेट्स एंजॉय।

102.2 FM रेनबो कानपुर की म्यूजिकल हार्टबीट से कनेक्ट हैं आप और प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर। और गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आरजे मालिनी, बोले तो मुस्कुराती मालिनी। प्रोग्राम में अब बात करेंगे हिस्ट्री की। जी हाँ, हिस्ट्री नामा। तो चलिए, क्या है खास आज के इतिहास में, इसके लिए आपको लेकर चलेंगे अतीत के आईने में।

तो डालते हैं 13 मई का इतिहास क्या कहता है। सन 1905 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का जन्म हुआ था आज ही के दिन। सन 1952 में स्वतंत्र भारत में संसद का पहला सत्र बुलाया गया था 13 मई को। सन 1962 सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। आज के दिन सन 1978 में देश का पहला ध्वजवाहक जहाज INS दिल्ली सेवा मुक्त हुआ। और सन 1998 में भारत ने दो और परमाणु परीक्षण किए। और सन 2001 में भारतीय साहित्य जगत के सबसे बड़े नामों में से एक R.K. नारायण का निधन आज ही के दिन यानी 13 मई 2001 को हुआ था। और गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम में चलिए अब जुड़ते हैं प्रेजेंट से। फिलहाल तो एक सॉन्ग आपका इंतजार कर रहा है।

जी हाँ बिल्कुल, लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हम थोड़े से परेशान हो जाते हैं, फिर अक्सर हम जो हैं सोचने लगते हैं कि तेरे बिन जीना नहीं। जी हाँ, बहुत लगता है। लेकिन अगर हम ना एक बात हम कहना चाहते हैं कि अगर हम लाइफ के ट्रैक पर चल दें तो रास्ते बनते चले जाते हैं और नई खुशियाँ हमारे दामन में आती चली जाती हैं। और नई खुशियों की बात पर एक ख़ास जो इस समय कल से चर्चा का विषय बना हुआ है, एक लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ, NTA ने नीट UG परीक्षा 2026 को रद्द कर दिया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस परीक्षा के लगभग 125 गेस क्वेश्चंस हूबहू असली पेपर से मैच कर रहे थे। इसके बाद से ही परीक्षा पर खतरा मंडरा रहा था। 13 मई 2026 को हुई परीक्षा जो है अब दोबारा कराई जाएगी, ये कल मैसेज आया है। ये परीक्षा रद्द कर दी गई है, नई डेट जल्द ही घोषित की जाएगी। इसके लिए छात्रों को दोबारा रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराना होगा और कोई अतिरिक्त फीस भी नहीं लगेगी। सभी छात्र धैर्य बनाए रखें, केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा रखें। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। और अब एक लेटेस्ट अपडेट हमारे उन स्टूडेंट से जुड़ी हुई है जो IIT से पढ़ाई कर रहे हैं या IIT एग्जाम की तैयारी में लगे हैं। जी हाँ, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस 2026 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार JEE.ac.in से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। 17 मई को परीक्षा दो पालियों में होना सुनिश्चित है। फिलहाल तो एक सॉन्ग एंजॉय कर लेते हैं।

एडवांस 2026 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार jeeadv.ac.in से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। 17 मई को परीक्षा दो पालियों में होना सुनिश्चित है। फिलहाल तो एक सॉन्ग एंजॉय कर लेते हैं।

102.2 FM रेनबो कानपुर की म्यूजिकल हार्टबीट से कनेक्ट हैं आप. प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर. प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आरजे मालिनी.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
1: बन गया बजट?
2: हाँ,
1: 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ले ले।
1: ना,
2: पिछले महीने तो ली थी।
1: एक और
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िए,
2: जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: पहला नशा, पहला खुमार।
6: हाय, दिस इज उदित नारायण। यू आर लिसनिंग 102.2 FM रेनबो, शहर की म्यूजिकल हार्ट बीट। दिल से जुड़े रहे और सुनते रहे शहर की म्यूजिकल हार्ट बीट को।

गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। फिलहाल तो इस वक्त मैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात से पर्दा हटाने वाली हूँ, तो चलिए क्या है वो बात आपसे शेयर कर लेते हैं। दोस्तों इन दिनों आपने भी हंता वायरस का नाम सुना होगा ना? जी हाँ, बहुत चर्चा का विषय है। तो चलिए बताते हैं, एक क्रूज जहाज पर हंता वायरस के मामलों के बाद यात्रियों को बचाया जा रहा है और लोगों को वैश्विक स्वास्थ्य के लिए बचाव कैसे रखना है जागरूक भी किया जा रहा है। बचाव के लिए सबसे पहले आपको हम बता दें कुछ उपाय आप भी कर सकते हैं, जैसे घर में चूहों को आने से रोकें, घर में गंदगी न जमा होने दें, खाने के सामान और पालतू जानवरों के भोजन को बंद डब्बे में रखें, जिनके घर में जानवर हैं उनका भोजन बंद डब्बे में रखें, कचरे के डब्बे का ढक्कन लगा कर रखें, सूखी सफाई से बचें, इससे वायरस हवा में फैलता है। सफाई से पहले कीटाणुनाशक घोल या ब्लीच का घोल स्प्रे करें, मास्क का उपयोग करें और हाथों को गर्म पानी और साबुन से धोकर ही अन्य काम करें। सिम्टम्स क्या हैं चलिए ये भी बता देते हैं। आपको बता दें कि इससे इस बीमारी से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उस वो किसी और को इन्फेक्ट नहीं करता है। और इसका सिम्टम्स क्या है? तेज बुखार, मांसपेशियों में दर्द, थकान, सरदर्द और सांस लेने में तकलीफ। ऐसे अगर कोई भी लक्षण आपको दिखाई दे अपने आसपास तो तुरंत सलाह दे डॉक्टरों से संपर्क करने की। और फिलहाल तो हम जुड़ते हैं खूबसूरत से गाने के साथ।

और अब बढ़ते हैं लेटेस्ट अपडेट की तरफ। जी हाँ, कुछ हेडलाइंस लेकर हम आ चुके हैं स्टूडियो में। तो हेडलाइंस के साथ मैं मालिनी। अब चश्मा ही बनेगा कान की जरूरत। जी हाँ, कान की मशीन की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दें कि कम सुनने की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए आईआईटी के स्टार्टअप ने ये क्रांतिकारी समाधान पेश किया है। ये स्मार्ट ग्लास मरीजों को आवाज की दुनिया से जोड़ देगा। और दूसरा लेटेस्ट अपडेट, नोएडा एयरपोर्ट से यात्रा हो गई सस्ती। अकासा और इंडिगो दोनों एयरलाइंस ने कम किया किराया। कथा लैब स्टूडेंट्स जी हाँ, नई दिल्ली स्लम एरिया स्थित स्कूल को पढ़ाने के विशेष तरीकों के चलते दुनिया के चुने गए 50 स्कूलों में शामिल किया गया। समाचार पत्रों ने इन खबरों को प्रमुखता से जो है प्रकाशित किया है। और एक और खास खबर आपसे शेयर कर दें कि CBSE के 8वीं तक के बच्चे AI और कंप्यूटेशनल थिंकिंग में बनेंगे होशियार। DLED द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं आज

0: सुन रहे हैं आप 102.2 FM रेनबो कानपुर द म्यूजिकल हार्ट बीट। और अब प्रोग्राम में एंजॉय करते हैं एक और खूबसूरत सा सॉन्ग।
1: अनकान की फरमाइश, बिल्लू मुन्नी और शम्स की रामपुर।

और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, खेल जगत। जी हाँ, क्या है खेल जगत में लेटेस्ट चल रहा है, तो चलिए जोड़ते हैं आपको कुछ खास जानकारियों से। ग्रीन पार्क में होगा यूपी T20 लीग का चौथा संस्करण। जी हाँ, तो बहुत अच्छा होने वाला है। हमारे जो कानपुर शहर के लोग हैं उनको कुछ नया देखने को मिलेगा। IPL में प्ले ऑफ की दौड़ अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। आज यानी बुधवार को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होने वाले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और नाइट राइडर्स आमने सामने होंगी। अब जीत किसकी होगी ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो एक सॉन्ग जो है, हम एक सॉन्ग अच्छा सा है एंजॉय कर लेते हैं और उसके बाद मौसम क्या कहता है और क्या है लेटेस्ट अपडेट आज के मौसम की, यानी आगे आने वाले मौसम की, तो आपको बताएंगे। फिलहाल ये सॉन्ग।

वैसे हमारी जो आंखें होती हैं ना, ये अक्सर गर्मियों में आकाश को देखा करते हैं कि काश बादल आ जाएं और थोड़ा सा सुकून भरा पल हमें मिल जाए। फिलहाल तो क्या है मौसम की लेटेस्ट अपडेट, वक्त इससे पहले भागे कि चलिए आपको हम बता देते हैं। अब 4 सप्ताह पहले ही पता चल जाएगा मॉनसून का हाल। और चलते चलते आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आगामी जो है 5 दिनों में हल्के बादल छाए रहने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं, किंतु वर्षा की कोई संभावना नहीं है। फिलहाल तो आपको बता दें कि आज का अधिकतम तापमान क्या रहने वाला है। जी हाँ, आज का जो है अधिकतम तापमान जो है 38.4 डिग्री। जी हाँ, न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो 26.4 डिग्री रहने वाला है। और अब गुड मॉर्निंग कानपुर वाइंड अप करते हैं, थोड़ी देर में आपको जोड़ेंगे देश दुनिया की जानकारियों से। सुनते रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर, द म्यूजिकल हार्ट बीट।

0: समाचार प्रभात के साथ मैं और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
1: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडपाड़ी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
0: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में IAS अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन मुरुगन

0: नम और वित्त सचिव टी उदय चंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोग ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि सीपीआईएम के राज्य सचिव पी शुनगुमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। क्षेत्र वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह पांचवा कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट यूजी के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसिलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री

0: के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद GDP के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति यूवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार।

0: 102.2 FM रेनबो कानपुर की म्यूजिकल हार्टबीट से एक बार फिर से कनेक्ट हो चुके हैं आप।
1: अरे

0: और फिलहाल म्यूजिकल हार्टबीट से जब आप जुड़ चुके हैं तो बता दें सुरों की पुरानी महफिल प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आरजे मालिनी, बोले तो मुस्कुराती मालिनी। तो चलिए हवाओं के झोंकों के साथ साथ हम भी चलते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों के साथ। आनंद बख्शी के बोल हैं और धुन बनाई है आदी बर्मन ने। फिल्म का नाम है सीता और गीता।
1: हवा के साथ साथ,
2: अरे रे रे,
1: घटा के संग संग,
2: संभालना
1: हवा के।

हम भी तो आपसे यही कह रहे हैं कि आप भी हमारे साथ साथ चलिए और लुत्फ उठाते रहिए प्रोग्राम्स का, जहाँ भी बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको एंटरटेन करेंगे। फिलहाल तो नेक्स्ट सॉन्ग सुरों की पुरानी महफिल का पहुँच रहा है आप तक। जय खूबसूरत सी धुन जो आप सुन रहे हैं ना, ये है प्यासा सावन फिल्म के गाने की। सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की मिली जुली आवाजें हैं, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की धुन है।

वैसे सुबह सुबह के जो नज़ारे होते हैं ना, वाकई में बहुत खूबसूरत होते हैं, आकर्षित करने वाले होते हैं। चिड़ियों की चहचहाहट, फूलों की खुशबू मन को एकदम महका जाती है। तो चलिए, बहुत खूबसूरत सा गाना था, कहीं ना कहीं हमें इस खूबसूरत सी प्रकृति से जोड़ गया। और अब गाना आपको जो सुनवा रहे हैं, वो गाना पहुंच रहा है आप तक किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम है जवानी दीवानी। आदि बर्मन की धुन पर गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

0: आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
1: नमस्ते कानपुर, मैं हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला और आप सुन रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर, कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट।

एक बार आपने धुन सुनी और पहचानी होगी। जी हाँ, अब है कभी कभी फिल्म का गाना जो पहुंच रहा है आप तक। युगल आवाजें हैं, लता मंगेशकर किशोर कुमार की, साहिर लुधियानवी ने बोल लिखे हैं और धुन बनाई है खयाम ने।

किशोर कुमार की आवाज़ थी इस गाने में और बहुत ही वर्सेटाइल सिंगर रहे किशोर कुमार। चलिए एक और किशोर कुमार के स्टाइल से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। इस बार किशोर कुमार का साथ दिया आशा भोंसले ने। आर डी बर्मन ने धुन बनाई है और बोल हैं मजरू सुल्तानपुरी के।

और अब लास्ट सॉन्ग सुनवा रहे हैं सुरो की पुरानी महफिल प्रोग्राम का। जी हाँ, सबसे बड़ा रुपया फिल्म का नाम है। लता मंगेशकर किशोर कुमार की वंस अगेन आवाजें हैं और मजरू सुल्तानपुरी ने बोल लिखे हैं, बासु मनोहारी ने धुन बनाई है। और ये लास्ट सॉन्ग के साथ ही ना मैं मालिनी करूंगी टाटा बाय बाय इस प्रोग्राम से। मिलूंगी इस गाने के बाद ठीक 9 बजे रस बहार प्रोग्राम के साथ। तो स्टे ट्यून विथ अस ओनली ऑन 102.2 FM रेनबो कानपुर, द म्यूजिकल हार्टबीट।

102.2 FM रेनबो कानपुर की म्यूजिकल हार्टबीट से कनेक्ट हैं आप। नाउ इट्स टाइम टू प्रोग्राम रस बहार। प्रोग्राम में रस बहार, जी हाँ, रस बहार यानी रसीले सॉन्ग्स। और आज जो सॉन्ग्स होंगे ना, थोड़े से पुराने गाने आपको सुनवाऊंगी। रेट्रो लाइफ स्टाइल की प्रोग्राम में आज बातें होंगी, यानी आज के शो में बातें होंगी। और आज के शो के साथ मैं हूँ आरजे मालिनी, आपको लेकर चलूंगी पुरानी लाइफ की यात्रा पर। वेलकम डियर लिसनर्स। कुछ रंग पुराने, कुछ वाइब्स नहीं, इन दोनों के बीच दिल में आज भी बजती है यादों की वही फैमिलियर सी मेलोडी, जहां कुछ पुरानी यादों की झनकार में छुपी है मुस्कानें। जी हाँ, ये वो झनकार है जो आज भी सॉफ्टली टच कर जाती है। तो तैयार हो जाइए जनाब रेट्रो लाइफस्टाइल इस खूबसूरत से सफर के लिए। एक सॉन्ग पहले, फिर आपको ले चलेंगे फ्लैश बैक में।

इस वक्त आपके पहलू में हम यानी कि एफएम रेनबो कानपुर की म्यूजिकल हार्ट बीट बैठी हुई है। जी हाँ, 102.2 एफएम रेनबो कानपुर से आप जुड़े हुए, प्रोग्राम चल रहा है रस बाहर में। आज बातें हो रही है रेट्रो लाइफस्टाइल की, और जनाब आपकी इजाजत भी हमें मिल चुकी है, तो चलिए सवार होते हैं रेट्रो लाइफस्टाइल की राइड पर। चलते हैं फ्लैश बैक में। लीजिए जनाब, वक्त की धूल भी हट गई, आइए गुनगुनाएं कुछ भूले हुए नगमों को। जी हम सब साथ मिलकर, क्या वक्त था वो भी है। आपने भी उस वक्त को इस वक्त याद जरूर किया होगा जब हमारे पास घंटियों वाली साइकिल की सवारी होती थी, है ना। सवारी के साथ रेस और बेफिक्र शामों की लाइट होती थी उस वक्त, ना नाराजगी छोटी और मुस्कुराहटें जनाब अनलिमिटेड हुआ करती थी। तो तैयार हो जाइए नेक्स्ट सॉन्ग एंजॉय करने के लिए। बट एक बात, जी हाँ, यहाँ पर हम सिर्फ गाने नहीं सुनेंगे बल्कि यादों के उन रास्तों से गुजरेंगे जहाँ हर मोड़ पर एक कहानी होगी और हर धुन में थोड़ा सा बचपन। फिलहाल तो मैं आपको बता दूं कि आपको बताना क्या है। आपको बताना है कि वो कौन सा ओल्ड इज गोल्ड सॉन्ग है जो आपका फेवरेट है, जिसे गुनगुना कर या सुनकर आप पुरानी यादों में चले जाते हैं। तो जनाब मेल ना करिए हमें, मेल करके जुड़िए हमसे और बनिए प्रोग्राम का पार्ट। जी हाँ, हमारी मेल आईडी है AIRKANSOMEDIA@gmail.com। तो फिलहाल मेरा फेवरेट वाला सॉन्ग कौन सा है, लेट्स एंजॉय।

जी हाँ, हमारे पास देखिए एक मेल आ चुकी है। ये मेल में लिखा क्या है, लिखते हैं आरजी जी आदाब। इन्होंने एक बहुत अच्छा सा मैसेज थ्रू किया है, जल है तो कल है। वाकई में जल के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। ये लिखते हैं कि मेरा पसंदीदा जो गाना रहा है पुराना, दिल तड़प तड़प के कह रहा है अभी जा, फिल्म मधुमती का। तो ये हमें मेल भेजी है गंज डुंडवारा से शमशुल कमर राही ने। तो देखिए भाई कितना अच्छा गाना इन्होंने पसंद किया। वैसे एक बात बताऊं, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है गानों की। और जो अभी गाना था ना, दीवाना हुआ बादल, भाई ये तो मेरी चॉइस का था और काफ़ी लोगों के दिल का करार रहा ये सॉन्ग अपने समय में। क्या दौर था वो भी, जी हाँ, जब मोहब्बतें आँखों से शुरू होती थी और एक गाना पूरे शहर की धड़कन बन जाती।

आया करता था। चलिए चलेंगे 60s के दौर में, जब दीवाना हुआ बादल की धुन हवाओं में घुली तो दिलों में भी एक प्यारी सी दीवानगी खिली। किसी ने बालों में शम्मी कपूर वाला अंदाज सजाया, तो किसी ने शर्मिला टैगोर की मुस्कान में अपना सपना सजा लिया। रेडियो उस वक्त अलमारियों की आन बान शान हुआ करता था जनाब। रेडियो पर गूंजते गाने की आवाज धीमी जरूर होती थी, मगर फीलिंग्स फुल वॉल्यूम में सुनाई देती थी। तो आइए रेट्रो लाइफ स्टाइल के इस खूबसूरत से सफर में याद आ रहा है वो गुजरा जमाना, जब मौसम खूबसूरत हुआ करते थे, दिलकश नजारे हुआ करते थे और दीवानगी दिलकश हुआ करती थी।

जी हाँ, आप भी बताइए आपके दिल के करीब कौन सा वो पुराना सॉन्ग है जो आज भी आपके दिल को छू जाता है। और रेट्रो लाइफ स्टाइल प्रोग्राम आप सुन रहे हैं 2.2 एफएम रेनबो कानपुर की म्यूजिकल हार्टबीट से। रस बाहर प्रोग्राम चल रहा है। प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आरजे मालिनी। रेट्रो लाइफ स्टाइल, जी हाँ, पुरानी जिंदगी। जी हाँ, पुरानी जिंदगी की जो बारिशें थी ना, वो भी गजब छाया करती थी। वो बारिशें भी क्या बारिश थी जनाब, जब खिड़की खुली तो आधी थी। जी हाँ, आधी खिड़की खुली होती थी, बट दिल पूरा भीग जाया करता था बारिश से। और साथ ही 2-in-1 में कैसेट या रिकॉर्ड प्लेयर में रिकॉर्ड पर बारिश के गाने चल जाया करते थे पूरे फुल वॉल्यूम में। बारिश की धुन कमरे में ऐसे उतरती थी गानों के साथ जैसे मौसम खुद गुनगुना रहा हो। कोई खिड़की के पास बैठकर चाय एंजॉय करता तो कोई बारिश को देखकर साइलेंटली मुस्कुराता था। और जनाब, गाने की आवाज बगल के घर तक पहुंचती तो वहां से आवाज आती, अरे यार ये कैसेट तूने कब लिया। और फिर क्या बात थी भाई, सॉन्ग इतना अच्छा होता था कि सॉन्ग को रिवाइंड किया जाता था और गाने के साथ बारिश की यादों को सजाया

जाता था। मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या कभी आपने कैसेट की फंसी हुई रील जो कि निकल आती थी उलझ के, उसको लपेटने के लिए उंगली, पेन या पेंसिल का इस्तेमाल किया है? अगर किया है तो प्लीज कीजिए हमें मेल। हमारा मेल आईडी है AIRKANSOMEDIA@gmail.com और बनिए प्रोग्राम का हिस्सा। और आपके दिल के करीब वो कौन सा सॉन्ग है पुराना जो आपको आज भी सुनना पसंद है? फिलहाल तो एक गाना।

जी हाँ, इस गाने ने हमारा दिल ज़रूर चुरा लिया। बहुत ही खूबसूरत सा गाना था और ये आई थिंक आज तक गोल्ड बना हुआ है गाना। ओल्ड इज़ गोल्ड एक कहावत भी है, तो सबको ये गाना ज़रूर पसंद आता है। रेट्रो लाइफ स्टाइल प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं रस बाहर के अंतर्गत। और

102.2 FM रेनबो कानपुर की म्यूजिकल हार्टबीट से कनेक्ट हैं आप। आपको याद है ना अक्सर विंटर की इवनिंग। जी हाँ, चलिए पहले हम मेल को शामिल कर लेते हैं। हमारे पास मेल आ चुकी है। हमने पूछा था आपसे कि क्या कभी कैसेट टेप रिकॉर्डर में फंसी कैसेट की रील को आपने फिर से लपेटने के लिए पेन या पेंसिल का इस्तेमाल किया है। एक राधा नामदेव जी हैं, इन्होंने हमें मेल की है, सहारनपुर से हैं। राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव, अभिषेक नामदेव, हर्षित शर्मा, ये लिखते हैं जी बिल्कुल कैसेट फंस जाती थी उस वक्त तो बहुत गुस्सा आता था। पहले उंगली से कोशिश करते थे, कामयाब ना होने पर पेंसिल इस्तेमाल करते थे। बहुत अच्छे दिन थे। जी हाँ, बहुत अच्छे दिन थे वो, लेकिन बहुत अलग अलग से दिन थे जो आज भी बहुत याद आते हैं उनको आज भी। और इन्होंने अपनी पसंद का एक गाना भी बताया है, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम। इनको ये गाना बहुत पसंद है, ये गाना इनके दिल के करीब है। थैंक यू सो मच राधा नामदेव जी प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। रेट्रो लाइफ स्टाइल प्रोग्राम रसभार के अंतर्गत आप एंजॉय कर रहे हैं और हम बात कर रहे थे विंटर्स की इवनिंग की। तो जनाब, आज भी दिल बेचैन हो जाता है उस इवनिंग के बारे में सोच के। वाकई में वो इवनिंग जो है ना प्राइसलेस हुआ करती थी, जब आंगन में अंगीठी जलती थी और उसकी गर्म आँच के चारों तरफ पूरी फैमिली सर्कल बनाकर बैठ जाया करती थी। माँ के हाथ की गर्मा गर्म रोटियाँ, ऊपर से थोड़ा सा घी या मक्खन, और साथ होता था हंसी का अनलिमिटेड सेशन। ना वाईफाई था, ना फैंसी डिनर टेबल, बस कनेक्शंस फुल ऑन नेटवर्क हुआ करते थे। जी हाँ जनाब, कमाल तो ये था कि उस वक्त भी जब अंगीठी की गर्माहट हुआ करती थी तो रिश्तों में जलती थी एक प्यार की मिठास।

वाकई में जीने के लिए रिश्तों में प्यार जरूरी है, और प्यार का पुराना दौर भी क्या दौर था। लेकिन पुराने दौर की चर्चा करने से पहले एक बहुत पुराने हमारे लिसनर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ सोशल मीडिया पर, हमारी मेल के जरिए उन्होंने हमें मैसेज किया है। जाकिर मंसूरी हैं कानपुर देहात से, ये लिखते हैं कि बिल्कुल क्या है उंगली पेन पेंसिल का इस्तेमाल कैसेट को लपेटने के लिए, कैसेट की रील को लपेटने के लिए, कभी कभी तो झुंझलाहट भी हो जाया करती थी। थैंक यू सो मच जाकिर मंसूरी जी प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल तो इसी तरह एंजॉय करते रहिए प्रोग्राम रस बाहर में बातें हो रही रेट्रो लाइफ स्टाइल की। और उस दौर की अगर मोहब्बत की बात करें तो

मोहब्बत भरे दिल ना मोबाइल स्क्रीन पर नहीं बल्कि डायरी के पन्नों पर धड़कते थे। कभी गुलाब के फूल में दिल छुपा होता था तो कभी चिट्ठियों के लफ्जों में महकता था, और गुलाब तो सालों डायरी में रखा जाता था, और जब जब वो देखा जाता था ना तो हर बार नई तासीर के साथ ही मुस्कुराया दिखता था। चिट्ठियाँ, जी हाँ, सच में वो कागज़ की मोहब्बत भी कमाल की होती थी। स्याही सूख जाती थी मगर फीलिंग्स कभी नहीं सूखती थी। आज चैट्स तो बहुत हैं मगर वो इंतज़ार वाला प्यार आज भी दिल को सॉफ्टली रिवाइंड कर जाता है, लाइक दिस सॉन्ग।

0: 102.2 FM रेनबो कानपुर की म्यूजिकल हार्टबीट कनेक्ट किए हुए हैं आप।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही आरबीएल इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या इंडिया पोस्ट.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: कागज

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नमस्ते कानपुर, मैं हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला और आप सुन रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर, कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट।
2: वेलकम बैक टू द शो रसबहार। रसबहार में आज बातें रेट्रो लाइफस्टाइल की। जी हाँ, ये गाना आपको मैं पूरा सुनवा उससे पहले चलिए एक मेल हमारी स्क्रीन पर आ चुकी है। वो लिखते हैं, ये लिखते हैं गोविंद पाल कानपुर से। थैंक यू सो मच, आप हम प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं, प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। ये लिखते हैं वो

दिन भी क्या दिन थे जब हम रद्दी वाले से कॉमिक्स और पत्रिका मांग कर पढ़ते थे। चंपक, नंदन, मोगली, चित्रहार, देखिए कितनी अच्छी इन्होंने पुरानी मेमोरी शेयर करी है। और वाकई में जब हम उन दिनों में जाते हैं ना तो दिल खुश हो जाता है और हमारा जो है पूरा दिन बेहतर होता है। फिलहाल एंजॉय करते हैं ये गाना।

भाई मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लगातार आपकी मेल समय मिलती जा रही है और प्रोग्राम खत्म होने का वक्त भी पास आ रहा है। एक हमारे पास मेल आई है, हमारे एक पुराने लिसनर है नीलू शर्मा रूपपुर चंदेला से। मोहब्बत का कोई रंग नहीं फिर भी वो रंगीन है, प्यार का कोई चेहरा नहीं फिर भी वो हसीन है। नमस्ते, गुड मॉर्निंग दीदी, कैसी हो? अच्छे हैं नीलू। घर में टेप रिकॉर्डर ट्रांजिस्टर था, उस पर कैसेट लगाकर गाने सुने जाते थे। मुझे सजना, दिलवाले, मोहरा, राजा हिंदुस्तानी, इन फिल्मों के गानों की गूंज जो है बहुत पसंद थी। गली गली में ये गाने गूंजते थे और मेरे दिल के करीब जो सॉन्ग था वो है आईना है चेहरा तेरा तस्वीर देखती हूँ। नीलू ने मैसेज किया और नीचे लिखती हैं, कैसेट उलझ जाने पर पेन पेंसिल का इस्तेमाल तो हमने खूब किया। जब कोई चीज़ नहीं मिलती थी तो मम्मी जी का जो स्वेटर बनती थी उसकी सलाई हम निकाल लाते थे चुपचाप से और उससे जो है रील को सुलझा कर फिर चुपके से रख देते थे। और जब मम्मी देखती थी तो मम्मी का स्वेटर उलझ जाता था क्योंकि वो फंदे निकल गए होते थे। तो मम्मी जो हैं हमको बहुत डांटती भी थी और कभी कभी मार भी खानी पड़ती थी। तो नीलू जी ने ये पुरानी मेमोरी हमसे शेयर करी है, बहुत अच्छा लगा नीलू जी। देखिए पुराने गाने भी कितने गोल्डन सॉन्ग्स होते थे और आज भी हम पुराने गाने सुना रहे। वाकई हमारा बचपन भी क्या बचपन था, या यूं कहें कि वो वक्त जब सादगी थी तो हम स्माइल करते थे लोगों को देखकर और आपस में सेलिब्रेशंस होते थे तो जनाब हम मॉल या रेस्टोरेंट्स में नहीं जाते थे, हम एक दूसरे के घर जाते थे। रियली क्या टेस्टी दिन थे। जी हाँ, बहुत सारी टेस्टी डिशेज जो है घर पे ही बनती थी और छोटी छोटी खुशियाँ आती थी तो हम घर के आंगन में, छत पर या किसी पार्क में चटाई डालकर बैठकर एक साथ एंजॉय करते थे। स्टील के डिब्बे खुलते थे, आलू की सब्जी और पूड़ी की आहा क्या महक, और नए नए आम के अचार की खुशबू। जी हाँ, अपने शाही अंदाज, इसी शाही अंदाज पर हम अक्सर इतराते भी थे। और मीठे में ज़्यादा चलती थी तो खीर, और वो भी घर की बनी हुई। जी हाँ, सबके लिए सरप्राइज होती थी ये खीर। बस शुरू होती थी अंताक्षरी या चुटकुले, कहानी, और देखते ही देखते फैमिली टाइम ही सबसे बड़ा पार्टी टाइम बन जाता था हमारा। जी हाँ, बल्कि साथ बैठ के सारी चीज़ों को एंजॉय करने का वो ज़माना आज भी याद आता है। रेडियो पर बजते थे ओल्ड सॉन्ग्स, हर इवेंट्स को ख़ास बना देते थे वो सारे सॉन्ग्स। ऐसा ही एक गोल्डन सॉन्ग पहुँच रहा है आप तक।

जनाब इतना ही कोई गा कर ये लाइन ही बया कर देता था, तो जो महिलाएं थी ना वो इस लाइन को सुन कर के शर्मा के लाल हो जाया करती थी। जनाब ऐसे ही तो कॉम्प्लीमेंट दिए जाते थे गानों के जरिए, और साड़ी पहनना तो हर लड़की का सपना होता था। वैसे अगर रेट्रो लाइफ के फैशन की हम बात करें तो रेट्रो लाइफ का फैशन भी सच में फुल ऑन स्टाइलिश हुआ करता था। उस वक्त ना वार्डरोब्स बड़े नहीं थे, बट एक एक ड्रेस की अपनी कहानी होती थी। कोई बेल बॉटम पहनकर खुद को हीरो समझता, तो कोई पोल्का डॉट वाली फ्रॉक में पूरी फिल्मी वाइब्स ले आता था। उस वक्त की खास बात पता है क्या थी? उस वक्त की खास बात थी कि हम कपड़े ओकेजनली लेते थे, रोज नहीं, और कपड़े रिपीट भी पहनते थे। इसीलिए तो त्योहार, शादी और संडे आउटिंग का दिन जो है उस दिन के लिए हम दिल से इंतजार किया करते थे। और जब हमें अपनी फेवरेट आउटफिट पहनने का मौका मिलता था तो सुबह से ही हमारी खुशी का ठिकाना नहीं होता था। जी हाँ, और इस आउटफिट को पहनकर वॉक भी स्लो मोशन हो जाया करती थी, और फीलिंग्स बिल्कुल सुपरस्टार वाली। जी हाँ, उस वक्त फैशन सिर्फ ट्रेंड नहीं, एक एक्साइटमेंट हुआ करता था। सुन रहे थे आप 102.2 FM रेनबो कानपुर की म्यूजिकल हार्टबीट, और मैं थी रजबाहर प्रोग्राम में रेट्रो लाइफस्टाइल की बातों के साथ आरजी मालिनी। फिलहाल दीजिए इजाजत, एक लास्ट सॉन्ग पहुंचा रही हूँ आप तक, और इसके बाद अर्चना प्रोग्राम के साथ मिलती हूँ आपसे। स्टे ट्यून विथ अस।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: अब टेलीलॉ के माध्यम से ना सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं, बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
6: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप, अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RBI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
8: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
9: मैं मालिनी विविधा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। विविधा के साथ मैं स्टूडियो में आ चुकी हूँ। सबसे पहला भजन अर्चना प्रोग्राम है आज, और उसका पहला भजन हरि ओम शरण की आवाज़ में आप तक।

और अब अर्चना प्रोग्राम का जो है अंतिम भजन पहुंच रहा है आप तक। भजन क्या, आइए सुनते हैं गणेश जी की आरती। आवाज है अनुराधा पौडवाल की।

गणेश जी की सी आरती के साथ अब आज का अर्चना प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। सुनते रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर द म्यूज़िकल हार्टबीट। थोड़ी देर में आपको ले चलेंगे अपने लखनऊ केंद्र की ओर और 11 बजे मिलेंगे हम नवा प्रोग्राम के साथ। आज हम नवा होंगी आरजे रंजना।

नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें आज सुबह लखनऊ के सिविल अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मृत्यु का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा बिष्ट यादव वर्तमान में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के पुत्र और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का अचानक निधन अत्यंत दुखद है। भारत कल से शुरू होने वाले 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सोने और चांदी पर 5% और प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। गोरखपुर के रामगढ़ताल में आज से यूपी सहित विभिन्न राज्यों की 16 टीमों में शामिल 275 खिलाड़ी अस्मिता नेशनल महिला रोइंग लीग में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। लीग में राज्य सीधे भाग लेने के बजाय जिला स्तर पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से मेजबान जिले की टीम गोरखपुर क्वींस अपनी चुनौती पेश करेगी। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में आज भी कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने पूर्वी जिलों में कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवा चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। इस बीच प्रदेश के पश्चिमी जिलों में कल हुई तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित होगा। आप सुनते रहिए FM Rainbow।

0: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत के मुंह में
0: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल कटारी की गोट,
0: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जवां अंजुमन।

0: दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ के लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: सुनते रहिए कुछ नई कुछ पुरानी।
4: चलते रे इश्क में पड़ जाते
5: हैं। हमारी और आपकी साझा कहानी,
6: आपके अपने रेनबो की जबानी।
7: आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी।
8: जी हाँ, पुराना फ्लेवर विद नया कलेवर।
9: ये हुसन तेरा तौबा तौबा तौबा तौबा।
3: 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

स्नेह भरा नमस्कार, राम राम भाई बहनी, कैसन हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब श्रोतन के हमारे खास कार्यक्रम सुगंध मिट्टी के मां। अगर बात की जाए सुगंध माटी की कार्यक्रम के, सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर यू कार्यक्रम प्रस्तुत होते है। लोक संगीत जौन हमारा अनमोल धरोहर बा, एक ऐसन बगिया आए जहाँ रंग बिरंगे फूल होवत हैं। कतहूँ पहाड़न की ठंडी नदी झरना, कहूँ पंजाब की लोक संस्कृति की धुन, कहूँ राजस्थान का एक घूमर, अलग अलग बोलियन के लोकगीत अपन सुगंध बिखेरिए। तो ये सब बढ़िया बा, और ये सब के पहले हम का करे जा रहे हैं जानते हो? हम तोरे सबके लोग के बीच में गौरी के ललनवा का सुमरन कर ले तनिक, हम सब मिलके, है ना? तो चलो यू करा जाए।

0: यू हमार भी कामना के सब है कि अंगना में गौरी के ललन माँ का आशीर्वाद बना रहे। और चाहे वो यू के पहले हम ले थे ये छोटा सा का कहे थे कमर्शियल ब्रेक कहे थे का कहे थे, तो चलो यू आप सब लोगों तक पहुँचाई दी।
1: में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी,
2: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

तो भैया कार्यक्रम कौन चल रहा है? कार्यक्रम में चले चल के साथ साथ कितने लोग अभी भी जुड़ गए हैं 100.7 FM रेनबो पे, वो एक बता दें कि कार्यक्रम आप लोगों के बीच में आ रहा है सुगंध माटी की। और अगर हम बात करें कल के, जो कल के दिन हमार बीतवा, उसमें आस्था और श्रद्धा का संगम जैके कहते हैं बड़ा मंगल ही बुढ़वा मंगल, कल देखा का हमका मिला। सह लखनऊ की संस्कृति में सब कहूँ भजन भंडारा पूजन, हनुमान जी के गीत भजन सब कहे दिल के लुभावत रहे। और लुभावत रहे तो बस ऐसे मन करत रहा कि लाओ सुनन जय भक्ति में लीन रही, ऐसा कुछ गीत हम चाहे आप सभी लोगों को सुनवाए के। तो चलो पहले ये गीत सुन लिया।

हो, जय हो वीर हनुमान की। और आगे बढ़ाते तो कहा था कि बचपन के दिन हम वापस नहीं ला सकते हैं, कहे से कि एक बार जो बचपन अभी गवा हुई के हम याद कर सके थे, वही की चीजें याद करके मन का खुश कर सके थे, लेकिन वही बचपन वापस नहीं आवाते है ना। तो हम एक ऐसा गीत आपके सुनवाए जा रहे हैं जिसमें बचपन की बहुत सारी लड़केवा के बातचीत है, और धुन के साथ जब सुना जाता है तो गीत में का आनंद आवत है। तो बचपन में कौन कौन खेल खेलत रहे हैं, कौन कौन चीज सैतानी नटखट शरारत करे थे, ये सब सुनो ये गीत में। तो हो सकता है हमारा अर्थ रहे तुम्हों की अच्छा लगे।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाए अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: स्टे ट्यून्ड टू 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

100.7 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम चलते है सुगंध माटी की यही माँ आपका हम सफर आपके दोस्त रत्ना शुक्ला है आप सभी लोगों के साथ। और तनिक चलते हैं पहाड़ की ओरिया, ठीक है। पहाड़ों पर अल्मोड़े की बाल मिठाई, नंदा देवी के दर्शन, ठंडे पहाड़ों की भीनी सुगंध और हसीन वादियों के बीच दुई दिलन की आवाज, दुई दिल में काका चहक उठत है, वो पहाड़ों के बीच में कत्ती गीत यू नीक लागत है। तो चलो पहाड़ों की मीठी धुन सुना जाए।

यूं तो रहा बहुत नीक नीक पहाड़ी गीत। अब एक मेल आईडी है fmakashwanilakhnow@gmail.com। यू मेल आईडी पे आप मेल कर सकत हो, बता सकत हो कि कैसा लागत है आपको यू कार्यक्रम, जेकर नाम है सुगंध माटी की। अनेकता में एकता जो बात कही जाती है ना, तो उसको हम सार्थक करते हुए उसके अंतर्गत बहुत सारे गीत आपको तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कार्यक्रम सुगंध माटी की में, जो कि आता है सिर्फ और सिर्फ 100.7 एफएम रेनबो पर। और इसी प्रोग्राम में बहुत सारे गीत हम आपको सुनवा चुके हैं, बहुत सारे सुनवाने को भी हैं, जो कि गीतों का तो बिल्कुल क्या कहते हैं कि हमारे पास खजाना है, तो उन खजाने में से कुछ गीत हम आपके बीच में परोस रहे हैं। और उन्हीं गीतों में एक गीत की बारी है जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं।

और गीत गवने के साथ साथ यह पते की बात हमको पता लगी है। कल हमारे पुत्तन भैया गांव से आए रहे। हम कहा भैया कई साना हुआ शहर माँ, तो बताइन यह शहर माँ कौनो सामाजिक संस्था बटे। वही ग्रामीण अंचल के लड़कन बिटेवा के प्रतिभाओं के तराशे निखारे खातिर शहर में एक संस्था है, जौन सामाजिक संस्था में सभी का जोड़ते हैं और कहते हैं जौन जौन ऐसा प्रतिभा है, जौन जौन ऐसे लड़कन बिटेवा है गांव ते रहते हैं, वही सब का स्वागत है, वही शहर आके कछु न कछु अपन कला सीख सकते हैं। तो बच्चन के उज्जवल भविष्य बनावे के कामना से ऐसा व्यवस्था के आगे बढ़ावते हमारे पुत्तन भैया। तो सुनो पंचन, अब गावन में कोनो होनहार अपन कोनो प्रतिभा कला के जरूर पहचान सकते हैं, काहे से कि नीक नीक सामाजिक संस्था जौन शहर में बहुत सारी हैं, ऐसे वही से जुड़ के उमा में अपना संस्कारण के आदान प्रदान कर सकते हैं और यू सब करके गीत के आनंद गवनाई भी जो हम सुनवा रहे हैं कार्यक्रम सुगंध माटी की माँ, वही का आनंद लिए जाओ। और यू एक पते की बात हम तुमको बताए देने, तो एक ध्यान रखो और आगे बढ़े खातिन शहर की संस्थाओं से जुड़ सकते हो। बहुत कुछ आजकल समाज में आपके खातिर, आपके आगे बढ़ावा देके देवे के खातिर आ चुका है, तो जुड़ो और यू गीत सुनो हम जो सुनवाए जा रहे हैं तुम सबे का।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
3: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत के मुंह में
2: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
3: सितारों भरे आंचल कटारी की गोट,
2: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
3: जरीदार जलवे जमा अंजुमन,
2: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
3: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।

0: लखनऊ
1: 100.7 FM रेनबो।
2: स्टे ट्यून्ड टू 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: धड़कन लखनऊ की, जी आप सुनत हो सुगंध माटी की कार्यक्रम 100.7 FM रेनबो पर। हम हैं ना आपके साथ, आपके दोस्त, आपकी सखी, आपकी हम सफर रत्ना शुक्ला, आप सभी लोगों के साथ। और सुगंध माटी की माँ हम मेल करे मेल का हम स्वागत करते थे, लेकिन है विकास जी। हेलो मैम, चरण स्पर्श में विकास, गांव सली, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव से आपका कार्यक्रम सुना हो। कार्यक्रम बहुत ही लाजवाब चल रहा है मैम जी, और साथ में इतना अच्छा सा आपने कच्चे आम से लदा हुआ ये बिरवा जो है हमारे बीच में भेज दिया है फोटो के जरिए। तो बस आपने तो दावत दे दी कि बस हम लोग भी जिला उन्नाव में आपके बगीचे में आए और वहां पर आम के बगीचे में आम का जब पक जाए तो उनको खा के उनका आनंद उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास जी। प्रवीण श्रीमाली जी का भी मेल आया, लेकिन उन्होंने कार्यक्रम से संबंधित कुछ भी नहीं लिखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। मिसेस गीता सेठ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम राम हमारे तरफ से। गांव आई पर कार्यक्रम का बहुत अधिक सुना जाते हैं, माटी के सुगंध में सभी लोग जुड़े हैं, ये बहुत नीक बात कह दी आप गीता सेठ जी, एफएम दीवानी। और ये कार्यक्रम बहुत भावत है हम सभी लोगों का। गांव में इस समय बहुत व्यवस्था है, काहे से कि सब केव शादी विवाह में बिजी हैं, लेकिन रेडियो सुने का बेचैन रहते, काहे से कि कार्यक्रम जो उनावत है सुगंध माटी की, इवन सब ये लोगों का मन लागत है। तो गीता सेठ जी एफएम दीवानी, आपका बहुत स्वागत के साथ साथ हम धन्यवाद करी थे, काहे से कि आप गांव के सभी लोगों का जोड़त हो कार्यक्रम और यू चैनल से जोड़ा थे हो और सब मिल के आनंद उठावत हो। तो ऐसे आनंद उठावत रहो, ऐसे ही प्यार इसने लुटावत रहो एफएम रेनबो के संगे। ग्राम नागर कोहा कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुना देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा, बीबी आराध्या, यू मेल तो करे ने लेकिन कार्यक्रम से संबंधित कछु नहीं लिखिन है। तो झग्गा राम साहू जी आपहु के धन्यवाद हम करित है। भैया मोनू सेठ आए गए हैं कार्यक्रम मार, रत्ना बहन जी को प्रणाम। सुगंध माटी के कार्यक्रम में आपका स्वागत बा। ये प्रोग्राम खातिर हमारे नानी जी बहुत उत्सुक रहते, हम जानते हैं आपके नानी बहुत करेजा से सुना थी ये कार्यक्रम का। और आज हमारे नानी जी कटहल की सब्जी, अरे वाह का कहे, कटहल की सब्जी और बेसन की रोटी बनाई है। और हम हूँ आज नानी के हाथे से बना बेसन की रोटी खावे, साथे साथे प्रोग्राम सुनत रहे। तो कटहल और बेसन की रोटी का ऐसा मेल जोल है कि का कही कि बस साथ में हरी चटनी और जोड़ ले अगर हुई सके तो। बस खाते वक्त हमका तनिक रत्ना शुक्ला की याद कर ले, काहे से कि हम हूँ के जमान में तनिक स्वाद आ जाएगा, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद नानी के, हमारे प्रणाम कहियो और यूं ही आपन प्यार जोड़े रहियो एफएम रेनबो के संग। मोनू सेठ भैया आंचल क्षेत्र खालिसपुर से इनका मेल आ गया। नमस्ते दीदी, सुगंध माटी में सुगंध ही सुगंध खुशबू बिखेर देवो, गवनई बहुत नीक बजावत हो, सभी तारीफ खूब करत बा। और हमारे सास ससुर भी कार्यक्रम के दीवाने हो गए, अरे वाह, सास ससुर भी कार्यक्रम सुनने लगे और लड़कैया गाना बहुत सुंदर लग रहा है। आंचल क्षेत्र खालिसपुर से लिखिन है। तो आपन जो पिता माता हैं जो कार्यक्रम सुनते हैं उन्हों के हमार पर नाम पहुंचा दे। आचा सेठ आप बहुत नियमित श्रोता हो एफएम रेनबो की, तो आपहू के जरिए बहुत सारे लोग यू मेल सुनत हुई है और बहुत सारे लोग जुड़े वाले भी हैं। कहे से 10:43 हुई गवा है कार्यक्रम सुगंध माटी के में आपकी सखी रत्ना शुक्ला आप सभी लोगों के साथ है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू परवाला मेल कर दी है, माटी के सुगंध कार्यक्रम सभी तक आपन खुशबू भेज रहा है, गाँव में दादी नानी चाची भौजी भैया दादा सबका बहुत नीक लाग रहा है। अत्ते लोगों का नाम जोड़ दी, ये हुई हम चाहत रहे कि ये कार्यक्रम सब लोग सुने, दादी नानी चाची भौजी भैया और भौजी ननद के रिश्ते के तनिक याद आ रहे। चलो आगे बात कही करब। रत्ना महिनी एकदम जबरदस्त चलत बा प्रोग्राम में माटी की सुगंध। सोनू परवाना मेल एक्सप्रेस अरिजीत सेठ। सोनू परवाना आपहू के बहुत बहुत धन्यवाद, सभी के जोड़ दियो और दादी नानी चाची भौजी की यू कार्यक्रम सुन के दिन भर बहुत अच्छा अच्छा बिल्कुल बढ़िया बढ़िया बीतब, यू हमका पूरा पूरा विश्वास है। तो सोनू परवाना जी आपहू बहुत बहुत धन्यवाद करी थे। जावेद अख्तर जी मेल कर दिन ये लिखिन है।

कार्यक्रम सुगंध माटी की रत्ना दीदी आपकी गुड़ की जैसी मीठी आवाज में सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम का भी हमें बेकरारी से इंतजार रहता है और गीत सोहर भारती हैं, गीत बहुत ही पसंद आ रहे हैं, रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से। जावेद अख्तर जी, आप बराबर मेल करते रहते हैं और कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं, ये आपकी बहुत खूबी है, तो आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहते हैं। इन बातों के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हम आपको एक बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही नीक सा और कम सुनने को मिला था, लेकिन यूँ तो संस्कृति से जुड़ा गीत है, तो चलो पहले एक सुन लिया जाए, उसके बाद हम एक के बारे में बात करें, ठीक है।

वाह, आप अंकित करी मिट्टी के महाक संस्कृति और अपनापन जौन हमारे लोकगीत की जान होते मनत हो कि नहीं बतावत है। राजस्थान के लिए संस्कृति और यहाँ की मेहमान नवाजी जबरदस्त होवत है। वहां का पारंपरिक घूमर नृत्य दुनिया में अलग ही रंग बिखेरे थे, हर किसी को थिरकने पर मजबूर कर देता है। ये घूमर नृत्य एक विशेष शैली का घूमर नृत्य होता है और इसमें कई बार घूमकर चक्कर लगाकर खास घूमर डांस किया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है और देखने के साथ साथ इस घूमर डांस को करने में भी बहुत आनंद आता है। अब इसके बाद थोड़ा सा रंग बदलते हैं और ये गीत आप तक पहुंचाते हैं। 10:52 हो गए, बहुत ही कम समय है, बहुत सारे गीत है हमारे पास आप तक पहुंचाने के लिए, लेकिन कार्यक्रम सुगंध माटी की जितना उसका समय नहीं गीत हम आप तक पहुंचा पाएंगे, तो चलिए कोई बात नहीं। ये गाना फिलहाल बिल्कुल क्यू करके रखा है और इसमें भी आपको बहुत अच्छी सी खुशबू आने वाली है, कहां की, पंजाब की।

और बखर बिल्कुल इजाजत नहीं देवत है कि हम सुगंध माटी की कार्यक्रम को बहुत ज्यादा बढ़ा सके। कहे से कि 10:55 हुई गवा है तो रचनात्मकता से भरपूर माटी की सुगंध चहु दिशा में फैले ऐसा उद्देश्य आप सब मिलजुल कर अपन संस्कृति के अपन संस्कार के अपन माटी की सुगंध का यारुहार बढ़ावत रहो यू कामना यू आशा के साथ आपके दोस्त आपके हम सफर रत्ना शुक्ला आपसे लेते हैं अनुमति। तो बने रहो 107.7 FM रेनबो के साथ सुनत रहो जुड़े रहो।

0: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत के मुंह में
0: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
0: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जमा अंजुमन,
0: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM।

102.2 FM रेनबो कानपुर की म्यूजिकल हार्टबीट से कनेक्ट हो चुके हैं आप, और ये वक्त है प्रोग्राम हम नवा का।

0: वेलकम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? भाई देखिए, हम स्टूडियो में आ चुके हैं और आप सुबह से हमको सुन रहे हैं, और आज मेरे साथ मेरी जो एक हमनवा है वो सामने बैठ के मुस्कुरा रही है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी, आप उनकी हंसी से पहचान रहे होंगे शायद, तो वो अपना इंट्रोडक्शन खुद ही देंगी आपको।
1: नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो संगिनी रंजना, और इस्तकबाल करती हूं आप सभी का आवाज, अल्फाज और एहसास की इस दुनिया में, इस दुनिया जिसका नाम है हम नवा।
0: जी हाँ, हम नवा यानी हम और रंजना। आज आप
1: और रंजना तो है ही,
0: हाँ, और हमारे लिसनर्स भी हैं,
1: रेडियो का पूरा
0: परिवार, और हमारे लिसनर्स भी कनेक्ट हैं,
1: वो रेडियो परिवार ही।
0: हाँ, तो काफी एक घंटा हम आपके साथ अब बिताने वाले हैं, और क्या क्या बातें होंगी, बहुत इंटरेस्टिंग से आज बातें लेकर हम आपके लिए आए हैं। रंजना, बताया जाए लिसनर्स को आज हम किस किस विषय पर बात करेंगे?
1: एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम कुछ एक योजनाओं की बात बताएंगे लोगों को, ताकि वो भी इनसे जान सके इनके बारे में कि क्या क्या चीजें उनके लिए अवेलेबल हैं, और कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी हमारे साथ जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हैं। थोड़ी सी अपने, कहते ना, शौक बड़ी चीज है।
0: हाँ,
1: तो
0: सही बात है,
1: कर लेंगे हम अपने हॉबीज के बारे में,
0: और ये जो हमारा एनवायरनमेंट है, ये प्रकृति है, बहुत सारे लोग जो अपना शौक फरमाते हैं ना, वो इनसे भी जुड़े होते हैं, मतलब प्रकृति को लेकर के उनके जो एक होते हैं ना, उनको लगता है कि जो हम पेड़ लगाएं उसमें बहुत सारे फूल खिलें, तो उसमें हॉबीज की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे कि डिफरेंट टाइप की, जरूरी नहीं है कि सबकी शौक जो है पेड़ पौधे लगाने के, लिए फिर भी एक लगाना चाहिए।
1: देखिए, प्रकृति की बात होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम प्रकृति का ही एक
0: अंश
1: है। बिल्कुल,
0: और बात करेंगे साथ में फखरुद्दीन अली अहमद, आज इनकी जन्म जयंती है, और आर के नारायण एक फेमस राइटर हैं, आज उनकी पुण्यतिथि है, उस पर भी हम बात करेंगे थोड़ी सी, और प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इसके बारे में कुछ हमारे एक डॉक्टर हैं जुड़ेंगे जो आपको सुझाव देंगे, और साथ में कुछ जरूरी बातें हम आपको बताएंगे।
1: एक जो हमारा बड़ा ही फेवरेट सेगमेंट है हमारा, क्या हमारे जो श्रोता हैं वो भी उसको सुनने के लिए बहुत इंतजार में रहते हैं, और वो है रेसिपी वाला कॉलम। तो आज हम, क्योंकि आपने प्रकृति की बात की है, तो मैंने सोचा कि यहाँ वहाँ की सब्जियों को चुनकर एक रेसिपी तैयार की जाए, और ये रेसिपी आई है केरलम से।
0: अरे वाह, क्या बात है, मतलब केरलम यानी साउथ।
1: बिल्कुल,
0: साउथ का एक अलग ही खूबसूरती मतलब सामने आ जाती है आंखों के सामने जब केरल की बात होती है। खैर, उसकी तो हम बाद में चर्चा करेंगे, और ये हम ज़रूर बता दें कि आज तेजस्विनी में हम क्या बात करने वाले हैं। आजकल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है आईपीएस बीसुमती,
1: आज तो हम उनकी बात करेंगे।
0: हाँ, आज हम उनकी बात करेंगे। तो रंजना, आगे अब क्या करना है, पहले लिसनर्स को मेल आईडी बता दी जाए।
1: बिल्कुल, मेल आईडी बता दें, हालांकि हमारे लिसनर्स जो हैं उनको याद हो चुका है हमारा एड्रेस भी और हमारा ईमेल एड्रेस भी।
0: तो मेल आईडी एक हम सोच रहे बता दें, हमारी मेल आईडी है aarkansomedia@gmail.com
1: aarkansomedia@gmail.com और क्योंकि हमारा देश जो है ना, अभी हमने बात करी, हम कानपुर में बैठे हुए हैं और केरलम तक की बात कर रहे हैं, हमारा जो देश है इतनी सारी विविधताओं से भरा हुआ है, अलग अलग तरह के यहाँ पर व्यंजन है, अलग अलग तरह का पहनावा है, बोली है, भाषा है, उसके बाद भी देखिए हम ना कनेक्ट हैं।

0: आज तुम्हारा लुक भी बिल्कुल केरलम वाला आ रहा है.
1: हाँ, मुझे बहुत ना सूदिंग लगता है केरला का लुक. तो क्योंकि हम इतने कनेक्ट हैं और रेडियो के माध्यम से भी हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं.
0: बिल्कुल.
1: तो मैं सभी श्रोताओं को ये बताना चाहती हूँ कि जो भी श्रोता इस वक्त हमें सुन रहे हैं और वो हमारे प्रोग्राम्स को सुनकर कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं. उनके सुझावों का आमंत्रित है उनके सुझाव. और उसके साथ ही साथ अगर वो कुछ और सुनना चाहते हैं, कोई नई चीज़ें देना चाहते हैं, कोई नई बात बताना चाहते हैं तो भी हमें बता सकते हैं. और हमारे जो पुराने प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनके फीडबैक भी हमें दे सकते हैं. एक नया प्रोग्राम हम इसके लिए शुरू करने वाले हैं. प्रोग्राम का नाम है मेल मिलाप. और इसकी जो पूरी जानकारी है मुझे लगता है आप दे ही दें.
0: बिल्कुल, क्योंकि जब मेल मिलाप की हम लोगों ने बात करी है तो भाई लिसनर्स हमारी जो प्रोग्राम्स का पार्ट बनेंगे उनकी मेल्स आएंगी तो शायद उनके सजेशंस के जरिए बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी कि हमें उन तक और कनेक्ट होने के लिए क्या करना है. तो जानकारी चलिए हम पहुंचाते हैं आप तक.
1: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना.
2: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार. लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप.
1: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप. तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप.
2: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर. पिन कोड है 208002.
1: हमें ईमेल करें. हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com. भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर मेल मिलाप. तो हमें जरूर बताइएगा कि आगे क्या सुनना चाहते हैं आप. फिलहाल हम आपको सुनवाने के लिए तैयार हैं एक बेहद खूबसूरत सा गीत.
0: बिल्कुल, वो गाना बहुत ही खूबसूरत है, हमने प्ले कर दिया है.

0: बाय द वे रंजना, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब गाने चलते हैं और प्रोग्राम से कनेक्ट रहते हैं, और पता है हम तुम साथ में बैठे हैं तो अच्छा तो लग ही रहा है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे बैठ के महसूस होता है हमारे लिसनर्स भी जुड़े हैं।
1: मैं भी महसूस कर रही हूँ कि आप बिल्कुल इधर उधर नहीं गए,
0: सीधे पॉइंट पर आए हैं भाई। हमें देखिए, देखो रंजना, होता क्या ना, लिसनर्स हमसे जुड़ते हैं लाइव हमारी मेल के जरिए, तो हमें पता लगता है कि वो मेरे साथ हैं। तो छोटे से उनको प्रश्न का जवाब देना है, जिसमें कि हमने उनसे क्वेश्चन किया है आज के प्रोग्राम में कि आप अपने शौक का काम करते वक्त कैसा महसूस करते हैं, आपको बताना है। और दूसरा आपको बताना है आप प्रकृति से जुड़कर खुद में क्या बदलाव देखते हैं। तो इन दोनों के आप जवाब दीजिए और बनिए प्रोग्राम का हिस्सा और हमें मेल करिए
1: AIR consomedia@gmail.com पर। आप जानते ही हैं हमारा ईमेल एड्रेस। और इसके साथ ही साथ, जैसा कि मालिनी जी ने कहा कि हमें अच्छा लगता है आपसे बात करना, एक्चुअली जब हम आपके साथ कनेक्ट होते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मालिनी जी, इसके साथ साथ हमें बहुत अच्छा लगता है ना जब कोई हमारा बहुत ख्याल रखता है, थोड़ा पैम्पर करता है, केयर करता है।
0: हाँ।
1: और आपने कभी महसूस किया है कि सामाजिक तौर पर भी जब कोई महिला, जिसे हम देखते हैं कि वो गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, तो उसका उसकी केयर जो है ना अपने आप बढ़ जाती है, भले ही आप उससे परिचित हो या ना हो। मसलन अगर आप बाहर निकल रही हैं और जो आसपास के लोग हैं वो आपको जगह दे देते हैं बैठने के लिए, आपको कतार में आगे खड़ा कर देते हैं ताकि आपका काम जल्दी हो, तो वो आपकी एक एक्स्ट्रा केयर करने लग जाते हैं और ये बहुत ही अच्छा महसूस कराता है।
0: एक गुड फीलिंग होती है। और पता है ऐसे में ना महिलाओं का एक कहते हैं अंदर से जोश जागृत होता है कि वो बच्चे की और अच्छे से केयर करें।
1: जो गुड फीलिंग आपने कही ना, ये गुड फीलिंग हमारी गवर्नमेंट भी लेकर आई है। एक बहुत सुंदर योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान इसका नाम है। और इसमें क्या किया जा रहा है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं ना, इनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए सेवाएं प्रदान की जा रही हैं भारत सरकार की ओर से। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है, मुझे ऐसा लगता है मालिनी जी। और ये, हालांकि मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं इस योजना को लेकर, इसमें कोई भी आर्थिक मदद नहीं मिलती है। आर्थिक मदद के लिए एक अलग योजना है।
0: हाँ हाँ।
1: और इसमें आपको निशुल्क पूरी जो मेडिकल जांच है वो की जाएगी सरकारी अस्पताल में या सरकार द्वारा जो चिन्हित अस्पताल है, और महीने की हर 9 तारीख को ये जांच निशुल्क होगी।
0: अच्छा, इसमें होता क्या है, कौन कौन सी जांचें होती है, मैं थोड़ा सा बता दूं कि गर्भवती जो हमारी महिलाएं होती है ना, थोड़ा सा उनकी केयर की जाती है तो उनका फ्री हेल्थ चेकअप किया जाता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर का, शुगर टेस्ट और भी बहुत सारी जांचें होती हैं, और डॉक्टर की सलाह बिल्कुल आपको मुफ्त मिलती है इसमें। और हमारी जो आशा बहनें हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, और हेल्थ कैंप्स के जरिए लोगों को जानकारी पहुंचाई जाती है, लोगों को जागरूक किया जाता है, मतलब उनके कि घर वाले लोग भी जब जाते हैं ना तो उनको भी जानकारी दी जाती है। और हमारी जो बहनें हैं वो अगर जब पॉसिबल हो पाता है तो घर घर जाकर भी लोगों को बताती हैं कि आप जो हैं यहाँ पर जा करके राय ले सकते हैं या दिखा सकते हैं।
1: इसके अलावा मालिनी जी, एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि जिन महिलाओं का स्वास्थ्य थोड़ा ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, या हम यूँ कहें कि जिनका हेल्थ हाई रिस्क पर है, ऐसी गर्भवती महिलाओं की जो है ना विशेष देखभाल भी की जाती है, उनके लिए विशेष तौर पर जाँच की जाती है और उनका बहुत ख्याल रखा जाता है, विशेष ध्यान दिया जाता है।

0: तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, अगर किसी भी, क्योंकि महिलाएं ज्यादातर ऐसे टाइम पर उनका बीपी हाई हो जाता है, एनीमिक हो जाती है,
1: मूड स्विंग्स होते हैं,
0: मूड स्विंग्स तो सभी को होते हैं, जनरल सिम्टम है, लेकिन हाई बीपी, हाई ब्लड शुगर और इसके अलावा एनीमिक होना एक बहुत बड़ी समस्या है, और ऐसे में विशेष देखभाल की जरूरत होती है, तो वो भी उन्हें मुहैया कराई जाती है।
1: अच्छा, उनको खान पान का भी बताया जाता है कि आपको कैसे पौष्टिक आहार से जोड़ना है, क्या क्या लेना है, आपकी थाली में क्या भोजन होना चाहिए जो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बेस्ट होता है।
0: बिल्कुल, पूरा सलाह मशवरा उनको दिया जाता है इस बारे में। और एक बहुत अच्छी चीज इसमें शुरू की गई है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही सराहनीय है कि जो निजी डॉक्टर्स हैं, जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं और स्वेच्छा से अपनी सेवाएं दे सकते हैं, वो यहाँ पर एक तरह से आकर वॉलंटियर कर सकते हैं।
1: अभी हमारे साथ आज सुझाव के साथ एक डॉक्टर हैं यहाँ पर, तो वो भी कुछ सुझाव हमारे लिसनर्स तक पहुँचाना चाहते हैं इससे जुड़ा हुआ, तो क्यों ना हम अपने लिसनर्स तक पहुँचा दें।
0: बिल्कुल, देखिए हम प्राइवेट डॉक्टर्स की बात कर रहे थे कि वो भी यहाँ पर लीड कर रहे हैं, वॉलंटियर कर रहे हैं इस अभियान को, और हमारे पास एक ऐसे डॉक्टर आ गए हैं जो बहुत सारे सुझाव लेकर आए हैं।
2: नमस्कार, मैं डॉक्टर अध्यात्म त्रिवेदी आप सभी होने वाली माताओं और परिवारों से एक बेहद जरूरी बात साझा करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान सुरक्षित, निःशुल्क और बेहतर स्वास्थ्य जांच उपलब्ध कराना है। हर महीने की 9 तारीख को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा जांच, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन, शुगर टेस्ट और बच्चे की सेहत की निगरानी की जाती है ताकि किसी भी जोखिम को समय रहते पहचाना जा सके। डॉक्टर के नजरिए से ये सबसे जरूरी बात है, लापरवाही बिल्कुल ना करें। गर्भावस्था में समय समय पर जांच कराना, आयरन और कैल्शियम की दवाइयां नियमित लेना, संतुलित भोजन करना और पर्याप्त आराम बेहद आवश्यक है। अगर तेज सूजन, चक्कर, ब्लीडिंग, तेज बुखार या बच्चे की हलचल कम महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। याद रखिए, सुरक्षित माँ ही स्वस्थ बच्चे की पहली नींव होती है, इसलिए जागरूक बनिए, नियमित जांच कराइए और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का पूरा लाभ उठाइए। धन्यवाद।
0: अच्छा, इसके साथ मान लीजिए ये भी बहुत जरूरी है कि प्रेगनेंसी के टाइम में आप अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छी सोच लेकर आए,
1: बुक्स पढ़ें अच्छी। हाँ
0: बिल्कुल, और इसके साथ ही साथ ना मुझे लगता है कि अच्छा वाला म्यूजिक भी सुने,
1: बिल्कुल, जो हमारे मूड को बिल्कुल रिफ्रेश कर दे।
0: आपने जो कहा कि मूड स्विंग्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा आपके मूड स्विंग्स को कंट्रोल करता है।

0: बहुत ही प्यारा गाना था रंजना, और इतना खूबसूरत गाना था, कहीं ना कहीं इस गाने के साथ हम इसके रिदम में मतलब एकदम से खो गए थे।
1: और ये जो रिदम में आप खो गए हैं, मैं श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि आप सुन रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर, प्रोग्राम चल रहा है हम नवा, मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो संगनी रंजना, और मेरे साथ
0: मैं हूँ मालिनी।
1: और हम लोग मतलब इतने खूबसूरत गानों को सुन रहे हैं ना, और जो ऐसी भागम भाग वाली जो ये जिंदगी है, इस जिंदगी में जब हम इन गीतों को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा सुकून और चैन मिल ही जाता है ना मालिनी जी?
0: बिल्कुल सही कहा रंजना, सुकून और चैन जैसे इन दिनों ये प्रकृति भी हमें देती है। जैसे आज सुबह ही मैं जब आ रही थी तो मैं जैसे ही अंदर एंटर करी, सामने जो है पीले पीले फूल लटके हुए थे, बहुत खूबसूरत, और उनकी खुशबू इतनी अच्छी लग रही थी।
1: हमारे ऑफिस के गेट के सामने
0: बिल्कुल अमलतास की बात कर रही हूँ, और पता है रोज की भी खुशबू मेरे पास इतनी अच्छी भीनी भीनी आ रही थी, मतलब लग रहा था कि मैं वहीं घूमती रहूं।
1: अच्छा, अमलतास की खास बात क्या है?
0: हाँ,
1: मतलब ये आयुर्वेदिक मेडिसिन तो है ही, मेडिसिनल प्लांट है, ये पेड़ है जिसमें बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी खूबी जो हमें मोटिवेट करती है वो ये कि भरी दोपहरी में भी आंखों
0: को सुकून देता
1: के
0: है,
1: साथ ना आंखों से आंखें डालकर बात करता है और आपको ताजगी देता रहता है।
0: नहीं, बहुत सुकून देता है, ये कलर भी इतना खूबसूरत है कि अट्रैक्ट करता है। और रंजना, मैं एक बात और भी कहूंगी कि कभी तुमने गौर किया है, जब मन हमारा उलझा होता है तो ये पेड़ों के बीच कुछ देर जब हम बैठते हैं तो हमारा दिल काफी हल्का महसूस करता है, यूं लगता है कि जैसे ये प्रकृति बिना कुछ कहे हमें समझ रही है।
1: हाँ बिल्कुल भाई, मेरा तो अब देखिए हमारा गांव से नाता छूट गया है, छोटे छोटे घर हो गए हैं, तो मेरा भी एक छोटा सा घर औंधा है, लेकिन वहां पर भी ना जब मैं थोड़ा सा बाहर बैठती हूँ, सुबह की ताजी हवा में बैठती हूँ, थोड़ा सा पेड़ों की पौधों की हरियाली देखती हूँ, वहां पर कभी कभी पक्षियों की चहचहाट भी सुनाई देती है, कभी कभी सोंधी मिट्टी की खुशबू भी आ जाती है, तो एक अलग सी जो मानसिक शांति है ना वो मिलती है, और वो समय जो होता है वो हमें पूरे दिन के लिए तैयार कर देता है।
0: बिल्कुल सही कहा रंजना, जब तुम ये बात बता रही थी ना तो मुझे लगता है जो हमारे एसी में सोने वाले हमारे जो भाई बंधु हैं वो क्या चीज मिस करते हैं सुबह नहीं उठ के।
1: मैं भी बहुत मिस है ना? करती हूं, रात को मुझे याद है वो छत पर तारे गिनते हुए सोना,
0: बाकी में वो हवा जो लगती थी ना शरीर में रात की, सुबह इतनी जल्दी आँख खुलती है, लगता है नींद मिनटों में पूरी हो गई, बहुत अच्छा सा फ्रेशनेस, मतलब फ्रेश हो जाते थे हम, फ्रेशनेस वाली फीलिंग आती थी। और अभी जैसे सुबह भी मैं बाहर निकलती हूँ कभी, तो मुझे इतना अच्छा लगता है सारे घर के खिड़की दरवाजे खोलना, वो फ्रेश एयर के अंदर आना, बहुत मतलब अच्छी फीलिंग देता है। मुझे लगता है एसी आर्टिफिशियल तो उसके सामने बेकार है।
1: तो भाई आपका कहने का जो सीधा सा मतलब है वो ये है कि जब हम प्रकृति के साथ जुड़े होते हैं तो हमारा मन शांत होता है, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, और हमारी जिंदगी कहीं ना कहीं खुशहाल हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा हमारे साथ होती है।
0: बिल्कुल सही कहा रंजना, ये प्रकृति जो है ना, ये कहीं ना कहीं हमें हमारी खुद से पहचान भी कराती है। और एक महान वैज्ञानिक है जगदीश चंद्र बोस, ये बरसों पहले इन्होंने साबित किया था कि पौधों में संवेदनाएं होती हैं, वो भी हमारे प्यार को समझते हैं, है ना। और होता क्या है कि एक पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं देता रंजना, वो गर्मी भी कम करता है, पक्षियों को घर देता है, इंसानों को उम्मीद देता है, और एक बात और, एक रिसर्च में भी पाया गया है कि इंसान जितना प्रकृति से दूर हुआ है वो उतना ही लाइफ में बेचैन रहा है और परेशान रहा है, और इसकी वजह चाहे जो भी हो, क्योंकि शरीर के काफ़ी बीमारियों का इलाज जो है इस प्रकृति की गोद में ही होता है, मेरा तो ये मानना है। और अगर हम इसके संपर्क में रहते हैं, इसके साथ चलते हैं और इसको अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हैं और इसके साथ वक्त बिताते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं।
1: देखिए वो कहते हैं ना कि हमारा जो शरीर है वो भी पंच तत्वों से निर्मित हुआ है, पंच तत्व यानी कि प्रकृति के जो फाइव एलिमेंट्स हैं, और जब हमारा शरीर उनसे बना हुआ है तो हम उनके संपर्क में रहेंगे, तो बहुत एक नेचुरल सी ये बात है कि हमारे हेल्थ पर वो सीधा प्रभाव डालेगी और उसे अच्छा रखेगी।

0: तो प्रकृति के साथ जुड़े रहना तो ऑफ कोर्स हमारी खुशहाल जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, और इसीलिए हम यहाँ पर आज बात कर रहे हैं कि प्रकृति से नजदीकी खुशहाल जीवन की ओर एक कदम है।
1: इसीलिए तो जानती हूँ रंजना, तुमने सुना होगा हमारे बुजुर्गों को कहते हुए कि मतलब वो पेड़ को ना, पेड़ पौधों को एक रक्षक समझते हैं। जैसे हमारे उसमें देखो बरगद के पेड़ की पूजा होती है ना, तो कहीं ना कहीं इस पेड़ की पूजा करने से कुछ तो जुड़ाव है।
0: हाँ, बिल्कुल, जब है ना, किसी की पूजा करते हैं तो वो हमारे लिए सम्माननीय है,
1: हाँ,
0: ईश्वर तुल्य है, तो हम अपने आप मतलब हमारे
1: सम्मान करना प्रकृति का
0: तरीके से बनाया है कि जब हम उनकी पूजा करेंगे तो हम उन्हें हटाएंगे नहीं, उन्हें काटेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमारे यहाँ केले की भी पूजा की जाती है, नीम का पेड़, नीम का पेड़ अपने में बहुत आयुर्वेदिक शक्तियां समेटे हुए होता है।
0: हाँ, और यहाँ पर क्योंकि आपने पेड़ों की इतनी सारी बात कर ली है ना, तो मुझे थोड़ा सा बुरा इसलिए लग रहा है कि मैं इन पेड़ों के साथ जी नहीं पा रही, रह नहीं पा रही, क्योंकि हमारे तो घर बहुत छोटे छोटे हो गए हैं, सड़कें भी अब उतनी खुली नहीं है कि उनके किनारे पेड़ हों। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर बागवानी हम नहीं कर पा रहे हैं ना, तो क्या हुआ, थोड़ी सी गमलावानी कर लेते हैं, है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: कुछ पौधे कुछ प्लांट्स हम अपने गमलों में तो रख ही सकते हैं अपने घरों में, और कई छोटे छोटे प्लांट्स तो ऐसे हैं जिन्हें नासा ने भी ये प्रूव किया है कि ये हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करते हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन बढ़ाते हैं और हवा की मात्रा को संतुलित रखते हैं।
1: अच्छा, तुमने अभी जो बात करी वो सही बात है बिल्कुल, जैसे मनी प्लांट है ना, आजकल स्नेक प्लांट है, ये कहते हैं मतलब हमारे घर की जो वायु होती है उसको शुद्ध करता है, तो ये सारे इंडोर प्लांट से बहुत और भी होते हैं, तो ये सब, और अमूमन तुलसी तो लोग घर में रखते ही हैं, ये बहुत बड़ी एक कहते हैं शक्ति का खजाना है हमारी बॉडी में बहुत मतलब एनर्जी देता है, ये बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है, तो एक तुलसी का पौधा, और इसका सम्मान भी हर घर में होता है, तो इसीलिए हमको जुड़ना चाहिए प्रकृति से, जैसा कि मेरा मानना है, और इनके साथ जुड़ करके हम बहुत खुश रहते हैं।
0: लेकिन मालिनी जी, आजकल जो हमारा एक टफ टास्क है वो ये है कि चलिए हम तो हमने जिया है वो बचपन, और आज हम उसकी बात कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, और जब हम उन चीजों को मिस करते हैं तो हम प्रकृति की गोद में आकर के बैठ जाते हैं, उसे निहारते हैं। लेकिन जो आज की जो युवा पीढ़ी है, आज के जो बच्चे हैं जिसको हम जेन जी कहते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति से थोड़ा सा दूर हो रही है।
1: बिल्कुल,
0: तो मुझे लगता है कि क्यों ना उनके लिए भी कुछ ऐसा पहल की जाए कि बच्चों को पिकनिक पर लेकर जाएं और उनको स्क्रीन छोड़कर,
1: हाँ, बिल्कुल,
0: किसी नदी पोखर के किनारे लेकर जाएं, उनको माउंटेन पर चढ़ाएं, कुछ ऐसे खेल खेलें ताकि वो रेत में खेल सकें, रेत पर घर बना सकें,
1: हाँ, मिट्टी से जुड़े,
0: किसी ना किसी,
1: हाँ, हमारी प्रकृति जमीन से जुड़ के रहें, हाँ।
0: और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम भी छोटे छोटे से ऐसे कदम उठाएं जिससे कि हमारा पर्यावरण जो है वो संरक्षित रहे। कुछ हम इको हैबिट्स को भी अपना सकते हैं, जैसे कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में प्लास्टिक को कम कर सके। हमारे घर में एक रूल है मालिनी जी, और वो ये कि हमारे घर में अगर कोई भी प्लास्टिक का सामान आएगा तो घर से बाहर नहीं निकलेगा। उसको हम उसको रीयूज कर लेते हैं, और रीयूज करने के साथ साथ हमारे दिमाग में ये रहता है हमेशा कि हमें अगला प्लास्टिक का सामान लेकर नहीं आना है, क्योंकि घर में पहले से बहुत बढ़ रहा है। तो हमारी ये कोशिश होती है, और अब तक हमने एक नई चीज और शुरू की है कि अगर हम कभी कुछ सामान एडिबल चीज लेने जाते हैं तो हम उन अपने घर से टिफिन लेकर जाते हैं, अपने घर से कुछ डब्बे लेकर जाते हैं,
1: वेरी गुड,
0: थैलों के साथ, ताकि हम उनको उसमें पैक करा सकें। तो मुझे लगता है कि आप सभी, सबके पास मुझे लगता है ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, बस फॉलो नहीं कर पाते।
1: बिल्कुल, अच्छा, मैंने भी पुराने कपड़ों में ऐसे छोटे छोटे से बैग्स बना लिए हैं, मतलब कपड़ों के झोले टाइप के छोटे छोटे से होते हैं, एक झोले में रख के सबको लेके चलते हैं, जैसे कुछ चीजें होती है ना हमें अलग अलग लेनी होती हैं, तो उन सारे झोलों में हमने रख ली, और कई होते हैं जैसे पाँच छः हमने यूज किए वो फिर धुल जाते हैं, फिर वो दूसरे वाले पाँच छः हम निकाल लेते, तो इससे कहीं ना कहीं हम उन प्लास्टिक से दूरी बना रहे हैं, तो अच्छी बात है, और आने वाली जनरेशन को भी भाई हम लोग ये सिखाते हैं, अब वो जनरेशन कितना सीख रही है ये तो उस पे डिपेंड करता है, लेकिन कोशिश तो पूरी करते हैं।
0: अच्छा,
1: तो
0: यहाँ पर मालिनी जी मैं एक बात और क्लियर करना चाहूंगी कि हमारे श्रोता मित्र जो हैं वो ये ना समझें कि भाई बागवानी नहीं कर पा रहे हैं, गमलावानी करें, तो रंजना कहीं ना कहीं पौधों को प्रमोट कर रही है लेकिन पेड़ों को प्रमोट नहीं कर रही है। मैं पेड़ों को भी बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि भाई जंगल ना काटे जाएं, पेड़ों को काट कर मनी प्लांट ना उगाया जाए। अगर आप पेड़ लगाने में सक्षम नहीं है अपने घर में, तभी आप घर में मनी प्लांट लगाएं, खूबसूरत भी लगता है और हवा को भी शुद्ध रखता है।
1: हाँ।
0: और आपके दिमाग को शुद्ध रखने के लिए और संतुलित रखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है मालिनी जी?
1: बस सॉन्ग, मैं समझ गई। और जानती हो, एक रिसर्च में ये भी पाया गया है कि हमारी म्यूजिक के आसपास जो पौधे होते हैं वो कंपैरेटिवली दूर कहीं,
0: हाँ, actually,
1: हाँ, ये जल्दी ग्रो करते

0: 102.2 FM रेनबो कानपुर की म्यूजिकल हार्टबीट से कनेक्ट हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है हम नवा।
1: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RBLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन। रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBLI की लाइफ इंश्योरेंस।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: और अब हम कदम बढ़ा रहे हैं अपने प्रोग्राम के अगले चरण की ओर। आप सुन रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर। प्रोग्राम है हम नवा और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो संगिनी रंजना
2: और मैं हूं आरजे मालिनी।
1: और मालिनी जी देखिए हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स आ चुके हैं, स्क्रीन जो है पॉप अप हो रही है, बार बार आप देख लें।
2: हाँ, मैं सोच रही हूँ जल्दी से मेल्स पढ़ ली जाए तो थोड़ी सी स्क्रीन पे जगह हो जाए। एक मेल यहाँ पर मेरे पास आई है, उन्होंने अपनी हॉबी के बारे में लिखा है। लिखते हैं, बेजुबानों की मदद करके खुशी महसूस करता हूँ और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए अपनी भूमिका अदा करता हूँ। कल भंडारा था तो जो दोना पत्थर थे उन्हें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, मैंने जो है उनको उठा के एक जगह डस्टबिन में डाला।
1: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया आपने।
2: ये है मोनू सेठ।
1: मोनू सेठ,
2: हाँ ये मोनू सेठ लिखते हैं,
1: तारीफ़ काबिल बात है। ये एक शमशुल कमर राही हैं और इन्होंने हमें हमारे साथ संपर्क किया है और क्या लिखते हैं ये, आरजेजी आदाब, जल है तो कल है। कितनी खूबसूरत बात लिखी है इन्होंने, हमें पेड़ पौधे लगाना और आपका प्रोग्राम सुनना बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है, और हमें भी आपको ये प्रोग्राम प्रेजेंट करना, आपको सुनवाना, आपके ईमेल्स को शामिल करना बहुत अच्छा लगता है।
2: बहुत अच्छा लिखा है, अच्छा भी लगता है ना जब हमारे लिसनर्स हमसे जुड़ते हैं। एक और मेल आ गई है स्क्रीन पे।
1: इन्होंने और कही है बड़ी अच्छी सी है कि हरे भरे पेड़ जो है वो शायद हमें फल ना दे, मतलब हर पेड़ हमें फल नहीं देता है, ये सही बात है, लेकिन वो हमें छाया जरूर देते हैं।
2: देखो प्रकृति कितनी अच्छी बात चल रही है, अभी हम लोगों ने भी करी तो एक मेल और आई है। ये है नीलू, ये रूपपुर चंदेला से है। कोयल को मैंने गीत गाते सुना है, आजकल के मौसम में आम के बागों में कौवे भी गजल गाने लगे हैं। मालिनी मैम को और रंजना मैम को मेरा नमस्कार। राजधानी लखनऊ से तनु शर्मा अपने मायके आई हैं और मैं यहीं से ये प्रोग्राम सुन रही हूँ। और गन्ने के खेत में घूमने गई थी तो बहुत सारी सब्जियां मैंने लगी देखी, मुझे गन्ने बहुत अच्छे लगते हैं। चलो भाई, बहुत अच्छा लगा और इन्हें प्रकृति से जुड़ना बहुत अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवाएं इन्हें बहुत अच्छी लगती हैं। तो इन्होंने इतनी बात लिखी है, मतलब इतना पॉजिटिव बातें करी हैं तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं नीलू जी काफी प्रकृति से जुड़ी हुई हैं।
1: प्रकृति से जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ इनकी बड़ी खूबसूरत हॉबीज हैं, प्रकृति के साथ मिलकर रहना और काम करना, इन्होंने बताया कि इनका शौक है। और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि जो हमारी हॉबीज होती है ना, उसका मतलब ही यही है कि एक ऐसा काम जिसे करने से आपको खुशी मिले, जिसे करने से आपको संतोष मिले, और ये एक तरह से रचनात्मक काम है जिसे अकेले किया जाता है। एक मिथ है कि भाई हम कई बार लोग कह देते हैं ना क्रिकेट हमारी हॉबी है, क्रिकेट हमारी हॉबी नहीं हो सकती क्योंकि इसके लिए हमें टीम की जरूरत पड़ती है। हॉबी हमेशा वही होता है जिसके लिए आप अकेले कुछ भी करने जा रहे हैं तो आप उसके लिए जिम्मेदार हैं। आप डांस अकेले कर सकते हैं, आप गाना अकेले गा सकते हैं, आप म्यूजिक अकेले सुन सकते हैं, तो ये आपकी हॉबीज हैं, आप पेंटिंग अकेले।
2: मैं समझ रही हूँ तुमने हॉबीज की बात शुरू कर दी है और थोड़ी सी हॉबीज की भी बात हमें कर लेनी चाहिए। लेकिन एक हमारी सोनू परवाना की भी मेल आ गई है, प्रकृति के बारे में इन्होंने लिखा है। वनोन्मूलन मतलब जो वन को काटा जाता है, ठीक है, इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है। यदि पेड़ों की कटाई की जा रही है तो वर्षा और मिट्टी की उर्वरा जो है कम हो जाती है, उर्वरता कम हो जाती है। इसके अलावा बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है तो उसकी कमी होती है, और जंगल जो है अगर बढ़ता है

0: तो जंगल जो है ठंडी हवाओं से होता है और जहाँ पे काफ़ी हरे भरे पेड़ होते हैं वहाँ पर पशु पक्षी को भी जो है शेल्टर मिलता है। बहुत अच्छी बात लिखी है, थैंक यू सो मच सोनू परवाना जी, आपने मेल करी है हमें खालिसपुर उच्च गांव अमेठी से।
1: बिल्कुल भाई, बहुत खूबसूरत बात कही है आपने और हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि बागवानी एक ऐसा शौक है जो हमें प्रकृति के साथ कनेक्ट तो करता ही करता है, हमारे पर्यावरण की रक्षा भी करता है। तो ये अगर आपकी हॉबी है ना तो ये बेहद खूबसूरत और यूजफुल हॉबी है आपकी।
0: अच्छा, एक और मेल आई है, ये आंचल सेठ, ये लिखती हैं ओजोन की परत को बचाने के लिए हमें पेड़ों को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो ये रायबरेली से है। तो अब मेलों का सिलसिला ख़त्म करते हैं, हॉबीज़ पे आते हैं। रंजना, थोड़ी सी हॉबीज़ की भी चर्चा कर लेनी चाहिए। तो हॉबीज़ की अभी तुम जो बात कह रही थी ना, अकेले ही होती है, तो मुझे लगता है हॉबीज़ से कहीं जब हम जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम खुद को पहचानते हैं।
1: बिल्कुल, आपके अंदर क्या हुनर है वो निखर कर आता है जब आप अपने हॉबी पर काम करना चाहते हैं, करना शुरू करते हैं और काम करना चाहते हैं। इनफैक्ट असल में होता क्या है ना कि बहुत सारी इच्छाएं होती हैं हमारे अंदर दबकर रह जाती हैं, हम समझ ही नहीं पाते क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे आय का स्रोत तो होती नहीं है, तो हम उनको एक्साइट कर देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि उस काम को करने से हमें खुशी कितनी मिलती है।
0: यानी कहने का मतलब है कि हॉबी सिर्फ टाइम पास नहीं होती, ये हमारे दिमाग को रिचार्ज करने का तरीका भी है। आजकल लोगों में काफ़ी देखो रंजना देखने को मिलता है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, ओवर थिंकिंग है, इतनी ज़्यादा इस समय ये बढ़ चुकी है। इसका आप जानते हो एक बेसिक कारण है बहुत ज़्यादा टाइम स्क्रीन से जुड़े रहना। तो जो हमारे यहाँ बच्चे या हमारे जो बहुत बड़े लोग भी हैं काफ़ी स्क्रीन से टच में रहते हैं, ऐसी सिचुएशन उनको देखने को मिलती है। तो हॉबी का मतलब ये नहीं कि आप स्क्रीन से जुड़े रहें, हॉबी का मतलब है कि आप सब कुछ छोड़ करके अपने को उस चीज़ में बिजी कीजिए जिससे आपको बहुत सुकून और शांति मिलती है।
1: बिल्कुल, मतलब ऐसी चीजें जो आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रही हैं
0: वो
1: आप हॉबी ना बनाएं, हमारी तो राय यही पर है। और आमतौर पर ये जो हॉबीज होती है ना, ये हमारे किसी इनकम का स्रोत नहीं होती है, हम इससे अर्निंग नहीं कर पाते हैं। लेकिन देखा क्या गया है, मान लीजिए कि आप जब अपनी हॉबी में एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आप उनके थ्रू भी कहीं ना कहीं
0: डायरेक्ट
1: अर्निंग करने लग जाते हैं। अब देखिए, किसी को खाना बनाने का बहुत शौक था तो वो खाना बनाते बनाते उन्होंने अपनी कुकिंग क्लासेस शुरू कर दी।
0: अब आजकल देखो यूट्यूब पे भी कितने सारे लोग अपना कुकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स डाल करके ही,
1: सिर्फ कुकिंग नहीं, आप बहुत सारी चीजें यूट्यूब पर, सिर्फ उसका नाम नहीं लूंगी मैं, सोशल मीडिया एक माध्यम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने हुनर को दिखा सकते हैं, यहां पर आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है और जिसकी वजह से आपको एक अच्छी खासी अर्निंग भी हो जाती है। इसके अलावा हॉबी क्लासेस, क्लाउड किचन, ये
0: बहुत सारी चीजें
1: है ना, बहुत सारी क्रिएटिव चीजों को बनाकर आप उनको सेल आउट कर सकते हैं। जैसे कि आजकल क्रोशिया का बड़ा चलन हो रहा है, एक बार फिर से बुने हुए स्वेटर हाथ के वापस आ गए हैं, छा गए हैं, हाथ से बनी हुई एम्ब्रॉयडरी आजकल बहुत छाई हुई है। तो ये सारे काम जो है आप एक बहुत अकेले बैठकर कर सकते हैं धीमे धीमे, और
0: अच्छा होता क्या है
1: बाहर बेच सकते हैं।
0: ये सारी चीजें जब हम करते हैं ना रंजना, तो कहीं ना कहीं जब कोई उसको यूज करता है तो हमें खुशी भी मिलती है, उससे हमारे इमोशंस कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं।
1: अरे भाई, तारीफ सुनने के बाद जो हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं ना, उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है।
0: बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छा लगता है। सो गाइज, हम भी चाहेंगे अपने शौक को वक्त दीजिए, क्योंकि खुश दिल ही जिंदगी को खूबसूरत बनाता है, है ना?
1: लोग जो है ना, ये खुश दिल तो आप बना ही रहे हैं, साथ ही साथ लोगों को ऐसा लगता है कि हॉबीज का मतलब टाइम पास।
0: नहीं, टाइम पास नहीं होता।
1: हाँ, एक्चुअली ये टाइम पास नहीं है, होता क्या है कि ये बहुत अलग तरह की है। आप इससे आपकी बौद्धिकता भी बढ़ती है, जैसे कुछ लोगों की हॉबी होती है रीडिंग बुक्स, किताबों को पढ़ना, उनका रिव्यूज देना, लेखन करना, या कुछ खास तरह की चीजों का कलेक्शन, जैसे कुछ लोगों का शौक होता है स्टैम्प कलेक्शन का, कॉइंस कलेक्शन का। तो आप उनके जरिए जब उनको कलेक्ट करते हैं तो उनकी जानकारियां भी इकट्ठे करते हैं और कहीं ना कहीं आप हिस्ट्री में जाते हैं, तो ये आपकी बौद्धिकता को बढ़ाती है। ट्रैवलिंग यहाँ पर मैं जरूर शामिल करना चाहूंगी कि घुमक्कड़ी जो है वो
0: सबसे अच्छी हॉबी है।
1: हाँ, वो आपके मन को तो सुकून पहुंचाती है, साथ ही साथ आपके दिमाग को भी डेवलप करती है। इसके अलावा कुछ हॉबीज ऐसे भी होती हैं, जैसे मान लीजिए आपको योगा बहुत पसंद है, तो योग करने से आपकी जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं वो बढ़ती हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ऐसे ही
0: गार्डनिंग, आपकी थिंकिंग भी पॉजिटिव होती है।
1: राइट राइट, और गार्डनिंग तो हम जैसे
0: बिल्कुल अभी तो हम लोग बात कर ही चुके हैं गार्डनिंग पे,
1: इससे हम अपनी प्रकृति का रख रखाव,
0: और म्यूजिक सुनना भी हॉबी है,
1: और म्यूजिक सुनना भी, ये तो एक बहुत ही अच्छी निराली
0: थेरेपी भी है। हाँ,
1: थेरेपी का भी काम करती है और इसमें आपको कभी किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती है।

0: रंजना भाई, मैं तो बहुत फ्रेश हो गई ये गाना सुन करके। खैर फ्रेश तो हूँ क्योंकि इतना अच्छे प्रोग्राम है, हमारे लिसनर्स भी साथ में जुड़े हुए हैं। तो
1: अच्छा, सिर्फ गीत ही नहीं, कई बार मान लीजिए क्या होता है ना कि कुछ ऐसी न्यूज़ हमें मिल जाती है जिसकी वजह से हम फ्रेश हो जाते हैं, कुछ ऐसे चेहरे, कुछ ऐसे व्यक्तित्व हमारे सामने आ जाते हैं जिनकी वजह से हम फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि उनसे मिलना, उनको जानना हमें एक अलग साहस दे जाता है, हमें एक अलग तजुर्बा दे जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा। अभी तुमने इतनी बात करी तो मुझे याद आ रही है IPS बी सुमति
1: भाई, ये
0: तेजस्विनी में
1: पर आजकल छाई हुई हैं
0: सोशल मीडिया पे, हम महिलाओं के लिए आइडियल बनी हुई हैं। तो
1: मुझे लगता
0: आज
1: है ये सभी के लिए आइडियल बनी हुई हैं, क्योंकि इनके कार्य करने का जो तरीका है उसे सिर्फ महिलाओं को नहीं, हर किसी को फॉलो करना चाहिए। और मुझे लगता है श्रोता हमारे समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं एक IPS अधिकारी की।
0: बी सुमति के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। सुरक्षा करने के लिए ये रात में गुप्त रूप से सूट पहन करके नॉर्मल ड्रेस में बाहर चली गई और ऐसी जगह पे जाके खड़ी हो गई जहां पर कि बहुत ज्यादा मतलब भीड़ रहती है, मतलब वो एक बस स्टॉप था। और जब ये वहां पर पहुंची ना रंजना, तो वहां पर अचानक ही 36 से 40 30 40 लोग आसपास उनके आ करके परेशान करने लगे। हाँ, अकेली महिला को उन्होंने सोचा नॉर्मल लेडी है, जबकि वो अपने साथ सुरक्षा कर्मी भी लेके गई थी, वो दूर खड़े हुए थे। तो देखो अब वो तो खैर IPS ऑफिसर,
1: उनका एक्सपेरिमेंट था।
0: हाँ,
1: वो जानना चाह रही थी कि क्या महिलाएं इस तरीके से किसी रास्ते पर किसी जगह पर सुरक्षित हैं या नहीं है, और उसके बाद अगर वो सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं तो उन्हें आगे क्या रणनीति अपनानी पड़ेगी, उन्हें
0: बिल्कुल
1: कार्यशैली अपनानी पड़ेगी। तो बहुत बेहतर तरीका रहा है ये। मान लीजिए तेलंगाना कैडर के 2026 की बैच,
0: 2026 बैच

0: बिल्कुल,
1: नई अधिकारी निकल कर आई हैं ये, और उड़ीसा में एक जगह है मलकाजगिरी, वहां की पहली महिला पुलिस कमिश्नर के रूप में तैनात हैं।
0: पता है इनके पास जो टीम थी ना, जब वो आई पास में तो फिर इनको थोड़ा सा मतलब पता, उन्होंने ऑर्डर दिए उस टीम को, तो उस टीम ने वहां पर लोगों को एक मतलब दंड देने के लिए या जरा सा उनको पनिश करने के लिए एक वार्निंग दी, फिर उनको छोड़ दिया। लेकिन इससे काम नहीं चला, इन्होंने क्या किया, आगे बढ़ करके वहाँ की सुरक्षा का चाक चौबंद इंतजाम किया। उन्होंने कैमरे लगवाए और ड्रोन व्यवस्थाएं करवाई जहाँ पे हॉस्टल से आसपास, वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी कैमरे का मतलब इंतज़ाम करवाया। तो एक तरह से वो ज़मीनी स्तर से जुड़ करके चीज़ों को परखती हैं और वहाँ पर निरीक्षण करती हैं, फिर वो वहाँ पर पूरी तैयारी के साथ काम करती हैं।
1: भाई ऐसे बुलंद हौसलों वाली महिलाएं ही हमारे तेजस्विनी सेगमेंट में आती हैं और उन्हें हम सलाम करते हैं।
0: बिल्कुल, दिल से सलाम करते हैं रंजना, और बहुत अच्छा लग रहा है इनकी बात हमने करी। और अब हम जो हैं आगे बात करेंगे, आज एक बहुत ही हमारे देश के पांचवे राष्ट्रपति हैं जो फखरुद्दीन अली
1: जी,
0: अहमद जी,
1: आज उन्हें भी
0: जन्म जयंती है,
1: सलाम। हालांकि हम उन्हें हर वक्त अगर सलाम करें तो भी कम है, मगर आज एक विशेष दिन है, आज उनकी जयंती पर हम उन्हें याद कर रहे हैं। और स्वतंत्रता आंदोलन में भी वो सक्रिय रूप से भागीदार रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन की वजह से वो जेल भी गए हैं। तो यहाँ पर भी ये चीज नोट करने वाली है कि ऐसे ऐसे लोग हमारे आज़ादी के उस अभियान में साथ रहे हैं, तो आज हम उन्हें बहुत
0: दिल से दिल से सैल्यूट करते हैं। मतलब फखरुद्दीन अली अहमद जी की आज जन्म जयंती है। उस दौर में आज़ादी की लड़ाई का जब बिगुल बजा था तो पूरे देश में जोश भर रहा था, और महात्मा गांधी जैसे नेताओं के विचारों ने उन्हें प्रेरित किया और वो इस आंदोलन में जम के भागीदारी निभाए। और एक
1: इसके अलावा ना मालिन जी, एक और भी है, मतलब अगर हम बचपन की यादों में वापस जाएं तो एक ऐसे इंसान का साथ हमारे साथ रहा है
0: जो रंजना, वेट मैं सुनाना चाहती हूँ।
1: <आप सुना रहे। laughs>

0: आई एम श्योर ये वाला जो म्यूजिक है, ये वाली जो धुन है ना, इसे सुनकर हमारे सारे श्रोता जो है वो अपने बचपन में पहुंच गए होंगे.
1: एग्जैक्टली क्योंकि ये मतलब मालगुड़ी डेज
0: बिल्कुल
1: याद आ गया. टीवी पे हम लोग जम के बैठ जाते थे इसको देखने के लिए और छोड़ते ही नहीं थे. और ये हैं आर के नारायण, आज इनकी पुण्यतिथि है.
0: मालगुडी डेज के राइटर हैं आर के नारायण साहब. ये इंग्लिश साहित्य के एक बहुत बड़े राइटर रहे हैं. इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जैसे कि द इंग्लिश टीचर, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द डार्क रूम और द गाइड.
1: और अच्छा द गाइड की जो तुमने अभी बात करी ना, ये इनकी इतनी फेमस उपन्यास है कि इस पर आगे चल करके जो है एक फिल्म बनी गाइड, बहुत फेमस फिल्म रही. और ये फिल्म बनाई विजय आनंद ने.
0: और इनके बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जिसके ऊपर स्क्रीन प्ले लिखा गया है, आगे चलकर वो हमें स्क्रीन पर दिखाई दी है. और क्योंकि हम इन्हें इतना महान लेखक मानते हैं तो इनके सम्मान में भी कभी कोई कमी नहीं रही है. आप पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित हुए और फिल्म फेयर अवार्ड्स भी आपको मिले.
1: आज इनकी जो गाइड फिल्म है इसका एक गाना सुनवा दिया जाए लिसनर्स को. और
0: यहाँ पर बहुत जरूरी
1: इस गाने के साथ ही हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं.
0: जी, हमारा नमन पहुंचे उन तक.

0: रंजना, अच्छा रंजना तुम बोल रही हो तो तू बोलो।
1: नहीं,
0: अच्छा मैं बोल रही थी कि इस गाने की एक लाइन से ना मुझे एक बात याद आ गई कि देखो हमारे जीने के लिए हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यंजनों की जरूरत होती है खाने
1: के लिए। जीने का इरादा है, पर जीने के इरादे के साथ साथ
0: तभी हम दोनों साथ बोले,
1: जरूरत होती है।
0: क्या बात, तभी हम लोग की देखो विचार सेम थे तो जबान भी साथ ही खुली,
1: इसलिए हम साथ में यहाँ बैठे हैं।
0: बिल्कुल।
1: रेसिपी मैं बताऊँ या आप बताएं?
0: कैरी ऑन यू।
1: मैं ना केरल से एक रेसिपी लेकर आई हूँ।
0: क्या बात है।
1: वैसे तो मैं इटावा की हूँ और हमारे यहाँ बनते हैं मठा के आलू, है ना। आजकल कानपुर में भी बनते हैं और मुझे लगता है ये ग्लोबल रेसिपी हो गई है मठे के आलू। ये जो रेसिपी है ये दही में बनाई गई सब्जियां हैं। फर्क ये है कि ये इसमें सिर्फ आलू नहीं है, ये मिक्स वेजिटेबल्स हैं और केरल में ये बहुत बनाया जाता है क्योंकि बहुत ही पौष्टिक होता है और बहुत इजी टू डाइजेस्ट होता है, तो आप गर्मियों में इसको बहुत स्वाद के साथ खा सकते हैं।
0: मुझे तो अभी स्वाद आ रहा है।
1: सामान हमें क्या क्या चाहिए? कच्चा केला, कद्दू, सहजन, गाजर, बैंगन, लौकी, ये मेन सब्जियां हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी से बहुत सारी सब्जियां जो भी अवेलेबल है उनको ले सकते हैं और इनको लंबे में काटना है। इसकी खास बात यह है। उसके बाद एक पेस्ट आपको तैयार करना है, वो उसमें उसके लिए आपको एक कप कसा हुआ नारियल लेना है, एक चम्मच जीरा लेना है, दो तीन हरी मिर्च लेनी है और इनको पीस लेना है, एक बढ़िया सा पेस्ट तैयार कर लेना है। अब आधा कप खट्टा दही भी लेना है, नारियल का तेल लगभग दो चम्मच, करी पत्ता थोड़े से, थोड़ी सी हल्दी और नमक स्वाद अनुसार, जैसे कि आप जानते ही हैं। करना सिर्फ इतना है कि आपको आँच जलानी है और उस पर भारी तले का एक बर्तन रखना है, सारी सब्जियां उसमें डालनी है। अब उसमें डालना है हल्दी, नमक और थोड़ा सा पानी, क्योंकि सब्जियां अपने आप नमक पानी छोड़ देती हैं जब नमक मिलता है तो। अब उसको हल्का नरम हो जाने देंगे, नरम थोड़ा सा ही होने देंगे, मतलब पूरी तरह से गलाना नहीं है सब्जियों को। जब वो हल्की नरम हो जाए तो अब उसमें डालना है पहले से तैयार किया हुआ हमारा पेस्ट और उस थोड़ी देर उसको चला करके मध्यम आँच पर अब उसमें डाल देना है दही और दही को चला रहना है ताकि वो फटे नहीं। अब धीमी आंच पर उसको कुछ देर पकाना है ताकि उसमें उबलने के बबल्स आने लग जाएं। अब इसको ऊपर से नारियल के तेल और करी पत्ते के तड़का लगाएं उसमें और उसकी जो है खुशबू लें और उसके बाद गर्मा गर्म चावलों के साथ सर्व करें
0: और एक साउथ का गाना एंजॉय करें।
1: हाँ, मैं कहने वाली थी कुछ ऐसा लगा लीजिए भाई जो हमें समझ में नहीं आया।

0: और इसी के साथ हम नवा प्रोग्राम से, मैं मालिनी और
1: मैं हूँ आपकी रेडियो संगनी रंजना,
0: अब लेते हैं इजाजत, टेक केयर एंड बाय बाय।

हैं, अब सुनिए मुख्य समाचार। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सोने और चांदी पर 5% और प्लेटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातुओं के प्रत्येक उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मल्लाडी कृष्णराव और भाजपा के ए नमिसयम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें आज सुबह लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मृत्यु का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा बिष्ट यादव वर्तमान में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतीक यादव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। बिजनौर के जिलाधिकारी जसजीत कौर ने मध्य गंगा बैराज के बाएं अफ्लक्स बंद पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता की जांच स्वयं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाए। गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बाढ़ नियंत्रण और जन सुरक्षा शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रनों से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच रायपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित होगा।

उफ ये गर्मी, हाय ये गर्मी, क्या करें क्या ना करें, कहाँ जाएं, क्या खाएं क्या पिएं, हर एक सवाल का एक ही जवाब। हाँ, एफएम रेनबो सुनिए, सब कुछ बताया जाता है बढ़िया तरीके से, आपको इंटरटेन भी किया जाता है ना। गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो, कैसा भी आपका माइंड हो, बस आप एफएम रेनबो सुनते रहिए। और इस वक्त 12:04 और 27 सेकंड हो चले हैं। शालिनी आ चुकी है लेकर प्रोग्राम शत्रुपा। तो आज क्या होगा शत्रुपा में खास, पता है ना आपको, आज है बुधवार। तो आज हम बातें तो चटपटी करते ही करते हैं, साथ ही आपके खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं। लेकिन आज कौन सा ध्यान रखने वाले हैं आपका? कोई हम चटपटी वाली डिशेस के बारे में आज नहीं बात करेंगे, आज हम बात करेंगे आपसे आपके सेहत को ध्यान में रखते हुए। जी हाँ, अब आप कहेंगे आज कौन सी सेहत की बात आ गई।

आज बात सेहत की नहीं है, आज बात टेस्ट की है, गर्मी की है। तो बस आज हम खाने की नहीं सिर्फ पीने की बात करेंगे, यानी कि घर का हेल्दी ड्रिंक्स कैसे बनाएं और क्यों पिएं, ये भी आपको हम बताने वाले हैं। तो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कहते ना कि कागज कलम दावत ला, और कागज पे ही लिखना, दिल पर कुछ नहीं लिखना है आपको। और अगर आप इतने अच्छे हैं, आपको सुनकर ही हमारी बातें बहुत अच्छी लगेंगी, याद रह जाएंगी तो और भी अच्छा है। लेकिन आज जो बात हम करने वाले हैं वो हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी हैं जिसका जवाब आपको वो देंगे। सीनियर डाइटिशियन है विद्या प्रिया जी, हैं किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से। तो सबसे पहले सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत, उसके बाद हम शुरू करेंगे घर का हेल्दी ड्रिंक कैसे बनाएं और क्यों पिएं।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: अब जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अतिरिक्त शुगर नहीं यूज होता है तो, और इसके अलावा ये हमारे कूलिंग इफेक्ट देता है, डाइजेशन को बेहतर करता है तो, और शुगर को भी कंट्रोल करता है और इम्यूनिटी भी बढ़ाता है हमारी, और इसके अलावा इसमें विटामिन और मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं।
2: अजय, घर में ही मौजूद जो चीजें होती हैं उनसे क्या हम हेल्दी ड्रिंक्स बना सकते हैं? मतलब ड्रिंक तो बना ही सकते हैं, पेय पदार्थ कोई भी, लेकिन वो हेल्दी हो, इसके बारे में बताइए।
1: जी हाँ, बिल्कुल बनाई जा सकती है। आपके हर किचन में जो है आपको आम मिल जाएगा, इस समय आम का सीजन है, कच्चा आम मिल जाएगा, आपको पुदीना मिल जाएगा, नींबू मिल जाएगा, दही मिल जाएगा जिसका आप छाछ बना सकते हैं, सत्तू मिल सकता है जो कि बहुत ही अच्छा पेय पदार्थ है। तो इस तरह की कई सारी चीजें हैं जो आपको आपके आपके ही किचन में प्राप्त हो जाएंगी, जिसे आप बहुत हेल्दी ड्रिंक बना सकते हैं।
2: मैम, जैसे आपने बताया कि नींबू तो घर में मिल ही जाएगा और नींबू पानी हम सभी पीते भी हैं बहुत अच्छे से, लेकिन जो पुदीना आपने बताया ना, तो क्या नींबू पानी में पुदीना मिलाने से कुछ ज्यादा फायदा होता है या कुछ एक्स्ट्रा फायदा मिलता है हम सबको?
1: जी, नींबू पानी, जैसे आप नींबू पानी सिकंजी बना सकते हैं जिसमें जो है नींबू आपका, उसमें आप पुदीना ऐड कर सकते हैं। नींबू क्या है, आपका विटामिन सी रिच होता है जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। और पुदीने की बात करें अगर, तो पुदीना जो है वो आयरन से भरपूर होता है, तो दूसरा ये गैस, अपच, एसिडिटी, इन सारी चीजों से भी हमें राहत दिलाता है, तो ये एक बहुत अच्छा हेल्थ ड्रिंक है।
2: अच्छा मैम, इसे बनाने का जो सही तरीका है वो बता दीजिए, और हम कैसे बनाएं ताकि इसके अंदर के जो पोषक तत्व है ना वो बरकरार रहे।
1: जी हाँ, ये बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। इसको बनाने का सही तरीका ये है कि कभी भी ना तो गर्म हो ना तो बहुत ज्यादा ठंडा हो, नॉर्मल टेम्परेचर लेना चाहिए जिससे उसमें मौजूद जो विटामिन सी है वो नष्ट ना हो। तो नॉर्मल टेम्परेचर लें, उसमें आप जो है आप शुगर या शुगर की जगह जो है आप गुड़ या शहद ऐड करें तो और भी अच्छा रहेगा, और पुदीनों को निचोड़ के उसको उसमें ऐड करके उसको आप बाद में कूल कर सकते हैं।
2: मैम, जैसे कि बताया ना कि शुगर की जगह यानी कि चीनी की जगह गुड़ या शहद का इस्तेमाल करें, तो इन दोनों में सबसे बेहतर क्या चीज है?
1: बिल्कुल बेहतर माना जाता है क्योंकि ज्यादातर लोग शुगर ही यूज करते हैं। जो सिंपल शुगर होता है वो एम्प्टी कैलोरी होता है, उसमें कोई मिनरल्स नहीं होते हैं, तो इसकी जगह अगर आप शहद और गुड़ का इस्तेमाल करेंगे तो वो मिनरल से भरपूर होता है, तो आप उसको इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर होगा बजाय कि शुगर, सिंपल शुगर के।
2: 12:15 और 15 सेकंड का वक्त हो चला है दोस्तों, बात हो रही है सीनियर डाइटिशियन विद्या प्रिया जी से हो रही है, और इनसे हम जान रहे हैं कि कैसे हम घर में हेल्दी ड्रिंक बनाएं और क्यों बनाएं और क्यों पिए ये सारी चीजें, और अभी आपने नींबू पानी के साथ में पुदीने की बात जान ली है, और अब आ रही है छोटे से गाने की, और उसके बाद हम करेंगे ढेर सारी बातें।

0: बहुत ही प्यारा सा गीत था, ये नायक फिल्म का था और जो ये पिक्चराइज किया गया है ना, खेत के अंदर प्याज और रोटी का स्वाद, क्या बात है, मुंह में पानी आ जाता है ना। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम बहुत अच्छा है, चारों तरफ पेड़ पौधे, लेकिन वापस आते हैं हम गर्मी पे। और जब गर्मी की बात करेंगे तो पानी की, पीने की, ठंडी चीजों की बात खुद ब खुद हो जाएगी। तो अभी हमने जाना सीनियर डाइटिशियन विद्या प्रिया जी से कि नींबू पानी के साथ पुदीना ऐड कर सकते हैं तो क्या फायदे होंगे, और अब हम जानेंगे छाछ के बारे में। ये वाला छाछ नहीं है कि बिल्ली जब दूध से जल जाती है तो छाछ भी फूक फूक कर पीती है, बहुत मशहूर मुहावरा है ना लेकिन ये वो वाला छाछ है जिसे मॉर्निंग में हम पीते हैं तो बहुत अच्छा फील करते हैं। कई सारे फायदे हैं इसके, और क्या फायदा है इसमें और क्या हम ऐड ऑन कर लें जो इसका फायदा और बढ़ जाएगा, ये हम जानेंगे सीनियर डाइटिशियन विद्या प्रिया जी से। तो मैम, छाछ में भुना जीरा डालने से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, पाचन में कैसे हेल्प मिलती है, इसके बारे में बताइए जरा।
1: जी शालिनी जी, हम जैसे कि आपने कहा कि छाछ में, छाछ अपने आप में बहुत अच्छा होता है, इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं जो डाइजेशन में बेहतर होते हैं, डाइजेशन को आपके बेहतर इम्प्रूव करते हैं। इसमें अगर आप भुना जीरा मिला लेते हैं तो भुना जीरा जो है ये वो क्या करता है, गैस अपच ये सारी चीजों को कम करता है, एंजाइम को एक्टिव करता है, तो इससे आपका पाचन बेहतर होता है, तो इसलिए छाछ में भुना जीरा मिलाना बहुत अच्छा ऑप्शन है।
0: अच्छा मैम, ये छाछ किस समय पीना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है ना, सबका समय अलग होता है, कुछ चीजें मॉर्निंग में लेनी चाहिए, कुछ आफ्टरनून में, कुछ इवनिंग में, तो आप इस छाछ हम किस समय पिएं?
1: वैसे तो आप दिन में कभी भी पी सकते हैं, लेकिन जो है खाना खाने के बाद पीने से डाइजेशन, जो भी आपने खाना खाया वो भी अच्छे से डाइजेस्ट होगा, और जो है आपको हाइड्रेशन भी, मतलब डिहाइड्रेट नहीं होंगे, हाइड्रेशन बेहतर रहेगा।
0: क्या जो छाछ है ना, अगर हम रोज पियेंगे तो हमारा शरीर ठंडा रहेगा, मतलब गर्मी कम लगेगी, ऐसा कुछ है?
1: जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। रोज जो है आप 1 से 2 ग्लास छाछ पी सकते हैं जिससे आपका शरीर ठंडा रहेगा, ये कूलिंग इफेक्ट देता है, हमारे जो स्वेटिंग वगैरह क्योंकि बहुत ज्यादा होती है गर्मियों के सीजन में, तो उसके जो है उसके साइड इफेक्ट से हमें बचाता है, और जैसा कि बताया मैंने पाचन को तो बेहतर करता ही है, तो 1 से 2 गिलास छाछ आप रोज ले सकते हैं।
0: तो दोस्तों, नींबू पानी की बात हो गई, छाछ की बात हो गई, और आप आते हैं एक ऐसी बात पर जिसे, जिसकी बात किए बिना हम गर्मियों में रह ही नहीं सकते। हाँ लगाइए, तुक्का लगाइए जरा, क्या हो सकता है? बिल्कुल सही, आम का पन्ना। जी हाँ, और ये बहुत आसान रेसिपी है, घर में बनाते हैं सब लोग, इससे हमें लू से बचाओ कैसे ये हमारी करता है, इसे स्टोर करके कैसे रख सकते हैं, ये सारी चीजें भी अभी हम जानने वाले हैं, किससे, अपनी सीनियर डाइटिशियन विद्या प्रिया मैम से। और मैम, आम पना बनाने की आसान घरेलू रेसिपी क्या है, थोड़ा सा बताइए।
1: ये बहुत ही आसान है,

0: जिसको हर महिला या हर बुजुर्ग या बच्चे भी बना सकते हैं अगर चाहें तो। और हाँ। जैसे कि कच्चे आम को उबाल लें, उसका गूदा निकाल लें और उसमें भुना जीरा मिलाएं और काला नमक मिलाएं और पुदीना और थोड़ा थोड़ा करके, अगर डायबिटिक नहीं है तो गुड़ भी मिला सकते हैं, और इसको पानी डाल के फिर इसको आप रख सकते हैं और पी सकते हैं एक दो दिन तक फ्रिज में रख के। जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये बहुत ही आसान रेसिपी होती है, जैसे कच्चे आम को उबाल लें, उसका गूदा निकाल लें और उसमें भुना जीरा मिलाएं जो कि गैस एसिडिटी से आपको बचाएगा, और काला नमक डाइजेशन को बेहतर करेगा, पुदीना जो कि आपको कब्ज वगैरह से भी राहत दिलाएगा, आयरन से भरपूर होता है, और थोड़ा एनर्जी के लिए आप उसमें गुड़ मिला सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक अच्छा हेल्दी ड्रिंक बन के तैयार हो जाएगा।
1: अच्छा मैम, ये लू से कैसे बचाता है हमें, उससे बचाने में हमारी हेल्प कैसे करता है?
0: आम पना जैसा कि बहुत ही अच्छा ड्रिंक है, इसमें ये क्या करता है, आपका इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है, शरीर को कूल करता है, और जो भी पसीना हो रहा है उससे हमारे जो स्वेटिंग हो रही है तो हमारे शरीर का पानी बाहर निकल रहा है, तो इससे हमारे कूलिंग इफेक्ट को बनाए रखता है, हाइड्रेट रखता है। इस तरह से आपको जो है वो लू से बचाता है आपको।
1: मैम अभी आपने बताया इसे हम स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में रख के, तो इसे स्टोर कैसे रखा जा सकता है, कितने दिनों तक, जरा एक बार फिर से बता दीजिए।
0: जी, इसको फ्रिज में 2 से 3 दिन तक आराम से आप स्टोर करके रख सकते हैं और थोड़ा थोड़ा करके पी सकते हैं।
1: दोस्तों 12:26 हो चले हैं और बहुत ज्यादा बातें हो चुकी हैं, और नींबू पानी से हमें ये प्यारा सा ट्रैक याद आ गया है, तो बस सुनिए और एंजॉय कीजिए।

0: 12:33 का वक्त शत्रुपा में आज बात हो रही है घर का हेल्दी ड्रिंक कैसे बनाएं और क्यों पिएं। और एक्सपर्ट है हमारे साथ सीनियर डाइटिशियन विद्या प्रिया जी, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से। हम बात कर चुके हैं नींबू पानी प्लस पुदीना की, छाछ प्लस भुना जीरा की और आम पन्ना की, और दो चीजें अभी भी रह गई हैं बात करने के लिए। बताइए तो क्या जो बहुत खास होती हैं, बाहर से भी आपको मिल जाती हैं बनी बनाई, लेकिन अगर आप घर पे बनाते हैं बिना कोई ज्यादा मेहनत किए तो जो पीने का फायदा है ना वो दोगुना हो जाता है। क्या है वो चीज? बेल। जी हाँ, बेल का शरबत कितना अच्छा होता है ना। जब हम बात करते तो बस मन करता है आहा मिल जाए और दो तीन ग्लास पी लिया जाए, बाद में देखा जाएगा। तो बेल का शरबत जो है उसके बनाने की जो सही विधि वो क्या है वो हमें बताएंगी विद्या प्रिया मैम।
1: जी, बेल का शरबत जो है बहुत ही फायदेमंद है। ये हमारे डायरिया में भी आपको हेल्प करता है, कब्ज को दूर करता है, एसिडिटी के लिए बहुत लाभकारी है और आपके आंतों को शांत करता है। तो इसके बनाने की विधि बहुत ही आसान है। बेल को तोड़ लें, उसका गूदा निकालें, उसको पानी में मिक्स कर लें, उसके बीज वगैरह को छान लें अच्छे से, फिर उसमें आप अपनी स्वाद अनुसार गुड़ और काला नमक मिलाकर ले सकते हैं।
0: तो दोस्तों अब तो इतना करना ही पड़ेगा कि भाई गूदा निकालना है, उसे पानी में मिक्स करना है, छानना है, बीज उसके निकाल लेने हैं। कितना ही देर लगेगी? इतनी ही देर लगेगी जितनी हम बाहर के पेय पदार्थ लेने में लगाते हैं ना भाई, उसको ऑर्डर करते हैं तब वो बनाते हैं तब हमें देते हैं, उतना ही टाइम घर पे लगेगा। तो थोड़ा सा अपने लिए समय जरूर निकालें। मैम, जैसा कि आपने कहा कि पेट की समस्याओं से ये हम काफी असरदार होते, ये कितना असरदार होता है पेट की समस्याओं से संबंधित?
1: जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये कब्ज में, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत भरपूर मात्रा में होता है, तो फाइबर डाइजेशन को भी बेहतर करता है और जो है आपके कॉन्स्टिपेशन को भी बेहतर करता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जिनको भी डायरिया या जो इनको कब्ज है उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये। तो बेल के शरबत को अपने डाइट में शामिल करें, एनर्जेटिक महसूस करेंगे और विटामिन सी से भरपूर होता है तो इम्यूनिटी भी बढ़ाता है आपकी।
0: और दोस्तों ना इतनी गर्मी में हमें क्या चाहिए, हमारी इम्यूनिटी कमजोर ना पड़े।

0: तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जिनको भी डायरिया या जो इनको कब्ज है उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये। तो बेल के शरबत को अपने डाइट में शामिल करें, एनर्जेटिक महसूस करेंगे और विटामिन सी से भरपूर होता है तो इम्यूनिटी भी बढ़ाता है आपकी।
1: और दोस्तों ना इतनी गर्मी में हमें क्या चाहिए, हमारी इम्यूनिटी कमजोर ना पड़े, नहीं तो कई सारी बीमारियां हमारे चारों तरफ घूमती रहती हैं हम पर अटैक करने के लिए। लेकिन ना हमें क्या करना है, उनको दिखाना है कि हम कितने मजबूत हैं, कितने हेल्दी हैं।

0: और हमारा इश्क आपसे है। 12:41:45 का वक्त हो चला है। समय की सुइयों पर ध्यान दे दीजिए, कहीं कोई काम आपका रुका है या आपको करना था। तो बार बार जो समय हम बताते हैं उसी का रिमाइंडर देते हैं कि एक बार ध्यान दे लीजिए। दोस्तों, नींबू पानी की बात, छाछ की, आम पना की, बेल के शरबत की बात हो गई, और जो सबसे अहम बात है वो अभी बाकी है, सत्तू का शरबत। जी हाँ, जो कि सत्तू भी आप घर पे आसानी से बना सकते हैं, और उसके बाद उसको आप किसी भी तरीके से, बहुत जल्दी बनने वाली चीजें हैं। सत्तू ऐसे ही घोल कर खा सकते हैं, नमक के साथ खा सकते हैं, शक्कर के साथ खा सकते हैं, और चटनी के साथ खा सकते हैं, शरबत भी बना सकते हैं, उसके लड्डू भी बना सकते हैं, ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, और सब कुछ बिना किसी देरी के, है ना। इतनी सारी चीजें पता थी हमें, आपको भी पता है, लेकिन मैम क्या बताने वाली है वो जानना है कि जो सत्तू का ड्रिंक है वो कैसे बनाए, मीठा और नमकीन दोनों का हो सकता है। आप जैसे बनाते हो, मैम के बताने का तरीका अलग हो। जो कि कौन है मैम हमारे साथ? सीनियर डाइटिशियन विद्या प्रिया, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से।
1: जी, सत्तू तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये बिहार, पटना, पूरब साइड में बहुत ही ज्यादा इसका गर्मियों में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये हमें ऊर्जा देता है। क्योंकि चने का सत्तू है तो वो हाई प्रोटीन होता है, फाइबर इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो सत्तू को आप पानी के साथ मिक्स करें, उसको अगर मीठा बनाना है तो आप उसमें गुड़ मिक्स कर सकते हैं या शहद मिक्स कर सकते हैं। थोड़ा सा फ्लेवर के लिए आप चाहें तो इलायची भी डाल सकते हैं, और इससे आपको लंबे समय तक आपको भूख का एहसास नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन का डाइजेशन स्लो होता है, तो आपको एनर्जेटिक महसूस करेंगे दिन भर, आपका इलेक्ट्रोलाइट भी बैलेंस रहेगा।
0: जैसे आपने मैम ऊर्जा की बात की ना, ये तुरंत ऊर्जा देने में कैसे काम करता है, इसके बारे में भी बताएं।
1: तुरंत एनर्जी के लिए मैंने जैसा कि बताया, आपको इसमें गुड़ मिला सकते हैं या शहद, क्योंकि ये इसमें जो है आपको एनर्जी मिलेगी। और सत्तू जो है वो प्रोटीन का सोर्स होता है, और ये स्लो डाइजेशन होता है, तो आपको दिन भर जो है पेट भरा महसूस होगा, और जल्दी भूख नहीं लगेगी, और आपको किसी तरह का लू नहीं लगेगी।
0: मैम, इतने सारे ड्रिंक के बारे में बात हो चुकी है, तो बस एक और चीज हमारे लिसनर्स को बताइए कि जो घरेलू ड्रिंक है उन्हें पीने से शरीर को क्या मुख्य फायदे मिलते हैं?
1: इसके तो बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला यही है कि हमारे शरीर को हाइड्रेट रखता है, कूल रखता है, और डाइजेशन को सुधारता है, और इम्यूनिटी जो कि जो है जैसा कि बताया विटामिन सी से भरपूर होता है, तो इम्यूनिटी भी बढ़ाता है आपकी, और एनर्जी तो आपको मिलती ही है इससे, और हीट स्ट्रोक से भी आपको बचाता है। तो ये कई सारी चीजें हैं जिससे आपको बहुत सारे फायदे हैं इसमें।
0: मैम कहते हैं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो क्या इसके भी, ड्रिंक्स के भी दो पहलू, यानी कि नुकसान क्या हो सकते हैं घर के बने ड्रिंक को पीने से, अगर ज्यादा पिया जाए तो?
1: जी देखिए, जरूरत से ज्यादा तो हर चीज नुकसानदेह होती है। अगर बहुत फायदेमंद चीज है वो भी नुकसान करेगी, अगर आप जरूरत से ज्यादा पानी भी पीते हैं तो वो भी नुकसान करता है। तो एक लिमिट में, एक पोर्शन साइज होता है, उसके अकॉर्डिंग ही लें। जैसे कि अगर बीपी का पेशेंट है तो नमक बहुत ज्यादा ले रहा है तो उसका बीपी बढ़ सकता है। अगर शुगर का पेशेंट है तो बहुत ज्यादा अगर उसने मिठास डाल दी उसमें तो उसका शुगर बढ़ सकता है। तो इन सारी चीजों का थोड़ा सा ध्यान देकर संतुलित मात्रा में इसका इस्तेमाल करें।
0: और भाई, गर्मी बहुत ज्यादा होने लगी है, और अभी तो मई का ही महीना है, अभी बाकी जो जून का महीना है वो तो बाकी ही है, लेकिन

अगर आप अपने खान पीन का ध्यान रखेंगे ना, तो गर्मी आपको कम महसूस होगी, इस बात की है गारंटी। उसके लिए क्या करना है, बस सुनते रहिए FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: 12:52 और 12 सेकंड हो चले हैं और ये वक्त कह रहा है कि शालिनी अब ज्यादा समय इस प्रोग्राम के लिए नहीं बचा है, लेकिन जो भी समय बचा है उसमें हम अपनी सीनियर डाइटिशियन विद्या प्रिया जी से कुछ चीजें और जानना चाहेंगे। मैम, अगर किसी को रोज सिर्फ 2 ड्रिंक चुनने की बात की जाए कि वो 2 ड्रिंक पियेंगे तो वो कौन सी होंगी, इसमें थोड़ी सी हेल्प करिए प्लीज।
1: जी, 2 सबसे जो है जो ज़्यादातर घरों में इस्तेमाल होता है, जो कि आपको हैवीनेस भी नहीं लाता है, आप बहुत लाइट फील कराता है और एनर्जी भी मिलती है। तो पहला आप छाछ सबसे अच्छा होता है, जो खाना खाने के बाद आप लेते हैं, उसमें भुना जीरा काला नमक डाल के, तो डाइजेशन भी बेहतर करेगा और आपको अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन भी मिलेगी और आपको हाइड्रेट भी रखेगा। दूसरा है आप नींबू पानी, उसको शिकंजी बना के भी ले सकते हैं, नींबू पानी में जो है पुदीना या जीरा इस तरह से मिला के ले सकते हैं। तो ये दोनों ड्रिंक जो है वो किसी को ले लेना चाहिए, इससे कोई भी नुकसान नहीं है।
0: मैम, अब वक्त कह रहा है कि इस प्रोग्राम को वाइंड अप करें, लेकिन उससे पहले श्रोताओं के लिए आपका एक आसान समर हेल्थ टिप क्या होगा?
1: सबसे पहले तो ये आपको ध्यान देना है कि आपको हाइड्रेट रहना है, आपको 8 से 10 गिलास पानी रोजाना पीना है और 1 से 2 गिलास आपको कोई भी मतलब ये हेल्थ ड्रिंक्स लेने हैं, जैसे छाछ है, मट्ठा है या सत्तू है, इस टाइप की चीजें अपने डाइट में जरूर शामिल करें और घर से निकलने से पहले कुछ ना कुछ खा के निकलें, खाली पेट घर से ना निकलें, नहीं तो लू लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
0: मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे तरीके से सारी जानकारी दी और उम्मीद है दोस्तों कि नींबू पानी प्लस पुदीना छाछ भुना जीरा और आम पना बेल का शरबत सत्तू का शरबत, ये सारी चीजें हैं ऑप्शन में, आप इनमें से कोई 2 तो आप अपनी दिनचर्या में शामिल ही करेंगे जब तक गर्मी कम ना हो जाए और हैबिट में डाल लीजिए। और शुरुआती तौर पे जब हम किसी भी काम को शुरू करते हैं ना तो 1-2 दिन थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन जब लगातार करते रहते हैं ना तो खुद से हैबिट बढ़ जाती है। तो हमें क्या करना है, अच्छी वाली हैबिट्स डालनी है, जब हम अच्छे बनेंगे तो अब हमारे बच्चे भी अच्छे बनेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। और पहले से दिमाग में ये नहीं लाना है कि अरे ये सत्तू तो बच्चे खाएंगे नहीं। भाई, आप देखिए उनका टेस्ट कैसे है, मीठा पसंद कर रहे हैं, नमकीन पसंद कर रहे हैं, खेल खेल में खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। बस एक माँ ऐसा काम कर सकती है और इस काम को करने में मौसी बुआ और दादी और नानी भी पीछे नहीं है ना, बच्चों को हंसी हंसी में आप पेट भरा जरूर देती हैं उनका। तो चलिए इसी के साथ इस प्रोग्राम को यहीं पर करते हैं वाइंड अप। नेक्स्ट प्रोग्राम ओटो पे तेरी बात, आपकी ही बात हम आप तक ही पहुंचाएंगे। और आज जब दादा दादी नाना नानी की बात हो ही गई है तो आप बताइए, तो जरा गर्मियां शुरू होते ही हम लोगों को दादा दादी नाना नानी के घर याद आ जाते थे और हम वहां चले जाते थे, तो क्या आज भी है, आप याद करते हैं? अगर याद करते हैं तो क्यों, क्या खास है बात उन यादों में? बस ये हमें आपको मेल करना है, 100 मेल किस पे करना है, FM मेल आईडी हमारी कौन सी है, आपको याद है ना, FM रेनबो।

लखनऊ FM आकाशवाणी या रेनबो लखनऊ कौन सी है बताइए तो जरा, याद है ना आपको? FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पे आपको मेल करना है, हमारा साथ ऐसे ही देते रहना है, सुनते रहना है 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, दोपहर के 1 बजे हैं, आप सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 मई को गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन व शिलान्यास करेंगे। गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग पर स्थित तालनदौर में यह इंटरनेशनल स्टेडियम 392.94 करोड़ रुपए की लागत से आकार लेगा। कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग ने स्टेडियम का निर्माण 23 दिसम्बर 2027 तक पूर्ण किए जाना लक्षित किया है। जिलाधिकारी दीपक मीणा का कहना है कि क्रिकेट स्टेडियम बन जाने से गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग पर बहुआयामी विकास का नया मॉडल दिखेगा। बस्ती में गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश शुक्ल ने कहा कि गौ आश्रय का अब 5 और 7 हेक्टेयर में निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज पशुपालकों की संख्या निरंतर घट रही है, लोगों को पशु पालने के साथ निराश्रित पशुओं की देखभाल को जन आंदोलन के रूप में लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा निराश्रित और असहाय गोवंश के संरक्षण देखभाल के लिए योजनाएं संचालित की जा रही है, जिनके सकारात्मक परिणाम प्रदेश भर में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। इटावा में जन कल्याण योजनाओं की समीक्षा में जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने बाल विवाह रोकथाम पर जोर देते हुए बताया कि जिले में 12 बाल विवाह रोके गए हैं, अब अभिभावकों पर भी कार्रवाई होगी। उन्होंने सभी प्राइमरी स्कूलों में गाइड चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर लिखवाने को कहा है, साथ ही मुस्लिम बालिकाओं की शिक्षा पर चिंताजनक बताकर उन्हें योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में आज मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है। इसी क्रम में अमरोहा में आज तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। कई स्थानों पर पेड़ों की टहनियां टूटकर गिर गई। मौसम विभाग ने प्रदेश में पूर्वी और पश्चिमी जिलों में आज कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है। नर सप्ताह समारोह 2026 के अंतर्गत कमान अस्पताल मध्य कमान लखनऊ ने स्वास्थ्य सेवा, रोगी सुरक्षा और सामुदायिक कल्याण में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के उद्देश्य से शैक्षणिक और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का आयोजन किया। यह समारोह अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2026 के विषय हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती हैं के अनुरूप आयोजित किया गया। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: एक बजकर 4:17 का वक्त, और ये वक्त बता रहा है कि प्रोग्राम ओठों पे तेरी बात की हो चुकी है शुरुआत। और आप सभी को ईमेल करना है कहाँ, fmakashwani@gmail.com पे, और उसमें आपको बताना है कि क्या आज भी आपको अपनी गर्मियों की छुट्टी में जहाँ घूमने जाते थे, दादा दादी के घर या नाना नानी के घर, उसकी याद आती है। अगर आती है तो क्यों आती है, ये बस फटाफट बताना है। उसमें से देखिएगा कितने इमोशनल टच आज भी हमें दिखाई देंगे और उन्हें हम महसूस कर पाएंगे और अपने बच्चों को भी बता पाएंगे। ये यादें बहुत जरूरी होती हैं दोस्तों हमारी लाइफ के लिए। तो हम इंतजार कर रहे हैं आपके ईमेल का, और फिलहाल तब तक के लिए सुनते हैं प्यारा सा गीत, और इसके बाद होंगी आपके ही बातें आपके ही में। लेकिन हाँ, एक बात और ध्यान रखें, ये प्रोग्राम फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम नहीं है, तो आप हमसे जुड़ें, जरूर जुड़ें अपनी बातों के साथ, अपनी दिल की बातों के साथ जुड़ें। और 2 बजे से होगा प्रोग्राम हॉट मेल, जिसमें आपके ही फरमाइश के गाने आप तक हम पहुँचाते हैं। जी हाँ, आप तक ही तो पहुँचाते हैं, और अगर नहीं पहुँचाते हैं तो दूसरे जो गाने हैं वो आपकी पसंद बन जाते हैं, क्योंकि 1 घंटे में कितने ही गीत प्ले किए जा सकते हैं ना दोस्तों। तो बस इन सभी बातों का रख

0: आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में ईंधन की बचत और वसाइल के बेहतर इस्तेमाल को लेकर रियासत के लोगों से वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी की अपील से जुड़ने के साथ ही कई अहम हिदायत दी हैं। एक रिपोर्ट।
1: सरकार की तैयारियों के संबंध में कल अपने सरकारी आवास पर आयोजित उच्च स्तरीय

0: बैठक में मुख्यमंत्री ने स्वयं और मंत्रियों की फ्लीट में तत्काल 50% तक कटौती करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत अनावश्यक वाहनों को हटाया जाएगा। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से भी जिम्मेदारी निभाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सरकारी कार्यों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक उपयोग किया जाए और सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाया जाए। साथ ही मंत्री, सांसद और विधायक भी सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। श्री योगी ने कहा कि सरकारी बैठकों, सेमिनारों और कार्यशालाओं का अधिक से अधिक आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया जाए, जिससे अनावश्यक यात्रा और ईंधन की खपत कम हो सके। इसके अलावा उन्होंने वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को भी प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से भी अपील की है कि वे मेट्रो, बस, साइकिलिंग और कार पुलिंग जैसे विकल्प अपनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए सभी को सतर्क और जिम्मेदार व्यवहार अपनाने की आवश्यकता है। समाचार कक्ष से अरुण।
1: मरकजी जांच एजेंसी सीबीआई ने नीट इम्तिहान 2026 के मुबैना पेपर लीक होने के सिलसिले में एक केस दर्ज किया है। इस मामले में मुल्क भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने आला तालीम महकमे की तहरीर की बुनियाद पर मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए सीबीआई की खसूसी टीमें मुख्तलिफ मकामात पर भेजी गई हैं। इस दरमियान एनटीए ने वाजह किया है कि दोबारा इम्तिहान के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी।
2: एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे और दोबारा होने वाली परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर से पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
1: मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 38 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। उन्हें आज सुबह लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मुर्दा करार दिया गया। मौत की वजह अभी वाजह नहीं हुई है। प्रतीक यादव की अहलिया अपर्णा बिष्ट यादव इस वक्त रियासती खवातीन कमीशन की नायब सदर हैं। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक यादव के इंतकाल पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर-आला मुलायम सिंह यादव के बेटे और उत्तर प्रदेश रियासती खवातीन कमीशन की नायब सदर अपर्णा यादव के शौहर प्रतीक यादव का अचानक इंतकाल इंतहाई अफसोसनाक है। भारत कल से शुरू होने वाले दो रोज़ा ब्रिक्स वज़राए खारजा इजलास की मेज़बानी करेगा। वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर मीटिंग की सदारत करेंगे। इजलास में ब्रिक्स रुकन ममालिक के वज़राए खारजा और वफूद शिरकत करेंगे। वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान ब्रिक्स रुकन ममालिक के वज़राए खारजा बाहमी मफाद के आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने मुल्क भर की अदालतों को जदीद बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए जस्टिस अरविंद कुमार की सरबराही में एक आला सतही कमेटी के कयाम का ऐलान किया है। हुकूमत से इस मकसद के लिए 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए मख्तस करने को कहा गया है। कमेटी 31 अगस्त तक वज़ीर आज़म की इक्तसादी मशावरती काउंसिल के रुकन संजीव सान्याल को अपने तफसीली नतायज और मतलूबा फंडिंग की तफसीलात पेश करेगी। हुकूमत ने सोने और दीगर कीमती धातों पर दरामदादी ड्यूटी बढ़ा दी है, जो आज से लागू हो गई है। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि सोने और चांदी पर दरामदादी ड्यूटी 5% और प्लेटिनम पर 5.4% होगी। मजीद बरां तामील के उसूलों के तहत कीमती धातों में इस्तेमाल होने वाले कैटलिस्ट पर बरामदादी ड्यूटी 4.35% होगी। रियासत के काउंसिल और कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूलों में आज से इंडियन लैंग्वेज समर कैंप 2026 शुरू हो रहा है। ये खसूसी कैंप वजारत तालीम हुकूमत हिंद की हिदायत के मुताबिक मुनक्किद किया जा रहा है, जो आज से 19 मई 2026 तक जारी रहेगा। कैंप का अफ्तताह मरकजी वजीर तालीम करेंगे। रियासत के बुनियादी तालीम के वजीर संदीप सिंह ने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक बच्चों को भारतीय जबानों, लोक रवायात और सकाफती इकदार से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि कैंप के जरिए तलबा को अपनी मादरी जबान और भारतीय जबानों को भरपूर विरसे को समझने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुईं।

1:21:15 का वक्त हो चला है। ढेर सारे ईमेल्स हमारे बीच में आ चुके हैं और मेल किसका आया हुआ है? सुल्तान रजा का मेल है और ये हमें कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से लिखकर भेज रहे हैं। और ये लिख रहे हैं कि गर्मियों की छुट्टियों में हम जाते थे नाना के यहाँ और वहां जाकर गर्मियों में आम के बाग में बैठकर आम तोड़ते थे, खाते थे और बहुत मजा आता था। और अब तो ना नाना है ना नानी है और ना पहले जैसा माहौल है। अब तो छुट्टियां गर्मी की बस कूलर और पंखे के नीचे ही बीतती हैं। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं रजा, एसी के नीचे बीतती हैं। इसीलिए तो बस आज का विषय रखा हमने पुरानी यादों को ताजा करने के लिए कि जब हम बात करेंगे तो कुछ लम्हे तो पुराने जी लेंगे, है ना। और एमन का भी ईमेल आ चुका है। कहां से? नवाब संडीला से। अच्छा, एमन नवाब संडीला से हैं और इन्होंने लिखा है कि आज के टॉपिक पर ये क्या कहें, क्योंकि कभी गर्मियों की छुट्टी पे ये अपनी नानी के घर नहीं गई, इन्होंने नानी को नहीं देखा और जब बहुत छोटी थी तब नाना को देखा था, वो भी इन्हें याद नहीं है। और बात आती है दादा दादी जी के घर पे, तो अहमन उन्हीं के साथ रहती हैं, उन्हीं के घर पे ठंडी गर्मी बरसात सारे सीजन दादाजी के साथ ही बिताती हैं और दादाजी को बहुत सारी बातें घुमा फिरा कर भी बताती हैं। क्यों अहमन, कई बार आपने कहा कि हमने आपके लिए रिक्वेस्ट भी की है आपके दादाजी से। वैसे आपके दादाजी बहुत अच्छे हैं और हमेशा आप दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे। और बाकी मेल पढ़ने से पहले ये प्यारा सा ट्रैक, क्योंकि अमन ने हमें लिखकर भेजा था गर्मा गर्म दोपहरिया की शुभकामनाएं और ये गाना उस पर फिट बैठता है।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: सात रंग का इंद्रधनुष है,
3: सात सुरों की सरगम है,
4: सात जन्म है सात समंदर,
2: साथ हमारा हरदम है,
4: जिंदगी के सतरंगी रंग
3: FM रेडियो के संग।

1:32 हो चले हैं। रामेश्वर जी का मेल आ चुका है कानपुर देहात से, मुंगिसापुर नाम है, और इन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है, इन्हें प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और ये आज ही अपने नाना नानी के घर जा रहे हैं घूमने के लिए, क्योंकि इन्हें वहां बहुत अच्छा लगता है और नाना नानी की याद भी आती है। और इनके साथ में रामेश्वर, उमाकांती, कमलेश, निशा, प्रज्ञा, प्रतिमा, वेद बाबू और पूरी फैमिली की तरफ से इन्होंने हमें मेल किया है और उम्मीद है कि आप पूरी फैमिली के साथ नाना नानी के घर जा रहे होंगे। भाई पलक झपकते ही ढेर सारे ईमेल्स आ चुके हैं। बाबू अंसारी देवकली अहमदपुर बाजार बाराबंकी से हमें मेल कर रहे हैं। अच्छा, आप टॉपिक ही नहीं सुन पाए इस बार। चलिए हम आपको बता देते हैं कि आपको बताना है कि जब आप गर्मियों की छुट्टी में नाना नानी या दादा दादी के घर जाते थे तो आपको कैसा लगता था। आज आप उन यादों को याद करते हैं और याद करके कैसा महसूस करते हैं। हाँ, और उम्मीद है ये नीरज जी आपको भी अच्छा। ये रिंकी पिंकी जगदीशपुर शिवगढ़ से हमें लिख रही हैं, रायबरेली से, आपने भी सुन लिया होगा और आपको भी आज का टॉपिक पसंद आया होगा। फटाफट आप हमें मेल करिए। और ये मेल आ चुका है कहाँ से, बहराइच से इन्होंने हमें मेल किया है और इन्होंने लिखा है कि गर्मियों की छुट्टियां शब्द सुनते ही पहले सिर्फ स्कूल की छुट्टियां याद आती थी, लेकिन अब बड़े होने के बाद समझ आता है कि छुट्टियां सिर्फ स्कूल की नहीं होती बल्कि वो वक्त होता है जो हम अपनों के साथ सुकून से बिताते हैं। बिल्कुल सही लिखा है। आज भले ही हम कामकाज और जिम्मेदारियों से बंधे हैं पर इस तपती गर्मी में भी अगर दोस्तों का साथ मिल जाता है तो वो पल किसी ठंडी छांव से कम नहीं होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि पक्के दोस्त सिर्फ बचपन में बनते हैं, पर मुझे जिंदगी के इस पड़ाव पर भी अपनी ये महफिल मिली है और जिन्होंने साबित किया है कि दोस्ती के लिए सालों का साथ नहीं बस दिलों का मिलना जरूरी है। बिल्कुल सही बात लिख रहे हैं। और आप अच्छा अपने दोस्तों का नाम भी गर्व से लेना चाहते हैं राजन जी। और भाइयों, भले ही अपने बचपन की उन गलियों में साथ दौड़ ना लगाई हो पर जो आज हम साथ हैं वह मेरी असली समर वेकेशन है। आप सबके साथ बैठकर दो पल की हंसी मजाक होती है, वो हमें सबसे बड़ी राहत मिलती है। भाई बहुत बहुत अच्छी बात लिखी है। और माधव राज हैं हर राजपुर बहराइच से ये हमें लेकर भेज रहे हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, दोस्ती तो उसके लिए कुछ कहा ही नहीं जा सकता ना, दोस्ती तो दोस्ती होती है। और किसका मेल आया हुआ है, अच्छा और भी मेल हम जरूर लेंगे लेकिन ये प्यारा सा ट्रैक सुन लेते हैं उसके बाद।

0: तैयार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
1: समझे जनाब अली।
0: जहां हर घर में बजता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 1090

0: और दोस्तों 1:45 हो चले हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि अपनी बातों को क्या शेयर करें कि क्या ना करें, लेकिन आप कर दीजिए। जी हाँ, अच्छा लगेगा आपको भी और हमें भी। जावेद अख्तर जी का मेल आ चुका है और इन्होंने हमें कहाँ आजमगढ़ से मेल किया है और ये लिख रहे हैं कि अच्छा, ये मोबाइल ऐप पर हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और गर्मियों की छुट्टी में ये नाना नानी के घर बहुत शौक से जाया करते थे और बागों में आम की खूब बहार हुआ करती थी और खूब इंजॉय करते थे। भाई यही तो मज़ा था जो आज कम हो गया है। और बहुत सारे आजकल के बच्चे भी हैं जिन्होंने कभी गाँव नहीं देखा है, कभी आम का बाग नहीं देखा है, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने लिसनर से कोशिश करें बच्चों को जरूर ले जाएं। अगर आप कहेंगे कि हमारा कोई गांव है ही नहीं, हम कैसे जाएं, कैसे बच्चों को वहां की लाइफ को दिखाएं, कैसे हम आपके आम के बाग ले जाएं, तो कोई ना कोई आपका रिलेटिव, आपका जानने वाला किसी ना किसी के यहाँ घर जरूर होगा, कोई ना कोई गांव से जरूर जुड़ा होगा। और एक दिन समय निकालिए, जरूर बच्चों को ले जाइए और देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा और बच्चों को भी अच्छा लगेगा। गुलाबसा सिद्दीकी जी का मेल आ चुका है संडीला से और ये कह रहे हैं कि अच्छा, हमने एक ऐसा गाना बजा दिया जिससे कि बादल आ गए हैं और मौसम का मूड खराब हो गया है, बारिश होने वाली है। भाई ऐसा तो हमने मूड खराब करने की तो हमने किसी की कोशिश नहीं की है, लेकिन अच्छा है, बारिश आएगी तो अच्छा है। और ये वकील अहमद जी का है, अच्छा ये मुद्दा नहीं सुन पाए हैं आज का, और इनके यहाँ आंधी बारिश और पत्थर गिर रहे हैं इस समय, खेत में हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं, ये हथूरी जिला सीतापुर से बात करें। भाई ध्यान रखिए अपना, अगर पत्थर गिर रहे हैं तो बाहर खुले में ना निकले, ना बच्चों को निकलने दे। और बसंत कुमार सिन्हा का भी मेल आ चुका है और ये हमें रेखा देवी, अजय कुमार और सिमी तनुश्री के साथ लिख रहे हैं, ये दमदर एयरपोर्ट कोलकाता से मेल कर रहे हैं और ये लिखते हैं कि पुरानी यादों को ताज़ा करना, और यादें तो वैसे भी ताज़ा हो चुकी हैं। मैं गर्मी की छुट्टी पर अपने घर गांव जाना इन्हें बहुत अच्छा लगता था, गाँव की जो मिट्टी की खुशबू और अपनी जन्म स्थली भूमि की खुशबू मन को बहुत ताजा कर देती है। गांव में अपने पुराने रिश्ते वालों के घर जाना मन को बहुत भाता है। घर के सभी देवी देवता का पूजा करना और राजगीर की जल प्रताप की सैर करना, उलन खटोले से पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंचकर भगवान के दर्शन करने का मन को शांति मिलती है। भाई बहुत अच्छी बातें हैं और पुरानी यादें ताजा जरूर होंगी। ये किसका मेल आया है, शिवा जी का मेल आया है और इन्होंने काकोरी लखनऊ से हमें मेल किया है। गर्मी बहुत हो रही है, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, चिड़ियों के लिए दाना ठंडा पानी रखें, गर्मी बहुत हो रही है। भाई सभी ख्याल रख रहे हैं और सभी एक दूसरे से कह रहे हैं, लेकिन केवल कहने से काम नहीं होता है, करना भी पड़ता है ना। और नीरज कुमार जी का मेल आ चुका है, बचपन की शरारतें भी बहुत करते थे हम लोग और एक अलग सी खुशी मिलती थी, नाना नानी भी तो इस दुनिया में नहीं है, समय के साथ सब बदल गया है, अब वो सुकून की खुशी नहीं मिलती है, अब तो हम अपनी नानी के यहाँ बहुत कम जाते हैं, अपने घर में ही रहते हैं। भाई वही तो ना, यादें याद कर रहे हैं आज हम। और प्रवीण जी का भी मेल आ चुका है, इन्होंने लिखा है कि मेरी दादी तो हमारे साथ ही रहती हैं, दादा को मैंने देखा नहीं, नानी क्या मैं अच्छा और नाना नानी को देखा है। गर्मी की छुट्टियों में मामा के घर जाते थे, बहुत बोर होता था, अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वहाँ कोई दोस्त नहीं बनता था, अकेले पड़ जाता था, इसीलिए मामा के घर केवल टीवी ही देखता रहता था। अच्छा चलिए, ये भी एक नया चीज़ आपसे पता चली, नया एक्सपीरियंस रहा आपका सुनकर। और दोस्तों अभी मेल को थोड़ा सा रोक देते हैं क्योंकि गाना शुरू हो चुका है।
1: तो

और दोस्तों गुलाब साहब सिद्दीकी का फिर से मेल आया है और इन्होंने लिखा है कि ये नाना नानी के घर जाती थी, मलिहाबाद के पास एक गांव है कचौली, वहीं पर था और ये बहुत दिन तक वहां पर रुकती थी और इन्हें बहुत अच्छा लगता था। लेकिन शायद अब गुलाब साहब टाइम नहीं मिलता होगा या समय बदल गया है, कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई है ना। तो देखिए दोस्तों आज अच्छा लगा, आपने बहुत सारे लोगों ने हमें मेल किया, हमसे जुड़े और आपको भी अपनी यादों को ताज़ा करके अच्छा लगा होगा, वो दिन महसूस किया होगा, उसका एहसास हुआ होगा जो दिन बीत गए हैं। और इसी के साथ 1:55 और 8 सेकंड हो चले हैं दोस्तों, ये वक्त हो गया है इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने का। नेक्स्ट प्रोग्राम हॉट मेल में शालिनी रहेगी आपके साथ, आपके ही गीतों के साथ। तो फटाफट मेल

0: 0.74%. Benchmark domestic equity indices rebounded today and were trading over 0.5% up in the afternoon session. The Sensex advanced 403 points to 74,962, while the Nifty rose 146 points to 23,526 when reports last came in. The broader market at the National Stock Exchange also jumped. The mid-cap 100 was trading 1.3% higher, and the small-cap 100 added 0.7% a short while ago. On the sectoral front, metal, telecommunication and consumer durables stocks lifted the market higher, while selling pressure was witnessed in IT and auto stocks. India can witness early arrival of the southwest monsoon this week. The India Meteorological Department, IMD, said conditions are becoming favorable for the advance of southwest monsoon, likely over parts of South Bay of Bengal, Andaman Sea and Andaman and Nicobar Islands towards the end of this week. According to the Met Department, the southwest monsoon normally sets in over Kerala around 1st of June every year. Meanwhile, several districts of Rajasthan are currently reeling under severe heatwave conditions, with border districts being most affected.
1: The Met Centre has issued a red alert for severe heatwave conditions in the border districts of Barmer, Jaisalmer and Phalodi for today. In addition, an orange alert has been issued for four western districts, while a yellow alert has been sounded for six southwestern districts of the state. Not only the days, but the nights are also witnessing intense heat, with temperatures remaining above 30 degrees Celsius at several places. The prevailing heatwave conditions have affected normal life across the region. According to...
2: Ab samachar vistar se. तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पाडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
3: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। श्री रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। बिबिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
2: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली, जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के पांच अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजय आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
4: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
2: गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से

0: सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्री परिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट, डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष सीबीएसई की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। सीबीएसई ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
2: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि यह लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीत वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए

कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल 1 जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के 5वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9, 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदाम्बी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य 4 मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए।
सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दोस्तों आप सभी सुन रहे हैं एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की और प्रोग्राम हॉटमेल में शालिनी आपके साथ। गुलाबसा सिद्दीकी का मेल आ चुका है संजीला से और इनके यहाँ अभी बारिश हुई है और अच्छा पत्थर भी गिर रहे हैं भाई, ध्यान रखिए आप अपना। ये नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य लाटू कोयल, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष और कोयल जुग्गू भौमिक का मेल आ चुका है। बाकी लोगों ने पानीपत से हमें मेल किया है और मोहम्मद रिजवान का संटीला से मेल आया है। फरिंदा हरदोई, आप कैसी हो? अच्छा, ये कुछ समझ में नहीं आया कि कहां कहां से आपने मेल किया हुआ है। राम राज का भी मेल आया है और इन्होंने जिला रायबरेली पहाड़ीपुर से मेल किया है। और राजू, भानु, पप्पू, मनीष, मिर्जा, इरमान, नीरज, रिजवान सभी लोगों ने मिलकर एक साथ मेल किया है। अहमद भाई फुल वाले मुंबई से, दुखनी, सफत, आरजू, जोही, इकबाल, इमरान, बिठिया, आमना, नसरीन, आसमा, राबिया, मंतशा, आरसू सभी लोगों ने एक साथ मेल किया है। दंद्रेंगी से

दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं फिल्म रेनबो धड़कन लखनऊ की, और प्रोग्राम हॉटमेल में शालिनी आपके साथ। गुलाबसा सिद्दीकी का मेल आ चुका है संजीला से, और इनके यहाँ भी बारिश हुई है, और अच्छा पत्थर भी गिर रहे हैं भाई, ध्यान रखिए आप अपना। ये नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य लाटू कोयल, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष, और कोयल जुग्गू भौमिक का मेल आ चुका है। बाकी लोगों ने पानीपत से हमें मेल किया है, और मोहम्मद रिजवान का संटीला से मेल आया है। फरिंदा हरदोई, आप कैसी हो? अच्छा, ये कुछ समझ में नहीं आया कि कहां कहां से आपने मेल किया हुआ है। राम राज का भी मेल आया है, और इन्होंने जिला रायबरेली पहाड़ीपुर से मेल किया है। और राजू, भानु, पप्पू, मनीष, मिर्जा, इरमान, नीरज, रिजवान, सभी लोगों ने मिलकर एक साथ मेल किया है। अहमद भाई फुल वाले मुंबई से, दुखनी, सफत, आरजू, जुही, इकबाल, इमरान, बिठिया, आमना, नसरीन, आसमा, राबिया, मंतशा, आशु, सभी लोगों ने एक साथ मेल किया है। दंद्रेंगी से

दोस्तों 2:49 और 23 सेकंड का वक्त हो चला है। ताज मोहम्मद जी का, अच्छा इनका मेल आ चुका था, राधे कुमार विद्यार्थी का भी मेल आया हुआ है और कई सारे लोगों के साथ बिहार से ये हमें मेल कर रहे हैं। धर्मेंद्र विश्वकर्मा जी का भी मेल लखीमपुर खीरी से आया हुआ है। शिवा लोधी का भी मेल आ गया है लखनऊ काकोरी से। सुरेश नागर का सहारनपुर से आशा नारंग के साथ में, और ये सुधाकर, राजीव जाधव, प्रशांत, संचित, प्रथमेश जाफराबाद से ये हमें इतने सारे लोग मेल कर रहे हैं। शंकर लाल जायसवाल और गणेश लाल, शुभम प्रसाद दुर्गेश्वरी के साथ में ताला महाराष्ट्र से इन्होंने मेल किया है। प्रिंसी सिंह का भी मेल आया है, हरदोई से इन्होंने हमें मेल किया है, विजय लक्ष्मी कुशवाहा के नाम से है। और कौशल प्रजापति जी का भी मेल आ चुका है और इन्होंने यशोदा नगर कानपुर से हमें मेल किया है। और अब बारी है इस प्यारे से ट्रैक की, सुनिए और एंजॉय कीजिए।

फान गौरी जी का है, लहरपुर सीतापुर उत्तर प्रदेश से इन्होंने हमें मेल किया हुआ है। एक ही जैसे मेल हैं और सभी ने बार बार मेल करके रखा है। मेहर अरोरा जी का मेल है और रणधीर गुप्ता हैं। बबीता रॉय जी का मेल आया है, टीटी मल्होत्रा जी का मेल है, रोशनी रावत है, नरेंद्र विजयपाल यादव का मेल आया आपता।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें। कागज

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हमारे प्यारे दोस्तों, हम लेकर आ रहे हैं आपके होंठों पर सजने वाले सॉन्ग्स को,
2: जो होंगे आपकी मेल्स पर बेस्ड मेलोडियस सॉन्ग्स।
1: तो अपने फेवरेट सॉन्ग्स को सुनने के लिए आप शाम 4 से 5 बजे हमारे साथ रहिएगा आपकी पसंद के सफर पर।
3: मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो।
2: Only on 102.2 FM Rainbow, the musical heartbeat.
1: तो मेल करने के लिए हमारा मेल आईडी है airkansomedia@gmail.com। तो हमारे साथ सुनिए रेनबो कानपुर पर 4 से 5 आपकी पसंद प्रोग्राम।
4: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
5: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
4: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप। तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
5: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
4: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर मेल मिलाप।
6: पहला नशा, पहला खुमार।
7: हाय, दिस इज उदित नारायण, यू आर लिसनिंग 102.2 FM रेनबो, शहर की म्यूजिकल हार्टबीट। दिल से जुड़े रहें और सुनते रहें शहर की म्यूजिकल हार्टबीट को।
4: हाय, मैं हूँ रंजना और आप सुन रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर और ये है आज का म्यूजिकल टाइम म्यूजिकार। और दोस्तों, आज के इस म्यूजिकल सफर में सिर्फ गाने ही नहीं, बल्कि आज हम आपको सुनवाएंगे वो गाने, और उन गानों को सुनवाने के साथ साथ हटाएंगे पर्दे उन शानदार गीतों से जो आज

आशिकी फिल्म के इस गीत के लिए दोस्तों नदीम श्रवण ने राग भैरवी पर धुन बनाई थी, लेकिन तब उन्हें भी ये कहां पता था कि ये जो गीत है ना, ये न सिर्फ हिट होगा बल्कि 90s के दौर में प्यार का ही पर्याय बन जाएगा। यहां यानी कि जहां पर होगा लव वहां पर होगा ये लव सॉन्ग। और कुमार शानू के करियर का भी ये एक टर्निंग पॉइंट बना था ये जो गीत है। इसके बाद तो कुमार शानू ने बहुत सारे बैक टू बैक सुपरहिट सॉन्ग्स दिए और उनमें से एक गीत अभी आप सुनेंगे।

90s के दो जबरदस्त सिंगर्स ने इस गीत को अपनी आवाज दी थी, यानी कि कुमार शानू और अलका याग्निक। और शूटिंग के दौरान माधुरी दीक्षित जो इस फिल्म की हीरोइन थी, उन्होंने एक इंटरव्यू में ऐसा कहा कि ये जो गाना है ना, वो आज के दौर के प्यार को पूरी तरह से परिभाषित करता है, आज के दौर के प्यार को बयां करता है। तो कैसा लगा आपको ये गीत? अभी जो गीत आप सुनने वाले हैं और उसको सुनने के बाद बताइए कि कैसा फील होता है आपको।

हाँ, सरसों के खेतों के बीच शूट हुआ ये गाना अलग ही लेवल का क्रेज रखता है। खास बात ये है कि शूटिंग का ये जो गीत है ना, वो आखिरी गीत था असली।

पैकअप तो इस गीत के बाद ही होना था। और यश चोपड़ा जी के वर्ड्स में अगर हम जाने तो भाई ये जो गीत है ये गीत प्यार की पहली झलक को दिखाता है।

फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। और भाई इस फिल्म में शाहरुख खान और काजोल की रोमांटिक जोड़ी जो है वो सुपरहिट रही। लेकिन एक फिल्म और है जिसमें इस जोड़ी ने पहली बार धूम मचाई थी, और अनु मलिक का ये जो एक गीत है ना, वो तो सुपरहिट गाना है और बड़ों से लेकर बच्चों तक के जबान पर है। ये सुनवाते हैं आपको ये।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: एक आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
2: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
3: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
2: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप, तो नोट कीजिए हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
3: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
2: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmme

0: mailmilap@gmail.com पर, यानी कि fm@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 3:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर, मेल मिलाप।
1: नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 FM रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए FM रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।

102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो संगिनी रंजना। प्रोग्राम चल रहा है दोस्तों म्यूजिक आर, और म्यूजिक आर में एक बड़ा ही प्यारा सा गाना लेकर आ गई हूं मैं। अब ये गाना जो पहले आपको सुनवा चुके हैं हम ब्रेक से पहले, एक धुन आपको सुनवाई थी, हो सकता है आपके जहन में वो गीत आ भी गया हो, क्योंकि कभी ना कभी आपने इसे जरूर जरूर गुनगुनाया होगा। इसे गाया है कुमार शानू ने, और ये कुमार शानू का कहना है कि बहुत ही मुश्किल गानों से एक ये गाना है, क्योंकि ये बहुत ही इमोशनल गाना है और थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये दर्द भी हमें देकर जाता है। और ये जो गाना है ना, ये इंस्पायर्ड है एक इंग्लिश फिल्म से जिसका नाम है इट हैपेंड वन नाइट, लेकिन इसका जो म्यूजिक है वो पूरी की पूरी तरह से ओरिजिनल है। अब आप इस गीत को समझ पाए हैं कि नहीं? अगर नहीं समझ पाए हैं तो चलिए हमारे साथ सुन लीजिए।

ट्विंकल खन्ना और बॉबी देओल की जोड़ी को लॉन्च किया गया था फिल्म बरसात में। उन पर फिल्माए गए एक खूबसूरत गाने में कुछ बहुत ही खास तरह के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया गया था, जो कि उस समय के लिए एक नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था। हालांकि ये सब आजकल बहुत कॉमन हो गया है, लेकिन उस समय ये बहुत ही नया सा एक एक्सपेरिमेंट था। और जानते हैं कि वो गीत कौन सा था, लीजिए सुनिए। वो गीत था ये वाला।

अब एक और गाना अगर आपको नहीं सुनवाऊंगी ना तो भाई आज के म्यूजिक नंबर्स पूरे ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अपने एरा का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला लव सॉन्ग है ये, और इसमें कई जगह पर वोकल में आपको किशोरदा की स्टाइल, उनकी आवाज की हल्की फुल्की झलक भी देखने को मिल जाएगी। और अगर मिलती है ना तो मुझे मेल करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको कोई ऐसा गीत याद आ रहा हो या आपका कोई ऐसा फेवरेट सॉन्ग हो जिसके बनने के पीछे हो कोई रोचक सी बात, तो हमारे साथ जरूर शेयर करिए।

और ये गाना तो भाई रिलीज होते ही चार्ट बस्टर बन गया था। उस पर अक्षय और शिल्पा शेट्टी के डांस मूव्स आए हाय, मतलब कहर ही ढाया था हम यूथ पर। लेकिन मैं हमेशा ना कंफ्यूज ही रही, मुझे समझ ही नहीं आया कभी कि ये डांस नंबर है या लव सॉन्ग। भाई लव सॉन्ग अगर है तो जरा सा लाइट होता है ना, वो तो सॉफ्ट सा होता है। लेकिन एक बार चलिए आप सुनिए और बताइए कि ये डांसिंग नंबर है या एक लव सॉन्ग है।

बांदा से उज्जवल लिखते हैं कि ये एक दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला लव सॉन्ग है। जी हाँ, इस गीत को सुनने के बाद दिल की धड़कनें तो हमारी सचमुच में बढ़ जाती हैं। इसकी जो हाई बीट्स हैं वो हमें थिरकने पर भी मजबूर कर देती हैं। अब एक गीत जो मैं लेकर आ रही हूँ, इस प्रोग्राम का आखिरी गीत है ये, और इस गीत की जो इंस्पिरेशन है वो जानते हैं कहाँ से आई है? ये गीत ट्रक के पीछे लिखा हुआ करता था, और ये एक स्लोगन था ट्रक के पीछे लिखा हुआ, और उसको देखने के बाद एक इंस्पिरेशन जागी और ये गीत निकल कर सामने आया।

0: जी हाँ, शाम तो होने आ गई है, लेकिन अपने साथ एक नया, एक और प्रोग्राम भी लेकर आ गई है। यहाँ पर म्यूजिक आर का समय बस पूरा होता है, लेकिन चलते हैं अगले प्रोग्राम की ओर, जिसका नाम है आपकी पसंद। मैं हूँ आपके साथ दोस्तों, आपकी रंजना, और आपने ट्यून किया है शहर का नंबर वन रेडियो चैनल 102.2 FM रेनबो कानपुर। प्रोग्राम आपकी पसंद लेकर हाजिर होती हूँ मैं बस थोड़ी ही देर में।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित तिवारी। यू आर लिसनिंग कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट 102.2 FM रेनबो कानपुर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: Hey guys,
2: hey, congratulations!
1: आज तो पार्टी चाहिए।
3: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
4: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
4: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: Hi, this is Udit Narayan. You are listening 102.2 FM Rainbow शहर की म्यूजिकल हार्ट बीट. दिल से जुड़े रहें और सुनते रहें शहर की म्यूजिकल हार्ट बीट को.
1: और प्रोग्राम आपके पसंद लेकर हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो संगिनी रंजना 102.2 FM रेनबो पर. और लीजिए सुनते हैं आज की पहली पसंद.

रूपपुर चंदेला से नीलू शर्मा की पसंद का ये गीत अभी हमने आपको सुनवाया और इनके साथ इसी गीत को सुनना चाहा था। सारा, पीहू, मनु, रोशनी, बबीता, स्नेहा, सोनी और वंदना, इनके अलावा जो इसी गीत को जिनके लिए जिनकी रिक्वेस्ट आई है उन श्रोताओं के नाम भी मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी। आप हैं मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल, शहनाज, अनम, यशफ और रसीद वारसी। अजीज़ुर रहमान साहब ने भी इसी गीत को पसंद किया है और आप हैं नेहरू पार्क निज़ामाबाद तेलंगाना से, और इनके साथ इन्होंने कुछ और लोगों के भी नाम लिखे हैं, मतीन भाई, एमडी यासीन, मोसा करीम, सैयद खलील, और एक और रिक्वेस्ट इसी गीत के हमारे पास आई है, हम उसको भी ज़रूर शेयर करेंगे। आप हैं अनिल कटियार ग्राम मदारीपुर कानपुर देहात से, इनके साथ हैं डिम्पी कटियार, गौरव, सौरभ और खुशी कटियार, और एक मेल जो अभी अभी पॉपअप हुई है हमारे स्क्रीन पर ये है मोहम्मद सईद अब्बासी साहब, और इनके साथ हैं निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान, अवान और पूरा का पूरा अब्बासी परिवार, और इन्होंने हमें मेल किया है ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से, और आपने लिखा है कि आज मनहर उधार साहब का जन्मदिन है और उनका कोई भी गीत हमें सुनवा दीजिए, तो उनका गाया हुआ और आशा भोसले का गाया हुआ गीत हम आपको होटल फिल्म से सुनवा रहे हैं। ये आपकी पसंद पर हमने इस गीत को यहाँ पर क्यों किया है, और आज जैसे कि आपने बताया मनहर साहब का जन्मदिन है, जी हाँ, अपने उम्र के एक्टिव 80s का एक साल और जुड़ गया है उनकी उम्र में, और आप सभी जानते हैं कि 70s और 80s के दौर के वो एक शानदार बॉलीवुड सिंगर रहे हैं और उन्हें हम पंकज उधास साहब के बड़े भाई के तौर पर भी जानते हैं। हिंदी सिनेमा में तो उन्होंने गाया ही गाया है, इसके साथ साथ उन्होंने गुजराती गीत भी बहुत सुंदर गाए हैं, और मतलब एक बहुत मज़े की बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो एक उन्होंने हाईली क्वालिफाइड इंसान थे, उन्होंने इंजीनियरिंग की थी लेकिन इंजीनियरिंग के बाद भी उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया और म्यूज़िक में उन्होंने अपना करियर बनाया, और करियर बनाने के साथ लगभग 300 से भी ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने गीत गाए, तो उनकी फिल्म का एक गीत उनकी आवाज़ में हम आपको सुनवा रहे हैं जिनमें उनका साथ दिया है आशा भोसले जी ने, लीजिए सुनिए।

मोताला बाजार बबलू ठेकेदार की रिक्वेस्ट आई है हमारे पास। इनके साथ हैं शेखर शगिर, शेख वजीर और सोहिल शेख। इनके अलावा हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं और प्यार भरा आदाब हमें भेजा है सनावत से शेख मूसा मोहसिन साहब ने। जिला खरगोन सनावद एमपी से हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा। इन्होंने भी शेख मूसा भाईजान का नाम लिखा हुआ है। आप लोग बड़े अच्छे मित्र लगते हैं मुझे। भाई राजकुमार बोडाना जी का भी नाम इन्होंने शामिल किया है इसमें। और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, रितु, मुकेश और जगताव भी लाइव कनेक्ट हो चुके हैं हमारे इस प्रोग्राम में। सुनवाते हैं आपको आप

102.2 FM रेनबो कानपुर से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी पसंद, और इस वक्त आ चुकी है आपकी पसंद जेल रोड रायगढ़ से उमा रानी, अजनबी बेबी जोई और डॉली बेलदार जाटव, इनके साथ छत्तीसगढ़ से हैं प्रभा रानी गौड़िया, चंद्रनगर महाराष्ट्र से आशा जटोलिया और देवशंकर जटोलिया, जेल रोड दिल्ली से हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं लाल बाबू दीवाना, उमा राज और दिव्या भारती, इनके साथ गोराया जालंधर से संदीप कौर, प्रभाक कौर और राधिका कौर भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जालंधर से हैं संदीप जाटव और सुरेश जाटव, कापस हेड़ा दिल्ली से हैं फिरोज खान, अहमद मोगा और इकबाल मोगा साहब, और बेबी अंसारी, निशा परवीन, डब्लू अंसारी, और आप हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं इंदिरा विहार दिल्ली से।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 FM रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए FM रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।

सरगुजा से हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं विनोद थापा, पूजा रानी, संदीप थापा और डॉली थापा। डोंडी लोहारा से सुमित मोगा, देव, राधिका और कबीर मोगा।

सरगुजा से हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं विनोद थापा, पूजा रानी, संदीप थापा और डॉली थापा। डोंडी लोहारा से सुमित मोगा, देव राधिका और कबीर मोगा। सहारनपुर जंक्शन से सुरेश पासवान और आशा डुकर। इनके अलावा जेल रोड शिमला से हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं प्रमिला अशोक जाटव, प्रभा अशोक जाटव और संदीप श्याम जाटव। उमरखेड़ से हैं सोनाली जटोलिया, सरिता पूजा और आभा जटोलिया। इनके अलावा कुछ और लोग जो हमारे साथ अभी अभी कनेक्ट हुए हैं, ये हैं होली चौक उत्तम नगर से जय राम खोरवाल, सचिन अमन दीपांशु खोरवाल, और इनके लिए आ रहा है ये एक बेहद खूबसूरत सा गीत।

बागवान मंजिल छोटी बलिया से हमारे साथ कनेक्ट हैं नूर आयशा अहमद बागवान, इकबाल अहमद, अखलाक अहमद, आमना आसमा, राबिया परी, आशु जोही, सदफ बागवान और छतरी टोल तेघड़ा बाजार बेगूसराय से हैं अदीबा अफसरी, इस्माइल आज़ाद, नन्हे राजा, फैयाज, फिरोज आलम, शाह आलम, वली आलम और इनके अलावा लालगिरी हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, कहाँ से थोड़ा सा पढ़ पाना मुश्किल हो रहा है। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से आप हैं और आपके साथ जुड़े हैं जो लोग, उनका नाम मैं लेना चाहूंगी। आप हैं हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। मेहराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हैं और आपके साथ हैं गुलाब साबिर राही, मोहम्मद ताज मोहम्मद अंसारी आपका नाम है और इनके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं बिहार कॉलोनी सहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, चैतन्य चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित खुराना, केशु रिधान और इनके अलावा गणेशपुर गंज डुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से हैं एम फारूक शेख, शेख शमा, परवीन, शाइमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख और बेबी मुस्कान।

और अभी अभी हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर एमपी से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे और स्वाति प्रयाग चौधरी।

और हमारा भी सलाम पहुंचे आप सभी को जो इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। तो इस वक्त हैं चक 5 MD पतोड़ा से मंगल जनागल राही, रोशनी जनागल, अंकुर, इंदु, डॉक्टर सुनील जनागल, इनके अलावा हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शाह, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी, तनुश्री गुप्ता, पिहरा बाजार झुमरी तलैया गिरिडीह से हैं शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी शाहू, अभय कुमार सनातनी, गुड्डू कुमार खदान कोठी बोरोपारा चौक बसबेरिया से हमारे साथ कनेक्ट हैं, मुन्नी देवी शाह, जयप्रकाश साव, वसंत लाल साव, रिया जिया टूसी, आयुषी, अनिरुद्ध बाबू, आप सभी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं और आपने हमें लिखा है कि दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों। और इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नेशा अजीम भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, डॉक्टर सना, डॉक्टर सोनम, डॉक्टर अदीबा, आप तीनों हैं चमन पार्क दिल्ली से, जेल रोड जालंधर से हैं रोशन जहां, मन्नत जहां, इशरत जहां और मंकर जहां, तालिब अंसारी आप हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं राजा कटरा बारा बंकी से। और दोस्तों हमारे साथ सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग कनेक्ट हुए हैं मैं यहाँ पर उनका नाम भी शामिल करना चाहूँगी, तो सुदर्शन शाह जी हमारे साथ हैं, अजीत कसाना हमारे साथ हैं, हीरामणि वर्मा, इनके अलावा फारूक अली खान, उमा सिंह, शिवांश यादव, अशोक ग्रोवर, चंद्रकांत साहू, निश्चल जी और प्रवीण श्रीमाली हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि आपकी पसंद में शामिल होने के लिए हमें ईमेल करिए, हमारा ईमेल आईडी है aircansomedia@gmail.com, यानी कि aircansomedia@gmail.com। तो बस बने रहिए हमारे साथ और सुनिए ये गीत।

0: जी हाँ, लंबी जुदाई, और इस वक्त हमारी भी जुदाई का वक्त आ गया है। हमें भी अब जुदा होना है, क्योंकि ये जो टाइम है प्रोग्राम का वो अब यहीं पर पूरा होता है। लेकिन बस अभी के लिए हम होंगे जुदा, आगे फिर मिलते रहेंगे और आपको आपकी पसंद के गीत सुनवाते रहेंगे। तो सुनते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ 102.2 FM रेनबो कानपुर के साथ। अब तक दोस्तों मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो संगिनी रंजना।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित तिवारी। यू आर लिसनिंग कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट 102.2 FM रेनबो कानपुर।

नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं को बताया कि सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के लिए किसानों को अनुमानित 2,60,000 करोड़ रूपये का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सीजन में 824 लाख मीट्रिक टन से अधिक फसल की खरीद की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल की अधिकतम बढ़ोतरी सूर्यमुखी बीजों के लिए की गई है। उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का पालन करते हुए राष्ट्रहित में अपनी फ्लीट की गाड़ियों को आधी करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नागरिकों से जो अपील की है उसका पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है। उन्होंने लोगों से भी प्रधानमंत्री की अपील पर अमल करने का आह्वान किया है। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार कल लखनऊ के पिपरा घाट पर किया जाएगा। आज सुबह उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए प्रतीक के शव का पोस्टमार्टम किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और वरिष्ठ नेता धर्मपाल सिंह ने प्रतीक यादव के आवास पहुंचकर शोक व्यक्त किया। इस दौरान पत्नी अपर्णा यादव, डिंपल यादव, शिवपाल यादव सहित परिवार के अन्य सदस्य मौजूद रहे। वाराणसी के निर्माणाधीन लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल परिसर में आज 100 दिवसीय विशेष क्षय रोगी खोजी अभियान के तहत विशेष टीबी जांच एवं स्वास्थ्य कैंप आयोजित किया गया। कैंप में एआई युक्त हैंडल्ड एक्सरे मशीन से श्रमिकों की टीबी स्क्रीनिंग की गई, साथ ही ब्लड प्रेशर, शुगर, हीमोग्लोबिन की जांच के साथ आवश्यक दवाओं का वितरण भी किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेश प्रसाद ने बताया कि अगले सप्ताह से जनपद के अन्य क्षेत्रों में भी विशेष टीबी स्क्रीनिंग कैंप लगाए जाएंगे। प्रदेश सरकार अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाकर भूमाफियाओं पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में हापुड़ जनपद के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के गांव हैदरनगर नंगौला में ग्राम समाज की तालाब की भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को जिला प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर कब्जा मुक्त करा दिया। अपर जिला अधिकारी संदीप सिंह के नेतृत्व में एएसपी विनीत भटनागर ने भारी पुलिस बल के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: रहा है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत के मुंह में
0: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
0: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जवां अंजुमन,
0: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ के लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो। बात बजकर 5 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, और आ गई हूँ एक बार फिर से आप सभी के साथ 100.7 FM रेनबो पर। आपके साथ पिछले एक घंटे से हम बात कर रहे हैं, जी हाँ, यूथ वेव आपने एंजॉय किया, और अब वक्त हो गया है प्रोग्राम टॉप 10 का। इतना तो आपको पता है ना, 10 गानों को आप एंजॉय करते हैं जो टॉप 10 की लिस्ट में या उन पायदानों पर अपनी जगह बना चुके हैं। लेकिन एरा कौन सा है, डिकेड कौन सा है, और हम किस दौर की बात कर रहे हैं, बॉलीवुड के किन गानों की बात कर रहे हैं, वो आपको चलिए बताते हैं कि आज पूरे से एक घंटे में टॉप 10 में आप किन 10 गानों को एंजॉय करने वाले हैं जिन्होंने 10 से लेकर नंबर 1 तक के पायदानों पर अलग अलग अपनी जगह बनाई। जनवरी 1970 का वक्त बॉलीवुड में एक बड़े बदलाव का साल था। राजेश खन्ना का सुपरस्टारडम अपने चरम पर था और किशोर कुमार की आवाज हर गली मोहल्ले में गूंज रही थी। उस समय के मशहूर रेडियो प्रोग्राम बिना का गीतमाला और सिनेमा हॉल की लोकप्रियता के हिसाब से जनवरी 1970 के टॉप 10 गाने कुछ इस तरह से थे जो आज इस प्रोग्राम में आप एंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। खूबसूरत गाना सफर फिल्म का, जिसने नंबर 10 पर अपनी जगह बनाई थी 1970 के उस दशक में।

0: सुबह मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई,
1: हौले से जिंदगी को छूती हुई, जगाती हुई, जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदाबहार गीत
0: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे।

0: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: अरे अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे क्या हो रहा है?
2: क्या
1: ये प्लेन
2: हो गया?
1: ये प्लेन क्रैश हो जाएगा।
3: हे भगवान,
2: कुछ खराबी आ गई लगता है इसमें।
1: जी
2: अरे अरे भाई, किसी को बचने की दुआ आती है क्या?
4: हाँ मुझे आती है।
2: अरे तो भाई आप दुआ कीजिए, पैराशूट वैसे भी है कम है।
5: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
6: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
5: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
7: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
8: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
0: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
9: जय दोस्तों, टॉप 10 में आज हम बात कर रहे हैं 1970 के दशक के बॉलीवुड के वो खूबसूरत गाने जिन्होंने 10 से लेकर नंबर 1 तक अपनी जगह बना रखी थी। जनवरी के महीने में सफर फिल्म के जो गाने थे, किशोर कुमार की आवाज में इन गानों ने काफी पॉपुलर ये गाने हुए थे और इन गानों को बेहद पसंद किया जा रहा था उस दौर में, क्योंकि फिल्म रिलीज होने के बिल्कुल करीब थी और लोगों के दिलों को ये संगीत छू रहा था किशोर कुमार की आवाज में, जिसने शुरुआत ही कर दी थी और टॉप 10 में नंबर 10 पर अपनी जगह बना ली थी। लेकिन उसी वक्त नंबर 9 पर एक गाने ने और भी धूम मचा रखी थी, जो था फिल्म प्यार का मौसम का। किशोर कुमार की आवाज इस गाने में लोगों के दिलों को एक बार फिर से छू रही थी। तो आइए इस खूबसूरत गाने को एंजॉय करते हैं नंबर 9 पर।

0: with a brand new design. 100.7.
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। घर से लेकर ऑफिस तक, बच्चों से लेकर बॉस तक, फैमिली से लेकर फैंटेसी तक, फैशन से लेकर फन तक, अगर आपको चाहिए इन चीजों की लेटेस्ट अपडेट, सो डोंट बी लेट। सुनिए नारी शक्ति को समर्पित कार्यक्रम शत्रुपा, सोमवार से गुरुवार दिन में 12 से 1, 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।
2: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

1969 तक आराधना के गानों ने पूरे देश में धूम मचा दी थी। इस फिल्म ने किशोर कुमार को रातों रात सुपरस्टार प्लेबैक सिंगर बना दिया था। तो आइए नंबर 7 पर इस खूबसूरत गाने को एंजॉय करते हैं, जो था नंबर 7 पर।

जी हम दोस्तों बात कर रहे हैं 1970 के उस खूबसूरत दशक के बारे में जब 10 गानों ने धूम मचा रखी थी और इसमें ज्यादातर स्क्रीन पर आप एंजॉय कर रहे थे राजेश खन्ना को और म्यूजिक एंजॉय कर रहे थे, यानी जो आवाज थी वो एंजॉय कर रहे थे किशोरदा की। अभी जिस गाने को आपने एंजॉय किया, अच्छा तो हम चलते हैं। थी आन मिलो सजना फिल्म से नंबर 8 पर इस गाने ने अपने पैरों को जमा कर रखा था, लेकिन दिसंबर 19

0: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RBLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: कोई एहसास जो महकता है लफ्जों में कभी, कतरा बन के पिघल जाता है आंखों से कभी। कहीं तन्हाइयों का शोर तो कभी मुलाकात की

0: गीतों में सिमटते अल्फाज सहलाते हैं दिल को, तो महक उठती है नगमों की महफिल रजनी गंधा। हर रात 10 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।
1: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी दोस्तों, 5:33 और 43 सेकेंड हो चुके हैं और इस वक्त आप अलका के साथ एंजॉय कर रहे हैं आज 1970 के दशक के वो 10 खूबसूरत गाने जिन्होंने उस वक्त धूम मचा रखी थी, धमाल मचा रखा था। तो अभी फिलहाल हम लोगों ने नंबर 6 तक के गानों को एंजॉय किया है और अब नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 पर एक बार फिर से थी दो रास्ते फिल्म और आवाज थी इस बार लता जी की और मोहम्मद रफी साहब की। तो आइए इस खूबसूरत गाने को एंजॉय करते हैं नंबर 5 पर।

जय दोस्तों, और धीरे धीरे नंबर 5 भी निकल गया और अब नंबर 4 की बारी आ गई है। नंबर 4 पर थी फिल्म आराधना, एक बहुत ही प्यारी फिल्म जिसे लोगों ने उस वक्त बहुत पसंद किया और उससे भी ज्यादा पसंद किया उस वक्त इस फिल्म के गानों को। ये वो दौर था जब किशोर कुमार और आरडी बर्मन के संगीत ने एक नया दौर शुरू कर दिया था। फिल्म की कहानी एक प्रेम कथा और एक बलिदान पर आधारित थी। इस फिल्म के गाने आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने उस दौर में यानी कि 1970s में थे। खूबसूरत गाने को आइए एंजॉय करते हैं नंबर 4 पर।

1970 के उस दौर में, उस दशक में फिल्म दो रास्ते और जीने की राह के गानों ने चार्ट्स पर महीनों तक कब्जा करके रखा था और नंबर 3 पर पहुंच चुका था जीने की राह का ये खूबसूरत सा गाना, आने से उसके आए बहार। तो आइए इस गाने को एंजॉय करते हैं जो उस वक्त था नंबर, जी हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने, नंबर 3 पर।

जी दोस्तों, नंबर दो पर थी एक बार फिर से आराधना फिल्म और इस बार था सुपर डुपर हिट सॉन्ग कोरा कागज था ये मन मेरा। और इस खूबसूरत आवाज को आप सुनेंगे किशोर और लता जी की आवाज में। इस खूबसूरत गाने को एंजॉय करने वाले हैं आने से उसके। जी हाँ, इस ट्रैक को आपने एंजॉय किया अभी नंबर दो पर और नंबर तीन पर, और नंबर दो पर अब आ गया है नंबर कोरा कागज था ये मन मेरा। तो आइए इस ट्रैक को एंजॉय करते हैं जिसमें आप एंजॉय करेंगे आवाज किशोरदा और लता दी की।

और अब बारी आती है नंबर एक की, जिस पर जगह बना ली थी 1969 में रिलीज हुई एक बेहद सफल और क्लासिक बॉलीवुड फैमिली ड्रामा फिल्म ने। ये फिल्म राजेश खन्ना के करियर की उन लगातार 15 हिट फिल्मों में से एक है जिसने उन्हें सुपरस्टार बनाया था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ और लता जी की आवाज के साथ नंबर एक पर था फिल्म दो रास्ते का ये खूबसूरत सा गाना। तो आइए इसे नंबर एक पर करते हैं एंजॉय, और फिलहाल आज के प्रोग्राम को इस सॉन्ग के साथ ही वाइंड अप करते हैं। टॉप 10 में फिर लेकर आऊंगी आपके लिए 10 खूबसूरत गाने किसी और एरा के। फिलहाल स्टे ट्यून 100.7 FM रेनबो और इस नंबर एक के गाने को चलिए एंजॉय करते हैं।

नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की लागत से कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना मंजूर की है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना का उद्देश्य लगभग 7,50,00,000 टन कोयले और लिग्नाइट के गैसीकरण के लिए सिनगैस और संबंधित उत्पादन के लिए नई कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत अनुमानित निवेश 3,00,000 करोड़ रुपए का होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज जनभवन में कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें विश्वविद्यालय की शैक्षणिक, प्रशासनिक, वित्तीय, शोध, छात्र कल्याण तथा कृषि प्रसार गतिविधियों की समीक्षा की गई। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के समग्र विकास के लिए एक प्रभावी एसओपी तैयार कर विकास कार्यों को समयबद्ध तथा व्यवस्थित रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्य की स्पष्ट कार्ययोजना बनाकर उसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए। मथुरा में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वृंदावन पहुंचकर ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस बीच उप मुख्यमंत्री गौग्राम परखंबी गए, जहां उन्होंने समिति के विभिन्न प्रकल्पों का लोकार्पण किया। श्री मौर्य ने कहा कि आने वाले समय में ये केंद्र प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र बनेगा। गोरखपुर के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में फरियादियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर ही समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। वहीं महोबा के जिलाधिकारी गजल भारद्वाज की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति, चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता और आगामी कार्ययोजनाओं के विस्तार से समीक्षा की गई। राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में बारिश और तेज आंधी की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज हुई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। उन्नाव, जौनपुर और संतकबीर नगर सहित कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग ने कल से प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में 16 और 17 मई को लू चलने की संभावना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: रहा है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तानें। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहां हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
3: मैं समय हूं और मैं हरीश विमानी हूं और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।
4: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
5: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
4: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

दिस ब्यूटीफुल ट्रैक आगाज हो गया है एक बार फिर से आपके साथ है आपके रेडियो साथी अलका और शामी अवध में होंगी ढेर सारी वो बातें जो आपके अपने सिटी आपके अपने शहर से जुड़ी हुई होंगी। तो चलिए इन धमाकेदार गानों को एंजॉय करते चलते हैं और साथ में शेयर करेंगे आपके साथ आपके ही शहर से जुड़ी हुई ढेर सारी गतिविधियां ढेर सारी बातें बहुत सारी अपडेट्स। सो स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो विद आरजे अलका।

तो चलिए भाई अगली अपडेट की तरफ आगे बढ़ते हैं, यानी कि आज के शामी वक्त की पहली अपडेट। तो भातखंडे यूनिवर्सिटी से आ गई है ये जानकारी। तो भातखंडे यूनिवर्सिटी यानी कि भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय के सत्र 2026-27 पीएचडी में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। यानी अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं वहां से और पीएचडी करना चाह रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है आपका और आप पीएचडी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। डेट आपको बता दे क्या है, 25 जून जो है वो इसकी डेट है। और नृत्य गायन और वादन के लिए आप समर्थ पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आपको जो वेबसाइट है वो बता देते हैं, www.bhatkhandeuniversityadm.samarth.edu.in पर आप जा सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि जो है वो 25 जून इसकी रखी गई है। एक बार फिर से आपको वेबसाइट बता दें, www.bhatkhandeuniversityadm.samarth.edu.in। ये पूरी इसकी वेबसाइट है, इस पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप पीएचडी के लिए सत्र 2026-27 के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं। और 25 जून की जो लास्ट डेट है वो अंतिम तिथि रखी गई है। तो फिलहाल अब वक्त हो गया है अगले गाने को एंजॉय करने का। ये सिलसिला तो अभी पूरे एक घंटे चलेगा आपके साथ शामी अवध में।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow,
3: धड़कन लखनऊ की।

तो चलिए अगली अपडेट का वक्त हो गया है। आपको बता दें ये जो अगली जानकारी है वो सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ी हुई है। सर्वोच्च न्यायालय में लोक अदालत 21 अगस्त से होगी और इस लोक अदालत का लाभ आप उठा सकते हैं क्योंकि लंबित वादों के निस्तारण के लिए 21 से 23 अगस्त तक लोक अदालत का आयोजन सर्वोच्च न्यायालय परिसर में किया जाएगा और अपने मामले को अगर आप इसका समाधान चाह रहे हैं तो समाधान समारोह में शामिल आप करना चाहते हैं तो www.sci.gov

covid.in पर गूगल फॉर्म लिंक पर आप जाकर 31 मई तक ये फॉर्म आप भर सकते हैं और 21 से 23 अगस्त तक ये लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। 21, 22 और 23 ये 3 दिन अदालत का आयोजन होगा। अभी इसमें काफी वक्त है, अगर आप इसमें अपने लंबित मामलों को निस्तारण चाह रहे हैं, जो भी आपके वादे हैं, तो उसमें आप समाधान समारोह में शामिल होने के लिए आपको एक प्रोसेस फॉलो करना होगा, जिसमें आपको इस साइट पर जाकर गूगल फॉर्म लिंक पर आपको फॉर्म भरना होगा। 31 मई इसकी लास्ट डेट है और वेबसाइट है www.sci.gov.in पर आप जाकर इसमें फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट जो डेट है वो 31 मई है।

डियर लिसनर्स, अगली जानकारी आपको दे देते हैं जो कि IRCTC यानी रेलवे से जुड़ी हुई है और एक बहुत खास जानकारी जिसके चलते बहुत सारी जो ट्रेन्स हैं उनका जो आवागमन है वो डिस्टर्ब्ड है, इस समय बाधित है। और अगर आप इन ट्रेनों में सफर करते आ रहे हैं, अक्सर करते हैं या करने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल ये जानकारी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ये बात नहीं पता चलेगी तो आपको इसका परिणाम भी फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि एक बहुत बड़ा अभी इस वक्त चारबाग स्टेशन पर कॉन्कोर्स निर्माण के कार्य के चलते 15 मई से 23 जून तक यानी कि ऑलमोस्ट एक महीने से भी ज्यादा समय लगेगा। इस प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 पर मेगा ब्लॉक रहेगा, यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 इस वक्त बंद रहेगा। और इसी वजह से कुछ ट्रेन जो इन प्लेटफॉर्म नंबर पर आती है इनमें फेरबदल किया गया। इस दौरान झांसी इंटरसिटी चारबाग नहीं आएगी और कानपुर सेंट्रल पर ही अपनी यात्रा को कंप्लीट करेगी, यानी कि झांसी से लखनऊ और लखनऊ से झांसी चलने वाली इंटरसिटी जो है उसमें चेंजेस किए गए हैं। इसमें अब ये झांसी इंटरसिटी जो है वो चारबाग स्टेशन तक नहीं आएगी, ये कानपुर पर ही अपनी यात्रा को कंप्लीट करेगी। और वहीं शाहजहांपुर और बालामो इंटरसिटी अब चारबाग के बजाय आलमनगर स्टेशन से चलेगी। ये जो ब्लॉक किया गया है उसकी वजह से मुजफ्फरपुर सुपरफास्ट, ओखा एक्सप्रेस और अयोध्या कैंट दिल्ली सहित 12 ट्रेनें इसमें शामिल हैं जिनके मार्ग में बदलाव किया गया है, जबकि 38 ट्रेनों के जो प्लेटफॉर्म नंबर उनको बदला गया है। 40 दिनों तक अभी यह काम चलने वाला है, तो उसकी वजह से इस ब्लॉक में प्लेटफॉर्म्स पर जो काम चल रहा है जिसकी वजह से ये थोड़े से फेरबदल किए गए हैं ट्रेनों के आवागमन में। तो अगर आप लगातार इन ट्रेनों से सफर करते आ रहे हैं या करते हैं या फिर करने वाले थे, तो यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी था कि यह फेरबदल इन ट्रेन के समय में किया गया है। फिलहाल खूबसूरत सा गाना एंजॉय करेंगे और वापस आएंगे आपके पास अगली अपडेट के साथ। स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो।

0: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: अरे दामाद जी, थोड़ी सब्जी और लीजिए।
2: अरे नहीं नहीं सासू माँ, वैसे आज खाना आपने बनाया है ना सासू माँ?
1: हाँ दामाद जी, मैंने बनाया है, बहुत अच्छा बना है ना?
2: नहीं नहीं, ऐसा नहीं है।
1: फिर?
2: अरे रोज खाने में काला बाल निकलता था, आज सफेद बाल निकला है।
1: क्या?
2: हाँ। वाह, कितनी लाजवाब डिशेस बनाती हो, इतनी रेसिपीज कहाँ से लाती हो?
3: शत्रुपा से।
1: अरे बहू, मेरा जोड़ों का दर्द तो बिल्कुल चला गया, कहाँ से लाई है नुस्खा?
3: शत्रुपा से माँ जी।
4: वाह, तेरा घर तो एकदम पिक्चर परफेक्ट है, कहाँ से लाती हो इतने नए नए आइडियाज?
3: शत्रुपा से।
5: घर, बच्चे, शॉपिंग, किचन, गार्डन, वार्डरोब, कैसे मैनेज कर लेती हो इतना सब?
3: शत्रुपा से।
6: हमारी होम मेकर्स की कंप्लीट मैगजीन शत्रुपा, मंडे टू थर्सडे दोपहर 12 बजे ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
7: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
8: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ।

और दोस्तों 6:38 हो चुके हैं और 2 सेकंड भी हो गए हैं। और चलिए अब कुछ पढ़ाई लिखाई की बातें हो जाती है। कुछ परीक्षा से जुड़ी हुई अपडेट आपको बता दें कि इस वक्त उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की सत्र जून 2024 की परीक्षाएं प्रदेश के 156 केंद्रों पर 14 मई से शुरू होंगी, यानी कि कल से ये परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। और इन केंद्रों में 4 जिला और केंद्रीय कारागार भी शामिल हैं। और इसके अलावा परीक्षा में 65,000 परीक्षार्थी शामिल होने वाले हैं। इन परीक्षाओं में 156 केंद्र होंगे और ये जानकारी जो है आप तक पहुंचानी है। परीक्षा जो है वो 3 जून तक चलने वाली है। कल से शुरू होकर 3 जून तक ये जो परीक्षाएं हैं वो चलेंगी और 3 पालियों में ये एग्जाम्स होंगे। आपको बता दें कि सुबह 7 से 10 पहली पाली होगी, दूसरी सुबह 11 से 2 बजे तक,

और शाम को 3 बजे से 6 बजे तक ये पाली होगी। 3 पालियों में एग्जाम्स लिए जाएंगे। 14 मई से शुरू होकर 3 जून तक जाएंगी ये परीक्षाएं, जो कि उत्तर प्रदेश राजर्षी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के सत्र जून सत्र की 2026 की ये परीक्षाएं हैं। तो दोस्तों अभी फिलहाल ये अपडेट का सिलसिला लगातार शाम अवध में जारी रहेगा। अब जो है वक्त हो गया है गाने को एंजॉय करने का। सो स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो।

0: नमस्कार, मैं हूँ भाग्यश्री और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।
1: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।
2: अपनी बच्ची की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
3: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
2: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
3: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444।
0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

6:49 हो चुके हैं दोस्तों, और अगली अपडेट आपको बता दें, भी एग्जाम से जुड़ी हुई है। फिलहाल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग गन्ना पर्यवेक्षक के 1182 पदों पर भर्ती होने वाली है, और अगर आप इस भर्ती में इंटरेस्टेड हैं तो 7 से 28 जुलाई तक आवेदन ये लेगा, और कुल पद जो है वो 1000 इन पदों पर सामान्य और 182 विशेष चयन के हैं। सो आवेदन जो है आपके वो संशोधन इनका 4 अगस्त तक किया जा सकेगा। आवेदन के लिए जो प्रारंभिक अर्हता आपकी परीक्षा है पीजीटी 2025 की, वो वाले पात्र माने जाएंगे जो भी अभ्यर्थी हैं। और आयोग के बारे में आपको ये भी बता दें कि आवेदन जो है वो आयोग की वेबसाइट पर आप ऑनलाइन कर सकते हैं, upssc.gov.in पर ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। पीईटी मेरिट में शॉर्टलिस्ट होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में ही शामिल करने का मौका दिया जाएगा, और बहुत ज्यादा शुल्क भी नहीं है, आपसे एक नॉमिनल शुल्क इसमें वसूला जा रहा है, ₹25 शुल्क इसका रखा गया, सभी वर्गों के लिए सामान्य शुल्क रखा गया है। तो अगर आप इस पद के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा गन्ना पर्यवेक्षक के जो 1182 पद है उन पर भर्ती होने वाली है, तो 7 से 28 जुलाई तक आवेदन इसमें लिए जा रहे हैं। अभी वक्त आपके पास काफी, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप बिल्कुल इसका लाभ उठा सकते हैं।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा। डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
3: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.
4: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई।
5: शाम होने को है।
4: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM रिंद।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: और फिलहाल इस गाने के साथ प्रोग्राम शामी अवध को वाइंड अप करते हैं, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, अभी एक घंटा पूरा आपके साथ रहूंगी। और अगला वाला जो पूरा 1 आवर है वो बहुत मजेदार होने वाला है, क्योंकि उसमें हम आपकी पसंद के गानों को आपको सुनवाएंगे। लेकिन कैसे वो गाने आपको हम बताने होंगे कॉल करके 2238852 या 2238845 पर। तो मिलाइए ये नंबर और हेलो FM एंजॉय कीजिए अलका के साथ 100.7 FM रेनबो पर।

नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और अब सुनिए प्रदेश की टॉप 10 न्यूज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ग्रेड ए धान के लिए 2,461 रुपए और अरहर दाल के लिए 8,450 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री मंत्रियों और अन्य लोगों के वाहनों के बड़े बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने का भी निर्देश दिया। इसी क्रम में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विधानसभा की संसदीय समितियों के पूर्व निर्धारित अध्यक्ष अध्ययन भ्रमण के सभी कार्यक्रमों को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में जनभवन में कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें विश्वविद्यालय की शैक्षणिक, प्रशासनिक, वित्तीय, शोध, छात्र कल्याण और कृषि प्रसार गतिविधियों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री 16 मई को गोरखपुर के पहले और प्रदेश के चौथे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने अधिकारियों के साथ आज परियोजना स्थल का निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए। 85% से ज्यादा विद्यार्थी पास, छात्राएं अव्वल रहीं। मुख्य मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार कल लखनऊ के पिपराघाट पर किया जाएगा। उनका आज सुबह निधन हो गया था। मुख्यमंत्री और अखिलेश यादव ने लखनऊ में उनके घर जाकर शोक संवेदना व्यक्त की।

इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7:20 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।

0: जो शामी अवध लेके आई थी ना, 4 बजे से हैं आप तो ड्यूटी?
1: हाँ जी, मैं 4 बजे से हूँ और शामी अवध आपने इंजॉय किया मेरे साथ,
0: और ग्रीन ट्रैक भी लेकर आई थी आप ही आई।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल,
0: शामी अवध और हेलो एफएम।
1: बिल्कुल।
0: और दीदी कैसे हुए आप?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ संतु जी, और बताइए आपके क्या हाल चाल है?
0: बस हम भी बढ़िया जी, आपके सारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं रेनबो के।
1: थैंक यू सो मच, और रेनबो आप सभी के लिए इतनी मेहनत करता है ताकि आप उन प्रोग्राम्स को एंजॉय कर सके।
0: जी,
1: और गाना कौन सा सुनेंगे संतु जी?
0: और सब बढ़िया है, आज मैंने गाना अच्छा सुन के रखा है दीदी।
1: हाँ हाँ बताइए कौन सा सुनेंगे?
0: ए, रंग पिक्चर का दीदी।
1: रंग पिक्चर का कौन सा सॉन्ग?
0: जितना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, इसमें दिव्या भारती है।
1: और किसको एंजॉय करवाना चाहते हैं ये ट्रैक अपने साथ साथ? नहीं नहीं, किसको डेडिकेट करना चाहते हैं?
0: सबसे पहले तो अलका दीदी आपको।
1: थैंक यू।
0: और एक कानपुर, कानपुर में है कि पूनम, उनका भी तो कई बार आता है एफएम पे।
1: हाँ।
0: और रायबरेली से एक तो जो कॉल करती है जो उनका रिंकी टिंकी उनको।
1: हाँ, हाँ, ओके।
0: और जो आपके आरजे हैं, और एक मोना दीदी है ना, मोना।
1: हाँ,
0: दीदी।
1: हाँ, हाँ।
0: और एक चंद्रकला दीदी को।
1: ओके।
0: और सभी को
1: थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए संतु जी, आपकी पसंद का।
0: हाँ हाँ आपसे एक रिक्वेस्ट है,
1: हाँ हाँ बताएं,
0: पूरा गाना सुनवाइएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप पूरा ट्रैक एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।

0: सो फ्रेंड्स, टाइम हो गया है हमारे अगले कॉलर से बात करने का, तो आइए बात करते हैं उनसे और उनकी पसंद के ट्रैक को करते हैं एंजॉय। पहले देखते हैं कौन है और कहां से इन्होंने हमें कॉल किया। हेलो।
1: हेलो, हाँ दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बताएं।
1: हम संतु बोल रहे हैं दीदी।
0: संतु जी कहां से बोल रहे हैं?
1: अच्छा दीदी, हम जान रहे हैं, आपने जब कॉल उठाया था दीदी, आपने कहा था लाइन पे बने गाने की आवाज आती है, अब रेडियो से जो रहा है ना आपने दीदी।
0: हाँ हाँ, आपसे हमारी लाइन पर बात ही हो रही है, डायरेक्टली आपकी आवाज इस वक्त रेडियो पर है।
1: गाना सुन रहे थे जो आप चला रखे थे।
0: ओके, तो आज आप अपनी पसंद का गाना बताइए, कौन सा सुनना चाहेंगे
1: आप? पहले तो मैं, आपका नाम अलका दीदी बात कर रही हूँ।
0: हाँ जी, मैं अलका बोल रही हूँ।
1: मैं पहचान लिया आप

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: सो फ्रेंड्स, 7:15 और 13 सेकंड हो चुके हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे करते हैं बात। हेलो।
4: हेलो,
3: हाँ जी, कौन बोल रही हैं?
4: जी मैम, रेसु तिवारी बोल रही हूँ, ग्राम पोस्ट, मेरे गांव का नाम है चिरुवा, मैं रहने वाली, मेरे गांव का नाम मैम चिरुवा, जिला लखनऊ, थाना बंथरा से बोल रही हूँ मैम।
3: बंथरा से बोल रही हैं रेशु?
4: जी जी जी। okay. आज मैम मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि आज मेरा दोपहर 11 बजे भी फोन लगा था, आज इतने टाइम भी लग गया।
3: ओके गुड। सो रेशु क्या करती हैं आप?
4: मैं हाउस वाइफ हूँ।
3: ओके रेशु, आज कौन सा गाना सुनेंगी?
4: मैं गाना सुनना चाहती हूँ, मुझे फिल्म का नाम नहीं मालूम है, मगर ये गाना चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। okay. आज मेरे पास का मतलब 12 साल पूरे हो गए हैं, 13वां साल लगेगा एक्सपायर हुए। okay, तो ये मैं गाना okay. सुनना चाहती हूँ।
3: सो सैड। तो ये बहुत खूबसूरत गाना जगजीत सिंह की आवाज में ट्रिब्यूट है आपकी।
4: हेलो मैम।
3: हाँ हाँ, किसको सुनवाना चाहती हैं? और इसके अलावा ट्रिब्यूट तो आपके फादर को है ही, लेकिन उसके अलावा किसको आप सुनाना चाहती हैं ट्रैक?
4: मैं सबकी, सभी सुनने वालों को डेडिकेट करना चाहती हूँ। और मैम आप मेरे बेटे से बात कर लीजिए।
3: हेलो
4: हेलो हेलो
3: हेलो।
4: जी मैम, मेरा एक बेटा है। हाँ, वो शैतान, उससे बात कर लीजिए आप थोड़ी सी।
3: शैतान है वो?
4: जी बहुत शैतान है वो।
3: अच्छा जी।
5: हेलो
3: हेलो।
5: जी मैम नमस्ते।
3: नमस्ते, प्यारे बेटे का क्या नाम है?
5: कार्तिक तिवारी।
3: कार्तिक?
5: यस मैम।
3: ओके सो कार्तिक, बहुत प्यारी आवाज है आपकी, किस स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं आप?
5: सीधा कानन पब्लिक स्कूल।
3: स्कूल का नाम तो आपने बता दिया, क्लास नहीं बताया, किस क्लास में पढ़ते हैं?
5: यूकेजी।
3: यूकेजी में, दैट्स वेरी गुड। सो अब तो छुट्टियां होने वाली है कार्तिक की, है ना? हेलो
4: हेलो।
3: हाँ जी। सो रेशु, आपका ट्रैक रहा आपकी रेडियो सेट पर, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।
4: थैंक यू मैम।

0: मकसद। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा। ग्रेड ए धान के लिए 2461 रुपए और अरहर दाल के लिए 8450 रुपए प्रति कुंतल होगी एमएसपी। वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटाया सुरक्षा काफिले का आकार। प्रदेश में भी ईंधन बचाने के विभिन्न उपायों पर जारी हुए दिशा निर्देश। सीबीएसई के 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित। 85% से ज्यादा विद्यार्थी पास, छात्राएं रही अव्वल। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। सीतापुर और कानपुर देहात में गिरे ओले। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तन्वीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के लिए किसानों को अनुमानित 2,60,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल की अधिकतम बढ़ोतरी सूर्यमुखी बीजों के लिए की गई है। ग्रेड ए धान के लिए न्यूनतम

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के लिए किसानों को अनुमानित 2,60,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल की अधिकतम बढ़ोतरी सूर्यमुखी बीजों के लिए की गई है। ग्रेड ए धान के लिए न्यूनतम

0: ईंधन की खपत कम करें और अनावश्यक सोने की खरीद न करें। उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री व मंत्रियों आदि की फ्लीट में तत्काल 50% की कमी की जाए। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इसी क्रम में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विधानसभा की संसदीय समितियों के पूर्व निर्धारित अध्ययन भ्रमण के समस्त कार्यक्रमों को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी पत्नी अपर्णा यादव भाजपा की सदस्य हैं और वर्तमान में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपर्णा यादव के घर जाकर प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी घर जाकर शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 मई को गोरखपुर में अंचल के पहले और प्रदेश के चौथे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को देखते हुए जिलाधिकारी दीपक मीणा ने संबंधित अधिकारियों के साथ आज परियोजना स्थल का निरीक्षण किया। एक रिपोर्ट।
2: निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कार्य में तेजी लाने और सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने पर जोर दिया। गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग पर स्थित ताल नदौर में यह इंटरनेशनल स्टेडियम 392.94 करोड़ रुपए की लागत से आकार लेगा। निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में 63.39 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष CBSE की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थीं। CBSE ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। मुख्य सचिव SP गोयल ने आज जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में चल रही स्वगणना प्रक्रिया की समीक्षा कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को अभियान में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि आम जनों के बीच व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए। दुग्ध उत्पादक कंपनी अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जो कल से पूरे देश में लागू हो जाएंगी। राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में बारिश और तेज आंधी की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। सीतापुर जिले में कई स्थानों पर ओले गिरे, कई जगहों पर पेड़ गिरने से विद्युत आपूर्ति बाधित हुई। वहीं कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। अमरोहा में भी दिन में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। कई स्थानों पर पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हुआ। हालांकि मौसम विभाग ने कल से प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में 16 और 17 मई को लू चलने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम

समर्थन मूल्य बढ़ा, ग्रेड ए धान के लिए 2,461 रुपए और अरहर दाल के लिए 8,450 रुपए प्रति कुंतल होगी एमएसपी। वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटाया सुरक्षा काफिले का आकार, प्रदेश में भी ईंधन बचाने के विभिन्न उपायों पर जारी हुए दिशा निर्देश। सीबीएसई के 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित, 85% से ज्यादा विद्यार्थी पास, छात्राएं रहीं अव्वल। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत, सीतापुर और कानपुर देहात में गिरे ओले। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हमारे प्यारे दोस्तों, हम लेकर आ रहे हैं आपके होठों पर सजने वाले सॉन्ग्स को,
2: जो होंगे आपकी मेल्स पर बेस्ड मेलोडियस सॉन्ग्स।
1: तो अपने फेवरेट सॉन्ग्स को सुनने के लिए आप शाम 4 से 5 बजे हमारे साथ रहिएगा आपकी पसंद के सफर पर।
3: मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो।
2: Only on 102.2 FM Rainbow, the musical heartbeat.
1: तो मेल करने के लिए हमारा मेल आईडी है airkansomedia@gmail.com। तो हमारे साथ सुनिए रेनबो कानपुर पर 4 से 5 आपकी पसंद प्रोग्राम।
4: उनके प्रोग्राम है, बहुत अच्छे लगते हैं। मां भी अभी आ रहे हैं।
5: नो डाउट सो ब्यूटीफुल ट्रैक। आइए साहिबा के साथ।
4: आसिफ भाई हैं, मोहम्मद फैज भाई हैं, वकील अहमद मंसूरी भाई हैं, बाबू अंसारी भाई हैं, जावेद अख्तर भाई हैं, तालिब अंसारी भाई हैं, और गुलशन से देखी आती है, सीमा परवीन अंसारी आती है, निशा अंसारी हैं, साजिया अंसारी हैं, रिंकी पिंकी, और सभी लोगों को सुनाना चाहते हैं।
5: सभी लोगों को। ओके, थैंक यू सो मच साहिबा कॉल करने के लिए।
4: थैंक यू।

0: जी हाँ दोस्तों, आज प्रोग्राम हेलो एफएम अलका के साथ एंजॉय कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ गए हैं, तो चलिए करते हैं उनसे बात और जानते हैं उनका नाम पता। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: हेलो हेलो।
0: हाँ जी, अपना नाम बताएं, कौन बोल रहे हैं?
1: हम जिला बहराइ ग्राम पोस्ट रेडियो के पुराने
0: शिवम बोल रहे हैं। ओके शिवम, बहुत बहुत वेलकम है प्रोग्राम में आपका।
1: जी दीदी जी, सबसे पहले नमस्कार।
0: नमस्ते जी शिवम, आज ये बताइए क्या है पसंद आपकी?
1: हाँ जी दीदी, और कैसे हैं आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ
1: जी दीदी। आज हमारी पसंद बन रही है, फिल्म का नाम है जिसने शुरुआत किया।
0: हाँ,
1: और गाना गुनगुना सकते हैं दीदी जी?
0: बिल्कुल सुना सकते हैं, आपकी पसंद की का गाना प्ले करने के लिए प्रोग्राम बना है। बताइए कौन सा सुनना है आपको, दिल ने फिर याद किया फिल्म का?
1: दीदी सबसे पहले डेडिकेट करना चाहेंगे
0: हाँ
1: रिंकी पिंकी बहन जी को।
0: ओके।
1: और अपने बड़े भाई सत्यनारायण गोपाल जी को, और समा परवीन अंसारी जी को, और गुलाबशाह अंसारी जी को, मोहम्मद फैज जी को, और सभी सुनने वालों को, और आपको भी दीदी गाने के बोल हैं। दिल में फिर लहराई फिर कोई छोट मोहब्बत की उभर आई है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शिवम। आपने इसका टाइटल ट्रैक आप सुनना चाह रहे हैं मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, तो आइए इस खूबसूरत गाने को आपके साथ एंजॉय करते हैं। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। हाँ जी,
1: गुड इवनिंग दीदी।
0: गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए शिवम।

0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: वेलकम फ्रेंड्स, 7:44 हो चुके हैं, कॉलर हमारे साथ हैं, चलिए उनसे करते हैं बात। हेलो। हेलो
5: जी, गुड इवनिंग।
4: गुड इवनिंग जी, कौन बोल रहे हैं?
5: जी मोहम्मद तालिब अंसारी, राजा कटरा बाराबंकी से बोल रहा हूँ।
4: तालिब, बहुत बहुत वेलकम है आपका। और तालिब ये बताइए, कैसे हैं आप?
5: जी बढ़िया है, ठीक है जी। तालिब नाम है मेरा।
4: हाँ जी, हाँ जी तालिब जी, सॉरी शायद बाय मिस्टेक आपका नाम थोड़ा सा गलत निकल गया होगा। आई नो कि आप तालिब बोल रहे हैं। और बताइए आज क्या सुनना चाहेंगे?
5: जी या हम राज मूवी का गीत सुनेंगे।
4: कौन सा?
5: मुझे तेरे जैसी लड़की मिल जाए क्या बात है, ये वाला गीत।
4: ओके, जनरली तालिब देखा गया है कि इस मूवी के जो और दूसरे ट्रैक है उनको लोगों ने बहुत पसंद किया।
5: जी
4: है ना, बहुत ज्यादा पसंद किया।
5: ये सॉन्ग तो काफी कम प्ले होता है,
4: बहुत कम प्ले होता है।
5: अभी जब प्ले होगा तो ये बहुत अच्छा गीत है।
4: ओके, तो चलिए आज आपके साथ मैं भी इस ट्रैक को एंजॉय करूंगी। किसको सुनवाना चाहते हैं?
5: जी तब तो आपको डेडिकेटेड है।
4: थैंक यू सो मच, थैंक यू
5: जी।
4: और बताइए,
5: आपने मेरी कॉल रिसीव की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और 45 मिनट से हम भी कॉल लगा रहे हैं, बैटरी मेरी थी तो मोबाइल के एकदम लो गई।
4: ओह माय गॉड,
5: खैर कॉल लग गई,
4: कोई बात नहीं।
5: कॉल लग जाती तो खुशी होती है, ये चीज है।
4: अब अपना मनपसंद ट्रैक आप इंजॉय करेंगे, बस अपने मोबाइल को चार्जिंग पर लगा दीजिएगा, चार्ज होता रहेगा।
5: जी बिल्कुल जी, ठीक है।
4: तो बताइए किसको डेडिकेट करना चाहते हैं?
5: जी आसिफ भाई हैं, और साबिर भाई और अकबर भाई जी, बस।
4: ओके, तो चलिए इस खूबसूरत गाने को एंजॉय करते हैं आपके साथ। थैंक यू सो मच तालिब। ओके, बाय बाय।

0: सो फ्रेंड्स, टाइम धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और कॉलर्स लाइन पर हैं जिनसे जल्दी से बात की जाए ताकि वो भी अपनी पसंद के गानों को एंजॉय कर सके। हेलो
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से। उमर जी, इस मौसम में जैसे अभी तो मौसमी हल्का मौसम चल रहा है तो इसमें कल कलिंदे, खरबूजा, ककड़ी है, खीरा है, इनका सेवन करना चाहिए क्योंकि गर्मी मौसम में ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। बच्चे अच्छी हैं तो उनको पानी रखना चाहिए, कहीं भी छत पे रखना चाहिए और पशु को ख्याल रखना चाहिए। कहीं भी पशु बांध आते हैं तो खेत आर में तो उनको तो उनको चारे पानी का ख्याल रखना चाहिए।
0: बिल्कुल, लेकिन आप बात बहुत अच्छी कर रहे हैं, मैं ये नहीं सुन पाई कि आपका नाम क्या है।
1: मेरा नाम सतीश कुमार,
0: सतीश बोल रहे
1: हैं।
0: सो सतीश, आज गाना कौन सा सुनेंगे?
1: आज मूवी का नाम, आज दिल लगाने बोला प्रिया प्रिया, वो आपके लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ। सुनिए।

0: थैंक यू।
1: और जो छबराम आएंगे मेरे घर से तो आवाज से जितने तो सुनने वाले सबको डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: ओके थैंक यू सो मच, और सभी श्रोताओं के साथ चलिए आप भी इंजॉय कीजिए अपनी पसंद के इस गाने को। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।

0: सो फ्रेंड्स, प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम हो चुका है। 7:55 हो चुके हैं। लास्ट कॉलर को लेने का भी वक्त हो गया है क्योंकि नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए रिचा बिल्कुल रेडी है। तो चलिए कॉलर से करते हैं बात कि कौन है इस वक्त लाइन पर। हेलो,
1: गुड इवनिंग मैम।
0: गुड इवनिंग जी, ये प्यारी सी आवाज किसकी है?
1: गुलाबसा सिद्दीकी की।
0: ओके गुलाबसा, कहाँ से कॉल कर रही हैं आप हमें?
2: हेलो
0: हेलो
1: हेलो मैम
0: जी, गुलाबसा कहाँ से कॉल कर रही हैं?
2: हेलो नमस्ते मैम।
0: हेलो
1: हेलो, संडीला से मैम बोल रहे हैं।
0: संडीला से बोल रहे हैं। ओके सो गुलाबसा, आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं जल्दी से बता दे ताकि आप इस बचे हुए समय में अपने ट्रैक को एंजॉय कर पाए।
1: जी जी मैम, फिल्म है ये दिल।
0: अच्छा, ये दिल का कौन सा गाना?
1: तेरा दिल भर तेरा साथी ले आएगा ढोल बराती।
0: वेरी गुड, किसको सुनवाना चाहती हैं?
1: सबसे पहले आपको।
0: थैंक यू सो मच।
1: अंसारी हैं, साजी अंसारी हैं, महक अंसारी हैं, निशा अंसारी हैं, ममता गौतम हैं, संडीला से, और जितने लोग सुन रहे हैं सबको।
0: ओके सो ये खूबसूरत सा गाना सभी के लिए जिनका आपने नाम लिया और आपके लिए भी खास तौर पे। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। थैंक यू। तो इस खूबसूरत गाने के साथ फिलहाल प्रोग्राम हेलो एफएम को वाइंड अप करते हैं। लेकर आऊंगी आपके लिए फिर किसी और दिन इसी प्रोग्राम को आपकी पसंद के गाने एंजॉय कराने के लिए। लेकिन फिलहाल रिचा बिल्कुल रेडी है नेक्स्ट प्रोग्राम में आप सभी के साथ एंजॉय कराने के लिए। और वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। वापस मुलाकात होगी। स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो। अलका को दीजिए इजाजत।

नमस्कार, रात के 8 बजे हैं। सुनिए मुख्य समाचार। ईरान, कजाकिस्तान, नाइजीरिया और उज्बेकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारी कल से शुरू हो रही ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इनमें ईरान की कानूनी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप विदेश मंत्री डॉ काजिम गरीबाबादी, कजाकिस्तान के उप विदेश मंत्री यरजान अशकबायेव, नाइजीरिया के वरिष्ठ राजनयिक राजदूत दुनोमा उमर अहमद और उज्बेकिस्तान के उप विदेश मंत्री अलोयेव जोराबोयेविच शामिल हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दुग्ध उत्पादक कंपनी अमूल ने दुग्ध की कीमतों में 2 रूपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है, जो कल से पूरे देशभर में लागू हो जाएगी। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के मुताबिक अमूल दूध के प्रमुख वेरिएंट और पैक पर कीमतें बढ़ाई गई हैं। मई 2025 के बाद पहली बार दूध के दाम बढ़ाए गए हैं। पशु आहार, पैकेजिंग और ईंधन की लागत बढ़ने के कारण ये फैसला लिया गया है। भारत शिक्षा एक्सपो 2026 का तीसरा संस्करण विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए शिक्षा मार्गदर्शन, करियर काउंसलिंग और

अकादमिक अवसरों की जानकारी का एक व्यापक मंच प्रदान करेगा। ये 3 दिवसीय आयोजन 14 से 16 मई तक इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जा रहा है। एडीएम प्रशासन मंगलेश दुबे ने बताया कि एक्सपो को भारत और विदेशों में उपलब्ध उच्च शिक्षा के अवसरों के बारे में स्पष्ट और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। IGRS शिकायतों के निस्तारण में पीलीभीत जनपद को प्रदेश की रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव मिश्रा ने सभी 17 थानों के प्रभारियों को प्रमाण पत्र देते हुए उन्हें भविष्य में भी शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता बनाए रखने को कहा। इटावा सफारी पार्क में पर्यटकों के लिए 2 AC बसें, नए लेपर्ड हाउस और ब्रीडिंग सेंटर को लॉयन सफारी से जोड़ने वाली टनल बनाई जाएगी। प्रमुख सचिव वी हिकाली झिमोमी ने कहा कि एक्सप्रेस वे पर साइनेज लगाकर पार्क का प्रचार बढ़ाया जाएगा। वहीं इटावा सफारी पार्क में अगस्त 2022 में जन्मा बब्बर शेर विश्वा पिछले 15 दिनों से बीमार है। आंखों में सूजन और बुखार के बाद IVRI बरेली से उसकी जांच करवाई गई है, इलाज जारी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
3: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
4: समझे जनाब यारी।
3: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
5: मुख्तसर इतना कि दो लफ्जों से बन जाता है दिल, और वसी इतना कि इसमें दो जहां के राज हैं। सुनते रहिए आप शार 100.7 FM रेनबो पर।

तो ये बात हमसे बेहतर और कौन समझेगा कि ना जाने किस घड़ी किस रोज आपसे मुलाकात हो जाए। इसीलिए दिलों के दरवाजों को हमेशा खोल कर रखते हैं कि आपकी आमद

हो और दिन मौसम मौका सब खूबसूरत हो जाए। नमस्कार आदाब, 100.7 एफएम रेनबो पर आप सभी खवातीनों हजरात का तहे दिल से खैर मकदम इस्तकबाल, स्वागत करती हूं मैं आपकी मेजबान रिचा महफिल आबशार में। वक्त हो चुका है उस महफिल का जहां इश्क और इबादत एक ही सांस में पिरोए जाते हैं, जहां बहता है आबशार गजल बनकर मोहब्बत का प्यार का झरना। वो इश्क आईना जहां हम और आप दोनों उतरते हैं उन जज्बातों के साथ। तो चलिए आज की रात हम रूह की गहराई में उतरेंगे और उन जज्बातों को याद करेंगे जिन्होंने कभी आपकी तन्हाई को खूबसूरत बना दिया हो, रफ्ता रफ्ता आपके दिलों में उतर कर। रात के 8:12 का वक्त आबशार में आपके साथ मैं आपकी मेजबान रिचा।

0: हस्ती का। यही तो मोहब्बत की खूबसूरती है ना, कि पहले आप फिर तुम और उसके बाद तू का उनवा हो जाते हैं, बिना किसी शिकवा, बिना किसी शिकायत, बिना किसी शिकन के। कहते हैं कि पत्थरों के सीने से जब कोई प्यास फूटती है तो वो आबशार बनती है, और जब रूह के वीराने से कोई पुकार निकलती है तो वो गजल बन जाती है। वो गजल जहाँ यादें बहती हैं बनकर आबशार गजलों का। इस बेहद रूहानी सफर में ये बेहद रूमानी गजल वापस आपके नाम।
1: हुँ? हुँ?

कहते हैं कि आबशार वो झरना है जो रुकना नहीं जानता। मोहब्बत भी तो बिल्कुल वैसी ही है ना, सदियों से बह रही है, कभी दर्द बनकर आंखों से तो कभी सुकून बनकर गजलों से। तेरी याद का आबशार मुझ में बहता है रात भर, तेरी याद का आबशार मुझ में बहता है रात भर, एक अनकहा सा इकरार मुझ में रहता है रात भर। ये जो गजलों की चाशनी फिजाओं में घुली है आज, ये जो गजलों की चाशनी फिजाओं में घुली है आज, ये तेरा ही तो प्यार है जो महकता है रात भर। रात के 8:22 का वक्त, आबशार आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर, आज आपकी मेजबान रचा के साथ।

सच है ये बात कि मोहब्बत की बात को बयां करने के लिए चांदनी रातें बहुत बड़ा सहारा बनती हैं। लोग कहते हैं कि मोहब्बत जुबान से बयां होती है, लेकिन मेरा मानना इससे कुछ अलग है। मोहब्बत लफ्जों के बीच की उस खामोशी में है जिससे सिर्फ गजल समझ सकती है। गजल जो रूह का इत्र है, जब ये महकती है तो फासले मिट जाते हैं और फिर उस महक से यादें जिंदा हो जाती हैं। शायर भी क्या खूब लिखते हैं कि कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबां होती है, कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबां होती है, ये वो हकीकत है जो आंखों से बयां होती है।

तभी तो कहती हूँ कि मोहब्बत खामोशी से अपना काम करती है, जो आपके लफ्ज नहीं कह पाते उन्हें ये मोहब्बत अपनी नजरों से बयां कर जाती है। कहते हैं कि मोहब्बत दुनिया का सबसे पाक सबसे खूबसूरत जज्बा है, जिसमें एक दिल दूसरे से जुड़ते हैं और हमेशा के लिए दूसरे के साथ रह जाते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम और आप एक दूसरे से हमेशा यूं ही जुड़े रहेंगे और मोहब्बत के सिलसिले ताउम्र ऐसे ही चलते रहेंगे। रात के 8:40 का वक्त हो चुका है, आबशार से आज के आबशार से आपकी ऋचा को दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ठीक 8:45 पर समाचार संध्या और वापस 9 हम हाजिर होंगे फिर से लेकर आपका फेवरेट शो पॉप टाइम। इसके लिए बस बने रहिए हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर।

0: की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किये।

0: सीबीआई इस मामले में शुरुआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
1: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
2: People to people connect.
0: श्री जॉर्ज ने बताया कि 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
2: The visit to the 4 European countries.
1: 4 यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
2: People to people connect.
0: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत, जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था, अब वापस लाई जा रही है।
3: ऐतिहासिक एंटिक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है, उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटिक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। 657 एंटिक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर

0: राज्य आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉ. शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
1: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
0: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95 रुपए और 70 पैसे पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
0: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet increases minimum support prices MSP of 14 kharif crops for marketing season 2026-27. Cabinet also gives nod for promotion of surface coal and lignite gasification projects worth 37,500 crore rupees. CBI arrests 5 persons in connection with NETUG 2026 paper leak case. Raids continue in several states. Prime Minister Narendra Modi reduces his convoy size, prompting BJP chief ministers and other leaders to adopt austerity measures. West Bengal government decides to hand over recruitment scam probes to CBI, lifts all interstate restrictions on the movement of essential products. And in weightlifting, India's Gyaneshwari Yadav bags a silver and bronze at Asian Senior Championships in Gandhinagar. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support price, MSP, of 14 kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the government has increased the MSP of kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. He said for the kharif season, the estimated payout to the farmers will be 2 lakh 60,000 crore rupees. He said an estimated over 824 lakh metric tons of crops will be procured during the season.
4: Today, a major decision was taken for farmers. For all kharif crop, the MSP has been fixed at cost plus 50% or even higher. With this decision, farmers will receive a total payout of 2 lakh 60,000 crore rupees. The annual kharif procurement for this year will be 824 lakh metric tons.
5: Kharif procurement hoga 824 lakh metric tons.
3: Mr. Vaishnav said the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesame. He said for grade A paddy, the MSP will be 2,461 rupees per quintal. For Jowar hybrid, it will be 4,023 rupees per quintal. For Bajra, the MSP will be 2,900 rupees. And for Tur, it will be 8,450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. Addressing media, Union Minister Ashwini Vaishnav said the scheme marks a major step towards accelerating India's coal and lignite gasification program.
4: India has nearly 400 billion tons of coal reserve. By making maximum use of this coal, we can convert it into gas and then use that gas in fertilizers and other sectors. This will help to reduce the LNG imports required for fertilizer production. An outlay of 37,500 crore rupees has been allocated for this scheme. The total investment in this project will be around 3 lakh crore rupees and projects will be set up to gasify 75 million tons of coal.
5: Coal ko isme gasify karne ke liye projects lagenge.
3: The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved Ahmedabad Sarkhej Dholera semi-high-speed double-line project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. The Union Minister said, as India's first semi-high-speed rail project, the project will serve as a pioneer project acting as a reference model for the phased expansion of semi-high-speed rail across the country. The project will be completed by 2030-31. The Union Cabinet has also approved upgradation and modernization of Nagpur private partner and a public-private partnership. GMR Nagpur International Airport Limited will take up the transformation of Nagpur's Dr. Babasaheb Ambedkar International Airport into a world-class facility. The phased development is envisaged to reach the ultimate capacity of handling 30 million passengers annually, positioning it as a key airport in central India. Prime Minister Narendra Modi has said the Union Cabinet's decision of approving an increase in the minimum support price MSP for kharif crops for the marketing season 2026-27 will ensure that crores of food providers in the country receive fair and profitable prices for their produce. In a social media to the lives of the farmers of the country.

जवाब तो आपका देना चाहिए कि ऐसा क्या है आपके अंदर कि जब आप आते हैं ना तो यहाँ आग लग जाती है रेनबो पे, जो है ना बड़े ये एकदम गर्मी से आ जाती है, लगता है कि हाँ कुछ बढ़िया होने वाला है, कुछ अच्छी चीजें होने वाली हैं आपके साथ। ये जो आपके ईमेल्स आते हैं यकीनन ये इनका ही कमाल है। 9:24 का वक्त हो चुका है, आपके ईमेल्स के साथ हम वापस जुड़ते हैं आपकी तरफ, क्योंकि बड़े सारे ईमेल आ गए, इनको भी पढ़ लें। अभी जो मेरे पास ईमेल आया है इस वक्त ये है गुलफ्सा सिद्दीकी का, और आपने लिखा है हमेशा की तरह बड़े प्यार के साथ, आपको गाने बड़े अच्छे लग रहे हैं, प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है। लिख रही है बारिश हुई थी और पत्थर यानी कि ओले भी गिरे हैं, और क्या क्या खाना खाकर प्रोग्राम को सुन रही हैं, बड़ा मजा आ रहा है। थैंक यू सो वेरी मच। आपके साथ जो है साहिबा अंसारी हैं, और साथ में क्या क्या नाम लिखे आपने, शमा परवीन है, और आपके मामा भी हैं साथ में सुन रहे हैं ना, ये सारे नाम आपने दिए हुए। चलिए बड़ी अच्छी बात है कि आप सब मिलकर मेरे साथ जुड़े हुए हैं और प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि आप सब साथ में रहें, आप साथ में रहते हैं तो फिर प्रोग्राम करने का मजा ही दूसरा होता है, एकदम अलग ही अंदाज हो जाता है उसका आपके साथ होने से। बाबू अंसारी जी भी आ चुके हैं और लिख रहे हैं कि कैसी हैं आप, तो हम मेरे ख्याल से हम ठीक ठाक हैं, और बाकी तो आप बताइए कि क्या कैसा साउंड कर रहे हैं इस वक्त हमें ना, आप बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। और आपने कहाँ से लिखा है, आपका ईमेल आया है मेरे पास से, और आपके साथ है नसीम अंसारी, मुन्ना अंसारी, बाबू अंसारी आप खुद हैं, कुलदीप गुप्ता, ये सारे लोग मिलकर मुझे सुन रहे हैं, और आपने हमें देवकली अहमदपुर बाजार बाराबंकी से आपका ईमेल भेजा है, प्रोग्राम आपको हन हनुआ लग रहा है। हम पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, बड़ा पास पास लिख दिया था ना, आपने क्या लिखा है कायदे से पढ़ ले, ऐसा ना हो कहीं कुछ गलत वलत बोल जाए तो फिर बाद में लो भाई अभी क्या ही पढ़ दिया हमने, ये भी हो जाएगा। अर्पित शर्मा जी हैं हमारे साथ, अर्पित शर्मा अनमोल, और लिख रहे हैं वाह क्या धमाकेदार आगाज हुआ है यूं कि दिल खुश हो गया है, शानदार म्यूजिक।

दमदार एंकरिंग का सुरीला संगम यूकी रात बन गई। वाह, अब यूकी पे आपने बात छेड़ी है तो हम कहना चाहते हैं यूकी हम ज्यादा बोलते तो नहीं है, लेकिन क्या करें, अब ये शो ऐसा है कि हमको बोलना पड़ जाता है, बिना बोले फिर काम चल नहीं पाता है ना। और फिर वो स्पीड भी आती है जब आप कहते हैं कि बुलेट ट्रेन हो गई, ना भागे तो कैसे काम चलेगा, आप खुद बताइए। इतने सारे ईमेल आपके होते हैं, छूट जाएंगे तो फिर आप ही आएंगे बाद में कहने के लिए अरे हमारा ईमेल नहीं पढ़ा आपने, जाइए हम आपसे नाराज हो गए। बट कोई बात नहीं, नाराजगी भी वही होती है जहां बड़ा सारा प्यार होता है, और इसमें कोई दोहराई नहीं है कि आपको हमसे बेइंतहा प्यार है, इसीलिए आप अपनी नाराजगी भी जाहिर कर देते हैं। और आपने हमें होडू राजस्थान से आपका ईमेल भेजा है। कैसा माहौल है राजस्थान का ये भी बताइए हमें, कैसा सुनाई पड़ रहा है वहां पर आपको, ये रेनबो आपका रेडियो ये भी बताइए हमको, तो बड़ा अच्छा लगेगा, हम भी तो जाने कि वहां का माहौल कैसा है। भाई यहाँ आसपास के इलाकों में तो बारिश हो रही है, कहीं कहीं देखिए ओले भी गिरे हैं, आपके यहाँ का माहौल कैसा है ये भी हमको बता दीजिए, जहां से भी आप हमें सुन रहे हैं, कहां से सुन रहे हैं, कैसा माहौल है, कैसा मौसम है, बिल्कुल बताइए। कोमल तिवारी आ गई, लिख रही है कि टोमेटो की चटनी की तरह गाने बज रहे हैं और सुनकर बहुत प्यारा लग रहा है, तहरी की तरह कंप्लीट भोजन परोस दिया है। अच्छा क्या बात है, तहरी का नाम ले लिया, मैं भूख लगाई अब, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा वक्त यहाँ बैठेंगे उसके बाद, आज तो खैर तहरी नहीं खाएंगे, वो क्या है ना कि आज वो एकादशी है अगर आप मानते हैं तो, इसलिए नहीं खाएंगे। बहरहाल आपने हमें लिखा है कैसरगंज बहराइच से, थैंक यू सो वेरी मच आपके ईमेल के लिए, ऐसे ही भेजा करें आप ईमेल और हमारा हौसला यूं ही बढ़ाते रहा करें, आपका ईमेल आएगा तो हौसलों में जान आएगी और फिर गाने आप तक पहुंचेंगे। राम राज जी का भी ईमेल आ गया, बड़ा प्यारा नाम है आपका, और आपने लिखा है श्री गणेशाय नमो, पॉप टाइम, जिला रायबरेली, गांव पहाड़ीपुर से, और राम राज, राजू भानु, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मिर्जा, इमरान बेग, रिजवान भाई सब है आपके साथ। और आपने लिखा है कि वहां बारिश, ओले, आंधी, तूफान बहुत ही आया है, लाइट नहीं आई है, अरे हमें सुन पा रहे हैं कि नहीं, सुन तो पा रहे होंगे तभी आपका ईमेल आया है। आपने लिखा है हमारी तरफ से आपको प्यार भरा धन्यवाद, नमस्कार, आपको भी धन्यवाद, और बस बने रहिए हमारे साथ, इतनी मुश्किलात के बावजूद भी आप मेरे साथ हैं, आंधी पानी तूफान बारिश के बाद भी, ये है, इसको कहते हैं ट्रू लव। तो बस ये प्यार यूं ही बनाए रखे हैं आप, और अच्छा लगता है हमें। वकील अहमद भी आ चुके हैं, आपने लिखा कि आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, बहुत शुक्रिया करम मेहरबानी नाचीस की आवाज़ को पसंद करने के लिए, हर बार कहती हूँ आप जब ये कह देते हैं तो अच्छा लगता है, पॉप टाइम अच्छा लग रहा है आपको, गाने अच्छे बज रहे हैं, बहुत तेज आंधी बारिश और पत्थर भी गिरे हैं, देखो ना सब तरफ यही हो रहा है, बस यही कहना है कि बिन मौसम बरसात है, मौसम का है तो यही मिजाज है, कब बदल जाए कोई नहीं जानता, बस ये कि अपना एहतियात आप बरतते रहिए। बाकी आपने हमें लिखा है कटका हथूरी जिला सीतापुर से, और आप तो के साथ नहीं, अल अतलाबू अली बिहार, साहिब अंसारी, साजिया अंसारी, परवीन, रिंकी, मिंकी, रिंकी पिंकी और गुलफशा सिद्दीकी भी हैं, महक अंसारी भी हैं आपके साथ, सब लोग हैं, सबसे कहिए एक जगह बैठे, बाहर आंधी पानी बारिश तूफान बहुत कुछ है तो ज्यादा बाहर ना जाएं, बढ़िया मौका है, माहौल है, चुपचाप बैठकर रेनबो को एंजॉय कीजिए, क्योंकि इससे बेहतर आपके लिए इस वक्त कुछ हो नहीं सकता, क्या कहते हैं, मानते हैं ना इस बात को। बस चलिए अगला गाना भेज रहे हैं, गाने को सुनिए, सुनते रहिए, जुड़े रहिए, बने रहिए, एंड यस गाना आपके रेडियो सेट पर। टाइम बता दूं 9:29 का वक्त हो चुका है, पॉप टाइम इस वक्त आप सुन रहे हैं आपके अपने 107 एफएम रेनबो पर, आपकी दोस्त आपकी आरजे रिचा के साथ, और आपको जहां आना है वो है FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com।

पता है कि देखो नाम थोड़ा बहुत गलत पड़ जाते हैं, लेकिन आप उसे सही कर देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुलत्सा वापस मेरे पास आई है और उन्होंने लिखा है कि भाई वो जो नाम थे ना उनको फिर से उन्होंने करेक्ट करके भेजा है। मतलब उन्होंने लिखा, हमने जिसको करेक्ट नहीं पढ़ा था वापस पढ़ने जा रहे हैं, और आपके साथ आपके मामा नहीं बल्कि आप सुन रही है ममता गौतम जी के साथ, और क्षमा परवीन है, निशा अंसारी है, और सब लोग साथ मिलकर मुझे सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुझे करेक्ट करने के लिए। ये तो सच्ची दोस्ती है ना, ये तो सच्ची यारी है। हम जहां गलत हो वहां आप हमें थाम लें और बता दें कि देखो भाई यहां गलत जा रहे हो, रुक जाओ, थम जाओ, फिर हम वहां गलतियां सुधार के फिर वैसा नहीं करेंगे, है ना। तो बहुत शुक्रिया इसके लिए, बहुत धन्यवाद हमें करेक्ट करने के लिए। विनीता मेरे साथ हैं और आपने हमें लिखा है बेली कला गोसाईगंज नवाबों के शहर लखनऊ से, प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप सुन रही हैं और लिख रही हैं, जिस दिन आप मेल फेस टू फेस, हम ना इसको वापस पढ़ेंगे, आपने जो बहुत पास पास लिख दिया ना, थोड़ा सा रुकेंगे थमेंगे, इसको दोबारा पढ़ेंगे फिर आप तक आएंगे, वरना फिर अभी आप बोलेंगे कि हाँ मैंने ये गलत पढ़ दिया, इसलिए हम ये चाहते नहीं है ना। और अगला ईमेल ले लेते हैं, वापस जब आएंगे लौटेंगे कुछ गानों के बाद, तब आपका ईमेल हम वापस आप तक पहुंचाएंगे। सुल्तान रजा आ चुके हैं हमारे साथ और उन्होंने लिखा है रॉकिंग रिचा। ये सबसे अच्छी लाइन होती है जो आप ये लिख देते हैं, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आपने हमें कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से आपका ईमेल भेजा, आपके साथ सुल्तान इकबाल रजा, जीशान रजा, अफजल रजा, मोनिश रजा, सादिक रजा और आपके मदर फादर मम्मी पापा हैं, और साथ में छोटा मान जो है वो भी छोटे बहुत आपके प्रोग्राम को पसंद सुन रहे हैं, प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लिख रहे हैं दोस्त ने पूछा क्या चल रहा है जिंदगी में, मैंने कहा बस कुछ नहीं खास, बड़ों का आशीर्वाद, पत्नी के ताने, दर्द भरे गाने, बाकी भगवान जाने। देखो दर्द भरे गाने तो नहीं भाई, इसको करेक्ट कर लीजिए आप, तो भगवान जाने वाली बात नहीं, दर्द भरे वाले जो गाने आपने लिखे इसको करेक्ट करिए, यहाँ लिखिए धमाकेदार गाने चल रहे हैं, फिर देखिएगा अगले जो आपने जिनको आपने ये बताई ना बातें, खुश हो जाएंगे वो कि वाह वाह चलो हम भी जाते हैं कहाँ पर ऐसे वाले गाने बज रहे हैं, चल के सुनते हैं। वैभव प्रकाश जी हैं हमारे साथ और सिंह नागपुर महाराष्ट्र से आपका ईमेल है और आपने लिखा है कि FM रेनबो सुनने वाले और ऊर्जा की स्रोत आरजे रिचा जी को वैभव प्रकाश सिंह का सादर नमस्कार। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो लिखा इसके लिए, बहुत शुक्रिया ऐसे इतने ऊर्जावान तरीके से हमें एड्रेस करने के लिए। आप लिख रहे हैं कि आज उन अपने गांव गंगोई जिला सीतापुर के उन सभी दोस्तों को याद करना चाहते हैं जो FM पर मेल या कॉल नहीं कर पाते। आप लिख रहे हैं हमारे बचपन के साथी राहुल के साथ क्रिकेट खेलना, रवि के साथ चूरन की गोली खाना, चोरी करना, और साथ में अमित दादा के साथ वीडियो खेलना, आपके दोस्त गगन के साथ खेत पर जाना चारा लाना, और मन्नू के साथ गन्ना चूसना, अनुराग अंकित के साथ आम तोड़ के खाना चोरी से, पिंशु छोटू के साथ आई स्पाई खेलना, सभी बहुत मिस करते हैं। आपको सच बताऊं ये सिर्फ आप मिस नहीं करते वैभव जी, हम में से बहुत सारे लोग मिस करते हैं, इनफैक्ट हम भी मिस करते हैं बचपन के दिन जब आई स्पाई खेला करते थे हम लोग, और उसके बाद जब टीप पड़ती थी पीछे और फिर बन के सबको ढूंढना पड़ता था, चोर बन के ढूंढना पड़ता था, ढूंढो ढूंढो ढूंढो ढूंढो कहाँ है सब लोग, तो वो बचपन के दिन वाकई बहुत खूबसूरत होते हैं और बस खुश नसीब है वो जो भी बचपन के दौर में है। अशोक कुमार जी का ईमेल है और आपने लिखा है रायपुर उडारा मितौली लखीमपुर खीरी से गाने आपको अच्छे लग रहे हैं, अजय राज बालीसर राज और गुड्डू राज है मेरे साथ, सभी आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, यानी कि प्रोग्राम को मिल करके सुन रहे हैं। अगला ईमेल किसने भेजा है भी देख लेते हैं। पूजा पाल जी का ईमेल है मेरे पास और लिख रही मिर्जापुर से, संडीला से हैं, नहीं साधना सीतापुर से हैं, और आप ड्यूटी पर हैं इस वक्त और प्रोग्राम सुन रही हैं, और आपके साथ दो लोग और हैं प्रोग्राम सुन रहे हैं, नाम क्या है उनके, सनी और वंदना आपकी बहन है, तो उन दोनों को मेरा गुड इवनिंग कहिए और आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है इसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए आप, फिर देखिए हमारी कोशिशें आपके साथ होने से ही पूरी होती हैं, आप होंगे तो पूरी हो जाएंगी। बाबू अंसारी वापस आ गए और लिख रहे हैं कि आपको कौन सुन रहा है, आपके साथ और कौन सुन रहा है, मुझे नाम कहाँ है उनका, वापस तो नाम बताइए कि आपके साथ और कौन सुन रहा है, आपने खाली ये लिखा। मोनू जी लिख रहे हैं कि शादी पार्टियों का दौर अभी खत्म हो गया है, घर पर है नहीं शॉप पर है, बैठ कर सुन रहे हैं और आपके साथ आपके दोस्त भी सुन रहे हैं, तो ठीक है सबसे कहिए सुनते रहें और एंजॉय करते रहें आपका शो पॉप टाइम जिसे इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर मेरे यानी आपके दोस्त रिचा के साथ। 9:40 का वक्त FM आकाशवाणी लखनऊ @redgmail.com, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आइए, इंतजार है आपका।

चाहे के लिए इतनी मिन्नतें करवा रही है भाई, जहाँ कहीं भी हैं, जिनको भी पुकार है वो आ जाइए, स्वीटी नाम से बुला रहे हैं। लेकिन अगर आप भी मुझे सुन रहे हैं तो आइए और उसके बाद जुड़िए, सुनिए आपका अपना शो जिसे आप पॉप टाइम कहते हैं, जहाँ पर एक के बाद एक गाने आप तक पहुँचाने की कोशिशों में हम लगे हुए हैं लगातार। आप बता रहे हैं कि अच्छे भी लग रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाबू अंसारी जी ने ईमेल किया और लिख रहे हैं हमारे साथ, फैज अंसारी भी है प्रोग्राम को सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपने बता दिया। आपने पूछा था आपसे कि किसका नाम बताना चाह रहे हैं, तो वापस आपका ईमेल आया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अरविंद कुमार दुबे जी भी आ चुके हैं और आपने हमें विलेज धर्मदेवा पोस्ट छतावा है ना, डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से आपका ईमेल भेजा है और लिख रहे हैं प्रोग्राम एकदम जमजमुआ लग रहा है। चलिए बड़ी अच्छी बात है, ये खननुआ था, ये जमजमुआ है, अच्छा लगता है सुन करके। आप लिख रहे हैं कि आज थोड़े दुखी हैं क्योंकि आंधी आने पर घर की पक्की, ओ बस यही तो समस्याएं हैं ना, क्योंकि जरूरी नहीं कि कोई चीज़ किसी के लिए बहुत अच्छी हो तो सबके लिए बहुत अच्छी हो। ये चीज़ें अपने साथ हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ले ही आती हैं जो मन को दुखी करता है, और लेकिन बस वही है कि हम और आप इसमें कुछ कर नहीं सकते सिवाय इसके कि बस ये उम्मीद करें कि आगे सब कुछ बेहतर होगा। बहरहाल आपने हमें ईमेल किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे मौसम ऐसे माहौल में भी आप ईमेल कर रहे हैं, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आपने हमें, आप लिख रहे हैं गोविंद, प्रतिमा, प्रतिष्ठा, तन्वी, दीपा, श्याम कुमारी आप सभी सुन रहे हैं मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, बहुत धन्यवाद आपके ईमेल के लिए। और अगला ईमेल जो मेरे पास आया, मनोज विश्वकर्मा जी ने भेजा है, लिख रहे हैं पॉप टाइम प्रस्तुत करने वाली मीठी सी आवाज को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

प्रोग्राम की प्रस्तुति आपको अच्छी लग रही है, आपका पूरा परिवार सुन रहा है, तो बहुत धन्यवाद। आप सब साथ बैठकर मुझे सुन रहे हैं, साथ बैठकर सुनने का जो है ना, एंजॉय करने का ये जो मजा है, ये कुछ और ही होता है। और कह रहे हैं रजनीगंधा तक साथ रहूंगा, हाँ ये हुई ना बात, आज बिल्कुल रहेगा हमारे साथ, क्योंकि आज आप तक पहुंचाने वाले हैं एक ऐसी खास शख्सियत को जिन्हें आप एक हास्य अभिनेता के तौर पर जानते हैं। पता है जिंदगी में रुलाना कई बार बहुत आसान होता है, लेकिन किसी को हंसाना ये बहुत मुश्किल है, और जब कोई ये काम करता है ना तो उसको याद करना बहुत जरूरी होता है। आज के रजनीकंधा में रहिएगा हमारे साथ जानने के लिए कि कौन है वो हस्ती, कौन है वो शख्सियत जिनको हम याद करेंगे आज के रजनीकंधा पे। छत्तीसगढ़ जिला बलौदा बाजार ग्राम ताराशिव से आपने आपका ईमेल भेजा, इसके लिए बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। जावेद अख्तर भी आ चुके हैं और लिख रहे हैं कि नारियल की जैसी कड़क आवाज और मोम की जैसा नर्म लहजा कार्यक्रम की जान हुआ करता है। आबशार कार्यक्रम में अंदाजे पेशकश के साथ गजलें आपके दिल में उतर गईं। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से आपने आपका ईमेल किया। शमशूल कमर राही बेगम रुखसार रकीबा शाहीन आपके साथ हैं, प्रोग्राम आपको अच्छा लगा, आपने ये लिखा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सुल्तान रजा जी वापस आ गए, क्या लिखा है आपने? अच्छा आपने वो ठीक कर दिया, लिख रहे हैं कि जिंदगी कोई पेन ड्राइव नहीं है, मनपसंद गाने चलाए जाए, जिंदगी तो रेडियो जैसी, कब कौन सा गाना बज जाए कुछ पता नहीं चलता, लेकिन एक बात तो तय है कि जब बजता है ना गाना तो सीधा दिल में उतर जाता है। तभी कहती हूँ कि रेडियो से जुड़े रहिए, यहाँ पर आपको ना अलग अलग मूड, अलग अलग जॉनर, अलग अलग तरीके के गाने सुनने को मिल जाएंगे, जो कभी आपके मन को भाएंगे तो कभी किसी के मन को भा जाएंगे। कभी कोई गमगीन गाने सुनना चाहता है तो वो यहाँ मिल जाते हैं, कभी कोई बहुत खुश होता है तो लगता है अरे रेडियो लगाओ आज कुछ बढ़िया सुना जाएगा, तो वो सारी चीजें यहाँ पूरी हो जाती हैं। इसीलिए कहते हैं कहीं मत जाइए, रेडियो जैसा कोई भी, रेनबो जैसा कोई नहीं है बेसिकली। रोशनी रावत आ गई, बहुत दिनों बाद आप आई हैं अपनी रोशनी बिखेरती हुई, यहाँ अंधेरा हो जाता है, जल्दी आ जाया करिए, आप आती हैं तो थोड़ी रोशनी हो जाती है। और आपने लिखा कि कैसी हैं आप, बहुत अच्छी हूँ, आपको आबशार प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, इसके लिए धन्यवाद, सारी गजलें आपकी पसंदीदा थी, बहुत धन्यवाद ये लिखने के लिए भी। 12:02 तक आप साथ रहने वाली हैं, गर्दा उड़ा रही हैं, ऐसा आपने लिखा है, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आपका नाम रोशनी रावत है मुझे पता है, ग्राम वापस बमना तहसील सफेपुर जिला उन्नाव चंडीगढ़ से आप प्रोग्राम सुन रही हैं। अगली लाइन में लिखा है, अर्ज किया है तो इरशाद, दिल कहता है कि उन्हें भी हमारी याद आती होगी। हाँ इसमें कोई दो राय है क्या, सच में आती है, दिल कहता है कि उन्हें भी हमारी याद आती होगी, हसरत है कि वो अपनी जुबान से, अरे ऐसी क्या बात है, हम आपको बहुत याद करते हैं। अगर ये मेरे लिए लिखा है तो हम आपको बहुत याद करते हैं, दिल से याद करते हैं, आप सबका ईमेल आता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, इसीलिए कहते हैं जल्दी जल्दी आ जाए करिए, आप देर से आती हैं थोड़ा अंधेरा रहता है, रोशनी आ जाती है तब मजा आता है। ब्रजेश सिंह जी आ चुके हैं, कार्यक्रम आपको झक्कास अच्छा लग रहा है, प्रेजेंटेशन हो सके तो कोई अच्छा, तो ये रिक्वेस्टेड तो नहीं है ब्रजेश जी, फिर किसी दिन बजा दूंगी। इटोहवा कैसरगंज जिला बहराइच से आपका ईमेल है। मोरू सेठ लिख रहे हैं, प्रोग्राम में जलवा बिखेर दिए आप, इमा कोनो शक नाही, चलिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आप दिल से सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, इसीलिए अपनी बात हम तक पहुंचा पा रहे हैं। एम के राज लखीमपुर खीरी से है और आप लिख रहे हैं, पॉप टाइम चलत बा हंसी, यहाँ हंसी के करंट मारेला, एक खाशे तोहरे खातिर, अच्छा पढ़ना पड़ेगा, हंसी की दुकान खोल देहल बाड़ा गुरु, गांव गांव में तुम्हारे नाव बोल बाड़ा गुरु, हर घंटा हर रोज लाइव सुनिला, अगिला बेर गांव भानपुर हरहुआ के नाम से एक ठो जोक मार दिया, माही कसम पूरा नाम पूरा नाच उठी, चलिए बहुत शुक्रिया धन्यवाद। एक तो आती कम है हमको, अब हमने पढ़ दिया आपने जो लिखा है, बट शुक्रिया धन्यवाद इसके लिए, आपने जो ईमेल भेजा और आपके साथ तो हार फैन दिखाया, मुनीश कुमार गांव भानपुर हरहुआ जिला लखीमपुर खीरी से हैं आप, शुक्रिया मुनीश जी आपके ईमेल के लिए, इतनी शिद्दत से आपने ईमेल लिखा। विनीत कुमार आ चुके हैं और आप अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से पॉप टाइम सुन रहे हैं, धमाकेदार प्रोग्राम आपको लग रहा है, गाने अच्छे बज रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। कुछ मित्र हैं, क्षमा परवीन अंसारी मस्जिद सीतापुर से, ओमकार सीतापुर से, सुरभि सीतापुर से, सीमा रावत राजाजीपुरम लखनऊ से, सुनील गोकुलपुर से, नवनीत मौर्य लखनऊ से, हरकेश लखनऊ से, ममता हरदोई से, संतोष कुमार मौर्य भी हैं और आपके साथ हम हैं यहाँ लखनऊ से, रेनबो से, आपके अपने 100.7 FM से। अगला गाना आपको दे रहे हैं, 9:50 का वक्त हो गया, गानों का सिलसिला चलता रहना चाहिए ना साथ साथ में, तो चलिए अब आप आते हैं तो जश्न तो होता ही है, जलसा होता ही है, तो चलिए इसी को ध्यान में रख के भी गाना बजा दिया, एंजॉय कीजिए। FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com आपके ईमेल्स का अभी भी मुझे इंतजार है, आ जाइए फटाफट, जो वक्त बचाए उसमें भी क्यों छूटा जाए, क्यों रहा जाए, है ना, क्यों छोड़ दिया जाए कुछ भी, आइए हमारे साथ।

0: ਮੈਂ ਪੁੰਨਿਆ ਤੇ ਜਲਸਾ ਲਗਾਇਆ ਸਦਾ ਚੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਚੰਦ ਮੁਖ ਮਹਿਮਾਨ
1: तो चलिए ये जलसा ये जश्न तो यूं ही चलता रहेगा। वक्त भी तेजी से भाग रहा है, 9:53 का वक्त हो चुका है। विनीता का ईमेल था जो हमने कहा था जब ढंग से पढ़ लेंगे तब वापस आपके साथ आएंगे। आप लिख रही हैं जिस दिन से आपसे मिले थे उस दिन से आज हमें वो सुन रही हैं, सुनकर उन्हें अच्छा लग रहा है, बड़ी तारीफों के पुल बांध रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ईमेल किया है इसके लिए हम आपका दिल से शुक्रिया करते हैं, और आगे भी आप अपना ईमेल हम तक ऐसे ही पहुंचाते रहें और इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। बेली कला गोसाईगंज लखनऊ नवाबों के शहर से आपका ईमेल है। और अगला ईमेल जो मेरे पास है कृष्ण कांत सिंह जी का भी ईमेल आ गया है, और आप लिख रहे हैं कि ऊर्जा के साथ आपका अच्छा सभी श्रोताओं को आपने प्यार भरा नमस्कार दिया। लिख रहे हैं गाने जबरदस्त बजते ही हैं और चटपटी गपशप का जो तड़का आप बीच बीच में पेश करती हैं वो लाजवाब लगता है। ऐसे ही स्वस्थ बेहतरीन मनोरंजन करती रहिए और सभी श्रोताओं को भरपूर और स्नेह आपको सदैव मिलता रहेगा। पूरी कोशिश है कृष्णकांत जी की आप सबकी उम्मीदों पर हम खरे उतर जाएं और जो आप चाहते हैं उसको आप तक किसी हद तक पहुंचा सकें। आपने हमें कैसरगंज बहराइच से आपका ईमेल भेजा, दिल से धन्यवाद आपका। इतना वक्त निकाल करके आप जो ईमेल लिखते हैं। तालिब अंसारी जी का भी ईमेल, अच्छा एकदम से एक और ईमेल आया। तालिब अंसारी जी कहाँ गए ये मिले। तालिब अंसारी जी का ईमेल है और आपने राजा कटरा बाराबंकी से आपका ईमेल लिखा है। लिख रहे हैं आप शार बहुत अच्छा लगा, बेस्ट लगा, बहुत अच्छी गजलें आपको लगी और सुनकर दिल जो है वो खुश हो गया। दुनिया क्या है, सुकून सी दुनिया में आ गया ऐसा लगा। लेकिन अब धमाल वाला प्रोग्राम एकदम एनर्जी से भरपूर प्रोग्राम चल रहा है। रेनबो में हर रंग है, ये इस बात का सबूत। तभी तो हम कहते हैं कि रेनबो जैसा कोई नहीं मिलेगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा। तभी तो लखनऊ का पहला एफएम स्टेशन है ये जो आपके दिलों में घर करता है। कहीं मत जाइए, आपको सारा सुकून जो कुछ भी आप चाहते हैं यहाँ बहुत अच्छे से बिना किसी मेहनत के आपको मिल जाता है ना। अगला ईमेल किसका है, देखो रजनीश पासवान जी का ईमेल आ चुका है। अ वेरी म्यूजिकल गुड इवनिंग, रिच रिच रिच, बहुत बड़े दिल की रिच बहन जी, प्रोग्राम बहुत अच्छा कर रही है, बहुत धन्यवाद इतने प्रेम के साथ आपका ईमेल हम तक भेजने के लिए। राजेश रजनीश पासवान जी हैं रामपुर सीतापुर से। आगे भी ईमेल आपका आता रहेगा ऐसी हम उम्मीद करते हैं। राही आपका ईमेल आ चुका है, दिख रहे हैं आई एम राही फ्रॉम लखनऊ, प्रोग्राम बहुत लाजवाब बिंदास लग रहा है, जोर जोर से झूम रहे हैं। अच्छा ऐसी क्या बात है, बस ये आप झूमते रहे जोर जोर से, हम भी ये चाहते हैं। मुझे लग रहा है पूरे शहर पूरे घर में तहलका मचा दूंगी। हाँ ये अच्छी बात है, बिल्कुल सबको बता दीजिए कि भैया रेनबो पर इस वक्त पॉप टाइम चल रहा है, कोई मुझे पकड़ लो नहीं तो हम गिर जाएंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। तभी तो असली मजा आएगा ना। प्रिंसी सिंह भी आ चुकी है आपकी ईमेल, आप लिख रही हैं कि प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लग रहा है, गाने पसंद आ रहे हैं, कुछ दोस्त दुनिया में बहुत अच्छे होते हैं, दोस्तों को समझते भी हैं समझाते भी हैं। रेडियो डाउन हो गया, दूसरा सुन रही हूँ, बस सुनते रहिए यही हम कहना चाहते हैं। जीशान खान है और आपको ईमेल प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत धन्यवाद इसके लिए। जल्दी जल्दी ईमेल आपके पढ़ डालती हूँ। वैभव प्रकाश वापस आ गए, बहुत उम्दा कलेक्शन लिख रहे हैं आप, आपको अच्छा लगा इसके लिए बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश कुमार जी का भी ईमेल है, छूट ना जाए, जब लिख रहे हैं जब उनके घर गए कहने दिल से दिल लगा लो, उनकी माँ ने खोला दरवाजा, हम घबरा कर बोले आंटी बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलवा लो। अच्छा किया, अच्छा काम कर दिया। फिर उसके बाद आपने जा करके, चाय बिना सुबह अधूरी लगती है, दोस्त बिना जिंदगी मजबूरी लगती है, खुश रहो हंसते रहो हमेशा, वरना शक्ल भी थोड़ी बुरी लगती है। देखो तभी तो हम आपको हर वक्त हंसते हुए मिलते हैं, हम नहीं चाहते कोई ये कहे कि तुम्हारी शक्ल बुरी लग रही है। 9:57 का वक्त हो चुका है, देखते देखते समय कैसे बीत गया। आप सभी वो सारे लोग जिन्होंने मुझे आज ईमेल किया, दिल से आपका हम धन्यवाद कहते हैं। कोई ईमेल छूट गया तो भाई माफी भी मांग लेते हैं, अक्सर आप कहते हैं हमारा ईमेल नहीं पढ़ा। ईमेल्स के बीच में एक और आ गया ईमेल, जल्दी से पढ़ देती हूँ। और आप लिख रहे हैं कि प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, आवाज बहुत पसंद आ रही है, नाम क्या है आपका, जनरल स्टडीज ये नाम से आया हुआ है। चलिए बहुत शुक्रिया, रायबरेली से आपका ईमेल है। अब बचा नहीं ज्यादा वक्त, हमको लेनी होगी आपसे इजाजत। अगला गाना आप तक भेज रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि आप इसको एंजॉय करेंगे, रेनबो नहीं पॉप टाइम को वाइंड अप करने की है बारी। लेकिन आपसे गुजारिश है कि रहिएगा हमारे साथ अगले घंटे भी। रजनीगंधा आज बहुत खास है, हास्य की दुनिया से किसी एक शख्सियत को जो कि आपके भारतीय सिने जगत में एक खासा मकाम रखते हैं उन्हें आप तक हम याद करेंगे, बर्थ एनिवर्सरी है उनकी, और सुनने के लिए आपका रहना हमारे साथ बेहद जरूरी है। फिलहाल आज के पॉप टाइम का आखिरी गाना और इसी के साथ आपकी दोस्त आपकी आरजे ऋचा को दीजिए आज के पॉप टाइम से इजाजत। आप कहीं मत जाइए, रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए।

नमस्कार, रात के 10 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत आह्वान के बाद वाराणसी में नगर निगम ने हर शनिवार को नो फ्यूल डे मनाने का निर्णय लिया है। महापौर अशोक कुमार तिवारी और पार्षद अब सप्ताह में एक दिन पेट्रोल डीजल वाहनों का उपयोग नहीं करेंगे। नगर निगम मुख्यालय में हुई बैठक में तय हुआ कि शनिवार को जनप्रतिनिधि पैदल, साइकिल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या इलेक्ट्रिक वाहनों से कार्यालय आएंगे। महापौर ने स्वयं प्रतिदिन घर से कार्यालय तक पैदल आने का संकल्प लिया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है, विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 ग्रामीण विकास को सहभागी, समावेशी और आवश्यकता आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके अंतर्गत विकास कार्य केवल केंद्र स्तर से निर्धारित नहीं होंगे, बल्कि ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की सक्रिय सहभागिता से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं का चयन और

धारण किया जाएगा। गांव की जरूरतों, प्राथमिकताओं और जनभागीदारी को केंद्र में रखकर तैयार की जाने वाली विकास योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामकारी बदलाव सुनिश्चित करेंगी। पीलीभीत जनपद में केंद्र सरकार के कार्यालय, रेलवे, डाक व दूरसंचार आदि में स्वगणना कराई गई। सभी ने अपने परिवारों की ऑनलाइन गणना की और इस अभियान के लिए लोगों को जागरूक करने का भी संकल्प लिया। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि जनपद में सभी अधिकारी, कर्मचारी व जनप्रतिनिधि अपनी व अपने परिवार की ऑनलाइन स्वगणना कर रहे हैं। लखनऊ कार्यालयों की स्वच्छता, सुव्यवस्था एवं अभिलेखों के रखरखाव को उत्तम करने के उद्देश्य हेतु पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल के मार्गदर्शन में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के सभागार में बाह्य ऑडिट प्रक्रिया प्रमाणन हेतु एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंडल कार्यालय के विभिन्न विभागों के मुख्य कार्यालय अधीक्षकों, निरीक्षकों, सीनियर सेक्शन इंजीनियर्स तथा रेलवे अधिकारियों ने भाग लिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 11 प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की, जिस पर अगला कार्यक्रम है रजनीगंधा।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब यारी।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
0: कोई एहसास जो महकता है लफ्जों में कभी, कतरा बन के पिघल जाता है आंखों से कभी, कहीं तन्हाइयों का शोर तो कभी मुलाकात की

गीतों में सिमटते अल्फाज सहलाते हैं दिल को, तो महक उठती है नगमों की महफिल रजनी गंधा। हर रात 10 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

0: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: तो रात के 10:05 का वक्त, रजनीगंधा के इस खूबसूरत सफर में वापस आप सभी का स्वागत। और आज का रजनीगंधा सिर्फ रजनीगंधा नहीं बल्कि एक विशेष प्रस्तुति है उन्हें याद करने की जिनकी है आज बर्थ अभिनय एनिवर्सरी। और जब हम बात करते हैं हास्य के क्षेत्र की तो भी एक बेहद आला दर्जा मकाम हासिल करने वाले हास्य अभिनेता कौन है, जिक्र करेंगे उनका आगे। फिलहाल ही गाना आप तक, आप सभी का स्वागत वापस आपके शो रजनीगंधा में।

अच्छा, अगर गौर से देखें ना तो हम सभी की जिंदगी कुरा कागज ही तो है। वो कुरा कागज जिस पर अपने सपनों को अपने तरीके से लिख सकते हैं हम, जो कई बार पूरे भी होते तो कई बार कुछ अधूरे भी रह जाते, लेकिन फिर भी हम उस कोरे कागज पर अपने सपनों की तस्वीर को उकेरना कभी बंद नहीं करते, इस आस में कि एक ना एक दिन तो सपने पूरे हो ही जाएंगे। बस अगर कुछ चाहिए होता है तो उन सपनों को पूरा करने का हौसला, उन सपनों को देखने की हिम्मत, और जिनके पास उन्हें पूरा करने का हौसला और हिम्मत होती है, नो डाउट वो कुछ कमाल ही करते हैं, कुछ अलग ही होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आज की जो शख्सियत है जिन्हें हम आज आप तक मिलवाने के लिए लेकर आए। रजनीगंधा में जब कुछ विशेष ऐसे कार्यक्रमों की बात होती है तो अक्सर हम आपको हीरो हीरोइंस, निर्माता, निर्देशक, गीतकार, संगीतकार, इन सब के बारे में आपसे बात करते हैं, लेकिन आज के रजनीगंधा में हाँ यकीनन वो हीरो नहीं हीरोइन नहीं, लेकिन भारतीय सिने जगत का जब फिल्मों की बात आती है तो एक ऐसा हिस्सा है जिनके बिना एक फिल्म पूरी नहीं होती, क्योंकि कहते हैं कि रुलाना जितना आसान है हंसाना उतना ही मुश्किल होता है, और जो इस कला में माहिर होता है उनकी बातें निराली होती है। ऐसी ही शख्सियत है आज हमारे साथ, कौन है बताऊंगी आपको अभी इस गीत के

बात, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सुने, ठहरे और उसके बाद उस मकाम तक पहुंचे जहां से आज की उस शख्सियत को लेकर हम आए हैं जिनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है। रात के 10:11 का वक्त, रजनीकंधा का सफर शुरू हो चुका है आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर आपकी दोस्त रजा के साथ। सपने देखे थे उन्होंने और उन सपनों को पूरा करने की राह में हिम्मत हौसला सब दिखाया।

0: वो सपने हैं क्या जो आपको जगा दें, जो आपको आपसे ये ना कहें कि भाई तुम जागो और उनको पूरा करने की राह में एकदम लगे रहो, क्योंकि तभी मैंने कहा कि सपने देखना तो हर कोई चाहता है, लेकिन उनको देखने की हिम्मत हौसला जिनके पास होता है वही कुछ अलग मकाम हासिल कर लेते हैं। और आज की जो कहानी है ना वो एक ऐसी ही शख्सियत की है। ये कहानी है गोरखपुर के एक फोटोग्राफर के फिल्मी दुनिया का नामी कॉमेडियन बनने की। एक ऐसा कॉमेडियन जिस पर उसके घर के नौकर के बोलने का स्टाइल इस कदर हावी हुआ कि ता उम्र हावी रहा, और तो और उस स्टाइल की वजह से भारतीय सिने जगत में उन्होंने अपना एक विशेष मकाम बनाया, एक विशेष जगह बनाई। कल्पना कीजिए, एक विशाल व्यक्तित्व, दमदार उपस्थिति, मगर इतनी मधुर और खींची हुई आवाज कि हर पंक्ति एक पंच लाइन में बदल जाती है, जिनकी डायलॉग डिलीवरी सिर्फ एक डायलॉग डिलीवरी नहीं बल्कि एक हाथ से राहत हुआ करती थी। हाँ, एक हाथ से राहत जो आपको बिना किसी ज्यादा मेहनत किए ही हंसा दिया करती थी। मतलब उनका फिल्मी पर्दे पर आना और उन्हें देखते ही आपके होठों पर मुस्कान खिल जाना, दर्शक दीर्घा में एक अलग ही गुदगुदाहट आ जाना। बॉलीवुड के स्वर्णिम युग के एक ऐसे अभिनेता जिनके स्लो मूव संवादों ने 200 से भी ज्यादा फिल्मों में अपने डॉल अपना जो सीन था उनको किया, उसे रोशन किया। मैं आपको उनका नाम बता दूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि मैं उनका नाम बताऊं उसके पहले आप खुद उनकी आवाज को सुनिए और अंदाजा लगाइए कि आज की ये शख्सियत कौन है। फिर तो हम है ना आपको बताने के लिए।
1: अरे क्यों आपकी आपको शोर मचा रहा है वो?
2: अरे भगवती, तुमने कुछ सुना?
1: मैंने तो कुछ भी नहीं।

0: तुम्हारे कान बचते होंगे।
1: अरे भगवंती, आज की रात बत्ती जला के सोना चाहिए, चोरों ने हमारा घर देख लिया है।
0: तो घर में बचा ही क्या है जो चोर लेने आएंगे। चलो भगवान का नाम लेके सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में
1: जाऊँ। नहीं नहीं, तुम कहीं ना जाओ, मुझे डर लगता है, मैं यही सोता हूँ। हे काली माई, हे दुर्गा माई।
0: अच्छा, चुप रहो दुर्गा माई, काली माई।
2: तो उम्मीद है, मुझे ऐसा लगता है कि आपने नो डाउट इस आवाज को पहचान लिया होगा। ये वो आवाज जो बहुत स्लो मूवमेंट्स के साथ लेकिन खींच कर अपने संवादों को बोलने का हुनर रखती थी। अगर जान लिया है तो प्लेटफॉर्म खुला है, आप मुझे बता भी सकते हैं। हालांकि मैं आपको खुद इस बात की तह तक ले जाने वाली हूं कि ये नाम कोई और नहीं बल्कि भारतीय सिने जगत की एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आपने और हमने तमाम अच्छे बुरे किरदारों में देखा। अक्सर हंसाते हुए तो कभी कभी संजीदा किरदारों में भी उन्होंने अपना जो अभिनय था उसको दिखाया और ये साबित किया कि वो एक ऐसे महान अभिनेता हैं जिनकी विशिष्ट धीमी गति से बोलने की शैली, टेडी बियर जैसी गोल मटोल भोली भाली शक्लो सूरत और उनकी बेजोड़ कॉमिक टाइमिंग से बॉलीवुड में एक अलग खास जगह उन्होंने बनाई। कोई और नहीं जिनको आपने पहचान लिया, हाँ, भारतीय सिने जगत के महान हास्य अभिनेता असित सेन साहब। बर्थ एनिवर्सरी है उनकी आज। तो जब एक ऐसी शख्सियत की जो हंसाने का मादा रखता हो दुनिया में लोगों को, उन्हें हम याद ना करें, ये कैसे हो सकता है। जब हीरो हीरोइन निर्माता निर्देशक गीतकार संगीतकार सबको हम आप तक पहुंचाते हैं तो वो शख्सियत जो बहुत छोटी देर के लिए पर्दे पर आती थी लेकिन बहुत प्रभावशाली तरीके से अपनी उपस्थिति को दर्ज करती थी, वही प्यारी भोली सूरत जिसे हम असित सेन साहब कहते हैं। तो आज का रजनीगंधा उन्हीं के नाम, आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर। मैं आपकी दोस्त, आपके रचा।

0: खफा खफा से
1: हाय मर जाऊं।
0: हम भी थे एक नजर के प्यासे,
1: क्यों नहीं
0: दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आराम।
1: कौन है वो दिलवा, कहो ना हमसे।
2: तो ये दिलवा कोई और नहीं बल्कि आपके हमारे दिलों को गुदगुनाने वाले असीस सेन साहब, जिन्होंने ऐसा मकाम चलाया हास्य किरदारों का कि जिसे आज तक भी कोई उनकी जगह कोई ले नहीं पाया, उसे कोई भर नहीं पाया। आज ही के दिन 13 मई 1917 को गोरखपुर के बंगाली परिवार में उनका जन्म हुआ। रहने वाला जो था परिवार वो बंगाल का था, लेकिन कहते हैं कि रोजगार के सिलसिले में उनका परिवार पश्चिम बंगाल के जिला वर्धमान से आकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बसा था। असीस सेन साहब के पिता कभी रेडियो, कभी ग्रामोफोन की दुकान, तो कभी बिजली के सामान की दुकान चलाए करते थे। और कहते हैं कि 7 बच्चों के परिवार में पले बड़े असीस सेन साहब की अपने पिता की दुकान चलाने से अलग ख्वाहिश थी। मतलब जैसे परिवार में पिता चाहते हैं, सभी के चाहते हैं कि भाई उनका बेटा या जो भी हो वो अगर उनका कोई बिजनेस है तो वो उसमें उनका साथ दे, उसे चलाए, तो ऐसे ही उनके पिता भी कुछ यूं ही चाहते थे। लेकिन उनकी ख्वाहिश पिता के व्यवसाय को चलाने से कुछ अलग थी। असीस सेन साहब को बचपन से फोटोग्राफी का बेहद शौक था, जो आगे चलकर उनके सिनेमाई करियर का आधार भी बना, ये आपको आगे पता चलेगा। अभिनय का सपना देखने वाले अपने कई समकालीनों के विपरीत असीस सेन साहब का पहला प्यार फोटोग्राफी था, लिहाजा कलकत्ता के न्यू थिएटर्स में जाकर डायरेक्टर नितिन बोस से फिल्म मेकिंग सीखना चाहते थे वो। लेकिन समस्या ये कि घर परिवार को कौन समझाए, पिता चाहते थे कि जो व्यवसाय है घर का उसको संभालें, यहीं रम जाएं, यहीं रहकर कुछ बेहतर करें। लेकिन उनकी ख्वाहिश, उनका जो पहला प्यार था वो थी फोटोग्राफी, तो उसी क्षेत्र में कुछ करना चाहते थे, बढ़ना चाहते थे। जद्दोजहद गहरी थी, क्योंकि एक तरफ परिवार की पुकार तो दूसरी तरफ दिल की पुकार, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा था। कैसे किसकी पुकार को उन्होंने सुना और कैसे वो कारवां आगे बढ़ा, वहां तक पहुंचा जहां से वो हास्य अभिनेता के तौर पर हमारे आपके सबके साथ जुड़े, सब बताएंगे आपको। बस इसके लिए आपको यहीं बने रहना पड़ेगा आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर आज के रजनीगंधा में।

बस ऐसे ही दिल की पुकार को सुनते हुए आगे बढ़ना चाह रहे थे वो, और इस मुकाम को आगे तक ले जाना चाहते थे। कहते हैं कि जब 10वीं पास हुए तो माँ चाहती थी कि उनकी शादी करवा दी जाए, पिता चाहते थे कि व्यवसाय को संभाल लें, और इधर माँ चाहती थी कि जल्दी शादी हो जाए क्योंकि बहुत बीमार रहा करती थी माँ। तो उनका मानना ये था कि उनके रहते अगर बेटे की शादी हो जाएगी, घर बस जाएगी, सामने देख लूंगी तो ज्यादा अच्छा होगा, जैसा कि हर माँ बाप की कभी किसी विषम परिस्थितियों में होती है। और उनकी इस इच्छा को दबाव दादी ने भी दे दिया। दादी का भी ये कहना था कि नई शादी करवा दी जाए तो सब चीजें ठीक रहेंगी, यहीं रहेगा, अगर जो पढ़ाई में मन नहीं भी लग रहा है तो यहां रहकर अपनी गृहस्थी संभालेगा, यहीं रम जाएगा। लेकिन असीत सेन साहब ये नहीं चाहते थे। कारण एक तो फोटोग्राफी से पहला प्यार, दूसरा ये कि कम उम्र में शादी करने का कोई अभी मन भी नहीं था, इसलिए एक ऐसे मौके की तलाश में थे जहां से वो निकल सके, वहां पहुंच सके जहां उनके सपनों की दुनिया हो। और कहते हैं इस मौके को पूरा करने का वो वक्त भी आ गया जब एक रिश्तेदार की शादी के सिलसिले में उन्हें कलकत्ता जाने का मौका मिला। और बस मौका जैसे ही मिला उन्होंने उस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए घर वालों से ये बहाना बना दिया कि वो कलकत्ता जाकर वहां रहकर बीकॉम की पढ़ाई करना चाहते हैं। अब जब पढ़ाई का मसला सामने आ गया तो जाहिर सी बात है घर वालों को वहां झुकना ही पड़ा। कहते हैं कि ऐसे सेन साहब के घर वालों ने उन्हें कलकत्ता में रहकर पढ़ने की छूट दे दी थी, हालांकि इस बात से बिल्कुल बेखबर बेअनजान होकर कि उनकी प्लानिंग क्या है। घर से झूठ बोलकर कलकत्ता आ गए थे वो कि यहाँ रहकर पढ़ाई करेंगे, जबकि प्लानिंग में तो ये था कि कलकत्ता के मशहूर न्यू थिएटर्स में काम करेंगे और फिर नितिन बोस साहब के सानिध्य में रहकर, उनके अंडर में रहकर फिल्म मेकिंग के गुर सीखेंगे। लिहाजा पढ़ाई तो कहने भर को रहकर एक किनारे हो गई और फिल्म मेकिंग के गुर सीखने का जो सुरूर था वो इतना रहा कि थिएटर से भी जुड़ गए। कलकत्ता में ही पहली दफा कहते हैं असीत सेन साहब ने स्टेज पर एक्टिंग की, क्योंकि अंदर से वो एक कीड़ा तो था ही ना कि उस दौर में जाना है जहां वो कैमरामैन बने, फोटोग्राफी करें और थोड़ा सा एक्टिंग का गुर अंदर था ही तो उसको भी करें। लिहाजा कलकत्ता के थिएटर जगत में इनका जो नाम था वो भी होने लगा, चर्चे होने लगे, लोग जानने लगे, जिसके चलते लगने लगा था उन्हें कि वो जो चाहते हैं ये वही मंजिल है जिसे वो हासिल करना चाहते हैं, ये वो प्यार है जो उनकी जिंदगी में आया है, जिसका उन्हें शिद्दत से इंतजार था। कैसे अपने प्यार को उन्होंने पाया, कैसे पहुंचे अपनी मंजिल तक, आगे सारी कहानी आप तक होगी। फिलहाल 10:29 का वक्त, रजनीगंधा आपके अपने 107.7 FM रेनबो पर।

जिंदगी में सब कुछ ऐसे बहार की तरीके से लग रहा था। पिता ने गोरखपुर बुलवा लिया था वापस कलकत्ता से कमिश्नर साहब के तबादले की विदाई की समारोह की तस्वीरें खींचने के लिए, और कहते हैं कि वहां तस्वीरें इतनी पसंद आई कि उससे मुतासिर होकर उन्होंने 1932 में अपनी गोरखपुर में ही फोटोग्राफी की दुकान खोल दी और नाम रख दिया था सेन स्टूडियो, सेन फोटो स्टूडियो। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, उनका स्टूडियो बहुत दिन दुनी रात चौकनी तरक्की के साथ था। मगर कहते हैं कि हम जो अक्सर सोचे वैसा हमेशा पूरा हो ऐसा होता नहीं। दुकान खुले हुए कुछ ही साल हुए थे कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। ये वो दौर था जब फोटोग्राफी का सारा सामान इंग्लैंड से भारत आया करता था, इसलिए जब युद्ध छिड़ा तो सामान की आवाजाही भी बुरी तरीके से प्रभावित हुई। इतना प्रभाव पड़ा कि सेन साहब का जो फोटो स्टूडियो था वो भी संकट में आ गया। फोटो स्टूडियो बंद होने के कगार पर पहुंचा तो असित सेन साहब को रोजी रोटी की चिंता भी सताने लगी। समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर जिंदगी उनसे चाहती क्या है, क्या ऐसा है जो वो करना चाहते हैं लेकिन फिर भी उसके बीच में इतनी तमाम सारी अड़चनें आ रही हैं। कहते हैं कि रोजी रोटी का संकट गहराया तो मन में सैकड़ों तूफान भी उठने लगे कि क्या और कैसे

0: से किया जाए, क्योंकि कलकत्ता में भी जो कुछ मकाम हासिल किया था उसे पीछे छोड़कर विराम लगाकर गोरखपुर में एक स्टूडियो खोला था, ये सोचकर कि अच्छा काम करके अच्छा पैसा और नाम सब कमाया जाएगा, यही रह जाएंगे, पिता की जो सोच थी उसको भी पूरा करेंगे और अपने फोटोग्राफी का जो शौक है उसको भी निभाएंगे। लेकिन नियति के चक्र ने सब उलट दिया। पर इसी सोच विचार और जद्दोजहद के चलते कहते हैं बंबई जा पहुंचे वापस, जहां उन्हें एक फिल्म कंपनी में स्टिल फोटोग्राफी का काम भी मिल गया। नए काम में असित साहब रम भी गए थे, लेकिन ईश्वर को जैसे अभी उनके और इम्तिहान लेने बाकी थे, समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी आखिर उनसे चाहती क्या है।
1: कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाएं।

सवाल उनको बार बार अंदर तक कुरेद रहा था कि आखिर वो जो सोच रहे हैं चीजें वैसे क्यों नहीं हो रही हैं। एक तरफ तो रास्ता दिखता है कि हाँ जो उन्होंने सोचा है वो मंजिल उनको मिल जाएगी, कि तभी कुछ ऐसा होता है कि आकर कोई चीज ऐसी खड़ी होती है सामने जो उनके बने बनाए सपने को एक ही हवा के झोंके से ढेर कर देती है। नहीं समझ पा रहे थे। कई सारे इम्तिहानों के बीच में जब वो अपने घर से कलकत्ता से बंबई पहुंच गए थे, जहां उन्हें वापस काम मिला स्टिल फोटोग्राफी का, रम भी गए थे वहां पर, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि वापस ये लगा कि शायद अब फिर कुछ नया, कुछ आगे कुछ ऐसा आना है जिसको सोचकर कई बार मन भी घबराता है। कहते हैं कि तभी घर से उनको तार मिला कि माँ बीमार हैं, घर आ जाओ। असित सेन साहब तुरंत अपना सारा सामान उठाकर कहते हैं मुंबई से गोरखपुर के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचे तो माँ बीमार थी। खबर मिली थी कि माँ की बीमारी की, लेकिन उससे पहले दादी चल बसी। दादी के निधन के कुछ समय बाद, चूंकि माँ बीमार भी थी और सदमे में भी थी, जिसकी वजह से उनका भी निधन हो गया। 3 महीने के अंदर ही घर में हुई 2 मौतों से असित सेन साहब पूरी तरह टूट गए थे। इतना कि ना अब उनसे गोरखपुर में रहा जा रहा था और ना ही मुंबई जाकर दोबारा काम करने की हिम्मत जुटा पा रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें, कैसे अपनी जिंदगी की जो जद्दोजहद है उसको पूरा करें, फिर किस तरीके से उस मकाम तक पहुंचे जहां से हास्य अभिनेता हमें आपको मिला। बताएंगे आपको इस गीत के बाद। फिलहाल ये गाना आप तक।

होता है मैं से कई बार बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा कि हम समझ नहीं पाते कि आखिर जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है और क्या हो रहा है, जिंदगी आपसे क्या चाहती है नहीं समझ पाते आप, दर दर भटकना और फिर उसके बावजूद हिम्मत और हौसले को हार जाना, अक्सर हम में से कई सारे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन ये असद सेन साहब थे जो इतनी मुश्किलात इतनी जद्दोजहद के बावजूद भी कहते हैं उन्होंने अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ा, उसे नहीं खोया। एक दिन उन्होंने अपना दिल पक्का किया और हिम्मत जुटाते हुए वापस कलकत्ता की तरफ रवाना हो गए और कहा जाता है कि ये फैसला उनकी जिंदगी का निर्णायक मोड़ भी साबित हुआ। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया था कि जब गोरखपुर से कलकत्ता पहुंचे तो वहां जाकर उनकी मुलाकात उनके दोस्त कृष्णकांत से हुई, जो कि उस वक्त फिल्म बन फूल में कानन बाला के साथ काम कर रहे थे। और कृष्णकांत साहब ने उनकी मुलाकात एक्ट्रेस सुमित्रा देवी और उनके पति देव मुखर्जी से करवाई और ऐसा माना जाता है कि दोनों से ये जान पहचान आगे उनके बहुत काम आई। उन्हीं की बदौलत उनकी मुलाकात फिल्म मेकर बिमल रॉय साहब से हुई, जो कि तब तक अपनी पहली बंगाली फिल्म उदयर पाथे बना चुके थे और अब हिंदी में बनाने की तैयारी कर रहे थे। मुश्किल ये थी कि बांग्ला भाषी थे वो, हिंदी का ज्ञान उन्हें नहीं था और उस फिल्म को हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जिसकी हिंदी अच्छी हो, जो अच्छी तरीके से हिंदी का जानकार हो। ये जो मोड़ था, ये जो मौका था, असित सेन साहब के लिए कमाल का होने वाला था, क्योंकि ऐसा माना जाता रहा कि भले ही वो बंगाली परिवार से थे लेकिन चूंकि जन्म गोरखपुर में हुआ था, पले बड़े वहां थे, तो इस कारण उनकी हिंदी बहुत अच्छी थी, जिसके चलते बिमल रॉय साहब ने उन्हें अपना तीसरा सहायक बना लिया। अब तीसरा इसलिए कह रही हूं आपसे क्योंकि इसके पहले दो असिस्टेंट थे उनके पास, लेकिन बात वही थी कि हिंदी के लिए कोई चाहिए था तो वो नहीं था। वो तलाश उनकी खत्म हुई, बिमल रॉय साहब की खत्म हुई असित सेन साहब के पास आकर, और अगर दूसरे अर्थों में कहें तो असित सेन साहब को की भी जो तलाश थी वो बिमल रॉय साहब के साथ आकर कहीं खत्म हुई, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में दोनों ने एक लंबा जो था कोलेबरेशन साथ में किया, कई सारी फिल्में की जो सराही भी गई, पसंद भी की गई। अच्छा, जब उन्हें असिस्टेंट बनाया तो उस बीच कुछ छोटे मोटे रोल भी वो थिएटर में किया करते थे और ये बात बिमल रॉय साहब जानते थे। जब फिल्म उदयर पाथे का हिंदी वर्जन बन के आया हमराही नाम से, तो कहते हैं कि इस फिल्म में उन्होंने असित सेन साहब को एक छोटा सा रोल दे दिया कि तुम इस रोल को प्ले करो। हालांकि रोल बहुत छोटा था लेकिन पहली फिल्म के तौर पर वो शुमार हो गया। असित सेन साहब मेहनती थे, ये बात तो बिमल रॉय साहब को बताई थी और फिल्म में उनका जौहर वो देख ही चुके थे, खासा मुतासिर थे उनसे। और उसका नतीजा ये हुआ कि अभी जब उन्होंने तीसरे असिस्टेंट के तौर पर उनको रखा था, देखते ही देखते वो उनके दूसरे और फिर पहले असिस्टेंट के तौर पर शुमार हो गए। अब बिमल रॉय साहब की तलाश यहाँ खत्म हुई थी तो वहीं असित सेन साहब को भी ये लगने लगा था कि जो ख्याल उनके मन में दिन रात सुबह शाम चलता था उसको आयाम मिलने वाला था।

विमल रॉय साहब के साथ उनका कोलेब्रेशन हो गया था 1945 से 49 तक। कहते हैं ऐसे सेन साहब न्यू थिएटर से ही जुड़े रहे। 50 के दशक की शुरुआत में जब बांग्ला सिनेमा थोड़ा पतन पर आने लगा तो विमल रॉय बॉम्बे टॉकीज के बुलावे पर मुंबई आ गए थे और अपने साथ अपनी टीम में कुछ खास लोगों को भी ले आए, जिनमें उस वक्त सिनेमाटोग्राफर कमल बोस, एडिटर ऋषिकेश मुखर्जी और लेखक नवेंदु घोष के साथ साथ असित सेन भी शामिल थे। बॉम्बे टॉकीज की फिल्म माँ का निर्देशन करने के बाद जब विमल रॉय ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोली तो वहां भी असित सेन साहब उनके साथ बतौर सहायक जुड़े रहे और ये सिलसिला करीब 13 सालों तक साथ में रहा। विमल रॉय के असिस्टेंट के तौर पर शुमार रहे असित सेन साहब और ये सिलसिले ने कई सारी फिल्में आगे दी हैं। जब अगले घंटे में आपके साथ पहुंचेंगे ना तो उन तमाम फिल्मों का जिक्र भी करेंगे और उनके जो हास्य किरदार हैं उनका भी जिक्र करेंगे, कैसे एक हास्य अभिनेता के तौर पर अपनी विशिष्ट अनूठी जो शैली थी उससे उन्होंने एस्टैब्लिश किया। पर्दे पर आते ही जहां लोगों के चेहरे पर मुस्कान खिलती थी सिर्फ उनकी एक डायलॉग डिलीवरी के चलते। जानने के लिए बस आपको यही हमारे साथ बना रहना पड़ेगा। 10:57 का वक्त हो चुका है, फर्स्ट हाफ को हम यहाँ पर रोकेंगे लेकिन आपका साथ यहाँ भी इसकी दरकार है। उन्हीं की फिल्म अभिनेत्री से एक प्यारा सा गाना आपको दे रही हूँ, उस गाने को सुनिए, कहीं मत जाइए, सुनते रहिए, जुड़े रहिए आपका अपना 100.7 FM रेनबो, जिस पर आज आप हम और आप दोनों मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं बर्थ एनिवर्सरी असित सेन साहब की।